0: शुभ प्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। सुबह के 7 बज चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आज शक संवत 1948 के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तदनुसार 4 अक्टूबर 2026, आज दिन रविवार है। आपके स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ हम आज का प्रसारण शुरू करते हैं।
1: जीवन सौरभ। एक छोटा सा पौधा था, वो एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वो हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। एक दिन तेज हवा चली, उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गए। वो छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिया। श्रोताओं, जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है, अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और लगातार प्रयास

0: प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। जीवन
1: सौरभ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। और अब जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हमारा अगला कार्यक्रम होगा वैदिक ऋचाओं पर आधारित अक्षय निधि। उसके बाद सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम, महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम बाल स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाजी राउत के जीवन के बारे में जानेंगे। सुबह 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी। सुबह 9:00 विश्व पशु कल्याण दिवस पर हमारी विशेष प्रस्तुति। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया। इस विषय पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौड़ की बातचीत आप सुन सकते हैं। सुबह 10:00 देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम डिफेंस स्पेस एजेंसी पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सुबह 10:30 पर हिंदोस्तान हमारा कार्यक्रम आज केंद्रित होगा स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्याम जी कृष्ण के जीवन पर। सुबह 11:00 देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुने और 11:30 पर काव्य गुंजन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। आज हम इस कार्यक्रम का 16वां भाग प्रसारित करेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की, जिन्हें आप अभी से लेकर दिन के 12:00 तक सुन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं वैदिक ऋचाओं पर आधारित कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: कार्यक्रम अक्षय

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 34 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता हैं मरुद्गण और छंद है जगती एवं त्रिष्टुप।
1: धारावरा मरुतो धृष्णवोजसो मृगाना भीमास्त विशीभिर रर्चिनः अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भृमिम धमंतो अप गा अवृणवत्। मेघ की जलधारा को आवृत्त करने वाले शत्रुओं के संहारक बल से युक्त सिंह की भांति भय उत्पन्न करने वाले अग्नि जैसे तेजस्वी सन्मार्गगामी गति पैदा करने वाले पूज्य मरुद्गण सूर्य रश्मियों को प्रकट करते हैं। द्यावो न स्त्रिभिश्चितयंत खादिनो व्यभ्रिया न द्युतयंत वृष्टयः रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनी प्रशन्याः शुक्र ऊधनी। हे सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत मरुतो, जिस प्रकार द्युलोक नक्षत्रों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप मेघ में विद्यमान विद्युत से शोभायमान हो। आपको रुद्रदेव ने पृथ्वी के पवित्र उदर से उत्पन्न किया है। आप ही शत्रु भक्षक तथा जल की वृष्टि करने वाले हैं। उक्षन्ते अश्वाम अत्याम इवाजिषु नदस्य कर्णैस्तुरन्यत् आशुभिः हिरण्यक्षिप्रा मरुतो दविध्वतः प्रक्षम याथ प्रशतीभिः समन्यवः। मरुद्गण अपने घोड़ों को घुड़दौड़ के घोड़ों के समान बलवान बनाते हैं। ये शब्द करने वाले द्रुतगामी घोड़े युद्ध में वेग से जाते हैं। हे स्वर्णाभूषणों से अलंकृत मरुद्गण, आप शत्रुओं को कंपित करने वाले हैं। आप अन्न आदि पोषक पदार्थों के समीप वर्षण करने वाली मेघ मालाओं के माध्यम से जाते हैं। वृक्षे ता विश्वा भुवना विवक्षिरे मित्राय वा सदमा जीरदानवः पृषदश्वासो अनवभ्राधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षदः। हे मरुद्गण, मित्र के समान सभी भुवनों को आश्रय प्रदान करते हैं। धब्बे वाले घोड़ों से युक्त अक्षय अन्न प्रदान करने वाले ये दानशील मरुद्गण धर्मानुकूल मार्ग पर चलने वाले याजकों को उन्नति पथ पर ले जाते हैं। इंधन्वभिर धेनुभि रप्षदूध भिरध्वस्मभि पथिभिर भ्राज दृष्ट्या आहंसासो न स्वसराणी गंतन मधोर मदाय मरुतः समन्यवः। हे दीप्तिमान आयुध वाले मन्युयुक्त मरुद्गण, जिस तरह हंस अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं, उसी प्रकार आप बरसने वाले मेघों के साथ धेनुयुक्त होकर विघ्न रहित मार्ग से सोमरस का पान करने और आनंदित होने के लिए यज्ञ में आए। आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नराम न शंसः सवनानि गन्तन अश्वामिव पिप्यत धेनु मूधनि कर्ता धियम जरित्रे वाजपेशसम। हे मन्युयुक्त मरुतो, जिस प्रकार शूरवीर आते हैं उसी प्रकार आप हमारे शोधित सोम के पास आएं, हमारी गौओं के अधो भाग को घोड़ी की तरह पुष्ट बनाएं तथा याजकों के यज्ञ को अन्न युक्त करें। तम नोदात मरुतो वाजिनम रथ आपानम ब्रह्म चितयद्दिवे दिवे इशम स्तोत्रिभ्यो व्रजनेषु कारवे सनिम मेधामरिष्टम दुष्टरम सह। हे वीर मरुद्गण, आप हमें अन्नयुक्त संतति प्रदान करें। वह संतति आपके आगमन के समय आपका यशोगान करें। आप स्तोताओं को अन्न प्रदान करें। युद्ध के समय पराक्रमी स्तोताओं को दानवृत्ति, युद्ध कौशल, सद्बुद्धि और अभय तथा अजेय सहनशीलता प्रदान करें। यद्युञ्जते मरुतो रुक्म वक्षसो श्वानरथेषु भग आ सुदानवः धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रात हविषे मही मिशम। ऐश्वर्यशाली दानशील मरुद्गणों के वक्षस्थल में स्वर्णाभूषण सुशोभित है। जिस प्रकार गाय बछड़े को दूध देती है उसी प्रकार मरुद्गण घोड़ों को रथ में जोतते हुए हवि प्रदान करने वाले याजक के घर में भरपूर मात्रा में अन्न प्रदान करते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 34 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और प्रसन्न रहिए। इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं आज का भक्ति संगीत।

ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ धर लेते हैं, फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है।

संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और ये आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है। हमेशा अपने दोस्त सोच समझकर बनाएं।

मौन को तप कहा गया है। मौन की वजह से हमारी संपूर्ण शक्तियों का जागरण होता है, हमारी ऊर्जा चैतन्य होकर हमारे आसपास दिव्यता प्रकट करती है। मौन तप है, लेकिन बोलना भी एक कला है। सही समय पर बोलना भी जरूरी है। हमें दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, हमारी बोली में गंभीरता रहे और हमारे विचार सकारात्मक रहें।

जैसा हमारा संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि मिलेगी, जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसे ही दृश्य दिखेंगे, वैसे ही घटनाएं दिखाई देंगी। जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा ही यह संसार दिखता है। यदि आप आदर चाहते हैं तो दूसरों को आदर दें। हम अपने संकल्प की उपज है। अच्छा सोचते हैं तो परिणाम भी अच्छे ही आते हैं।

जीवन एक अंतहीन यात्रा है। जीवन की यात्रा में हर व्यक्ति को अपनी शक्तियों से परिचित होना चाहिए। जीवन के सत्य का अनुभव करना ही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ आत्म साक्षात्कार करना है। इसके लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और सद्गुरु की संगति और सेवा करना चाहिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम।
1: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जीवन पर आधारित वतन का राग कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में हम बाल स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाजी राउत के जीवन के बारे में जानेंगे।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
2: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
3: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
2: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
3: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
2: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का संग्रह भर नहीं है, इतिहास उन धड़कनों का नाम भी है जो समय के बीत जाने के बाद भी हमारे अंदर स्पंदित होती रहती हैं। कुछ नाम किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ नाम किताबों के साथ साथ देश की स्मृति में अंकित हो जाते हैं। एक ऐसा ही नाम है अमर शहीद बाजी राउत का, जिसे याद करना केवल अतीत को याद

जो इतिहास को उजालों से भर गया। मात्र 12 वर्ष की उम्र में अत्याचारी शासन के विरुद्ध लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। बाजी राउत भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर सन 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर नामक गांव में हुआ था, जो ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजी राउत एक निर्धन मल्लाह परिवार से संबद्ध थे। उनके पिता का नाम हरि राउत और माताजी का नाम रानिया देवी था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया और परिवार संकट में आ गया। इस कठिन परिस्थिति में उनकी माँ ने उनका पालन पोषण किया। वो आसपास के घरों में धान कूटने और मजदूरी का काम किया करती थीं। बाजी राउत के दो बड़े भाई भी थे। अत्यंत कठिनाई से परिवार का गुजर बसर हो रहा था। आर्थिक कठिनाई के कारण उनकी माँ बाजी राउत की शिक्षा का खर्च भी नहीं उठा पाती थीं। लेकिन जीवन की पाठशाला बड़ी थी। बाजी राउत ने बचपन से ही अन्याय और गरीबी को देखा था। नदी की धार संग बहते उनके जीवन ने मेहनत के पसीने को देखा था और उनके भीतर साहस, स्वाभिमान और निर्भीकता के संस्कार पड़े।

ओडिशा की ढेंकनाल रियासत अपने दमनकारी और क्रूर शासन के लिए कुख्यात थी। प्रजा पर करों का बोझ था, बेगार और शासन की कठोरता ने एक व्यापक असंतोष को जन्म दिया था। ये वो समय था जब देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न आंदोलन जारी थे। स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही देसी रियासतों और राज्य रजवाड़ों के अत्याचारों के विरुद्ध प्रजामंडल आंदोलन भी आरंभ हुआ। ढेंकनाल में भी जनता का आक्रोश बढ़ा और वहां प्रजामंडल का गठन हुआ। वैष्णव चरण पटनायक ढेंकनाल प्रजामंडल आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो वीर वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने ढेंकनाल के कोने कोने में घूमकर युवाओं, किसानों और मजदूरों को संगठित किया। बालक बाजी राउत अपने गांव नीलकंठपुर में प्रजामंडल की बैठकों में शामिल होते, उनकी बातें सुनते। निर्दोष ग्रामीणों पर सिपाहियों के अत्याचारों ने उनके बाल हृदय को भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही बाजी राउत ने स्वयं को प्रजामंडल आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपना सामाजिक जीवन एक सजग बाल क्रांतिकारी के रूप में आरंभ किया। प्रजामंडल आंदोलन को निचले स्तर तक मजबूत करने और आंदोलनकारियों के बीच संवाद तंत्र को सुचारू बनाए रखने के लिए बच्चों और किशोरों की एक विशेष शाखा गठित की गई, जिसे वानर सेना कहा गया। बाजी राउत इसी वानर सेना में शामिल थे। वानर सेना के सदस्य ब्रिटिश पुलिस और राजा के सिपाहियों की गतिविधि पर नजर रखते, आंदोलनकारियों तक गुप्त सूचनाएं और संदेश पहुंचाते, गांव में ढोल बजाकर सभा के आयोजन की सूचना लोगों को देते थे। इसके साथ ही नदी, घाटों, जंगलों और गुप्त रास्तों की पहरेदारी भी वो किया करते थे, ताकि पुलिस या राजा के सिपाही अचानक हमला न कर सकें। बाजी राउत दिन रात इन कामों में सक्रिय रहा करते थे। चूंकि वो एक मल्लाह के पुत्र थे, इसलिए अंधेरे में नदी पार कर गुप्त संदेशों के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाते। इस तरह वो और उनके बाल साथी दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर आंदोलनकारियों को पुलिस की दबिश से बचाते थे। 1938 का साल आते आते ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अत्यंत तीव्र हो गया था। चारों ओर से विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। जनता अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थी। इन परिस्थितियों ने जनता और शासन के बीच तनाव को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य केंद्र था भुवन गांव। ब्रिटिश और रियासत की सेना आंदोलन से अत्यंत परेशान हो उठे और दमन चक्र तेज हो गया। उद्देश्य था किसी भी तरह प्रजामंडल आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करना, लेकिन आंदोलनकारी तो जैसे स्वयं सैनिक बनकर निकल पड़े थे।

ढेंकनाल का प्रजामंडल आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। राजा और ब्रिटिश हुकूमत आंदोलन को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए आक्रामक हो चुके थे। 10 अक्टूबर सन 1938 को ढेंकनाल राजा के सिपाही और ब्रिटिश पुलिस का संयुक्त दल भुवन गांव पहुंचा। पुलिस नेताओं को पकड़ना और ग्रामीणों पर दबाव बनाना चाहती थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसका प्रतिरोध किया। इस तरह ये संघर्ष बढ़ने लगा। पुलिस ने निहत्थे ग्रामीणों पर गोली चला दी। इसके बावजूद ग्रामीणों का उग्र विरोध जारी रहा। स्थिति बिगड़ने लगी तो ब्रिटिश पुलिस और सशस्त्र बलों ने गांव से लौटने की सोची। वो सुरक्षित ढेंकनाल शहर पहुंचना चाहते थे और वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता नीलकंठपुर घाट से होकर ब्राह्मणी नदी को पार करना था। 11 अक्टूबर सन 1938 को पुलिस बल नीलकंठ घाट पर पहुंचा। आधी रात बीत चुकी थी। नदी तट पर केवल एक नाव बंधी थी। उस रात पहरेदारी का जिम्मा 12 साल के बाजी राउत पर था। प्रजामंडल के शीर्ष नेताओं ने बाजी राउत को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस या राजा के सिपाहियों को नदी पार करने के लिए कोई नाव न दी जाए, क्योंकि वो ढेंकनाल से और सैन्य बल लाकर भुवन गांव और नीलकंठपुर में धावा बोल सकते थे। आधी रात को बाजी राउत के पास हथियारबंद पुलिस पहुंची। आदेश आया, नाव खोलो और नदी पार कराओ। सामने बंदूकें थीं और पीछे संगठन का आदेश और गांव की सुरक्षा का प्रश्न। बाजी राउत ने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अधिकारी आपे से बाहर हो गया। बाजी राउत को डराने धमकाने का प्रयास किया गया। उन पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने नाव की रस्सी को जोर से पकड़ रखा था। बाजी राउत को धक्का देकर जब पुलिस नाव में बैठने की कोशिश करने लगी, तब उन्होंने शोर मचाकर गांव को सचेत करना शुरू किया। बौखलाए अधिकारी ने राइफल की भारी बट से बाजी राउत के सिर पर प्रहार किया। उनके सिर से खून बहने लगा। बावजूद इसके उन्होंने नाव की रस्सी छोड़ी नहीं और गांव वालों को आवाज देते रहे। इस पर क्रोधित पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मार दी। बाजी राउत वहीं ब्राह्मणी नदी के तट पर शहीद हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग घाट की ओर दौड़े। पुलिस ने उन पर गोली चला दी। इस तरह बाजी राउत के कुछ अन्य साथी लक्ष्मण मलिक, फगु साहू आदि भी शहीद हो गए। बाजी राउत की शहादत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। उनकी अंतिम यात्रा ने उड़ीसा में जनता को आक्रोश से भर दिया। ज्ञानपीठ सम्मान से अलंकृत उड़िया कवि सच्चिदानंद राउत राय ने बाजी राउत शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी और इस बाल शहीद की स्मृति को साहित्य में अमर कर दिया। उनका भावपूर्ण स्वर यही था कि ये चिता नहीं साथियों, अंधेरे देश में स्वतंत्रता की वो ज्योति है जिसकी लौ कभी बुझती नहीं, जिसकी लौ कभी बुझती नहीं। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वतन का राग। आज के कार्यक्रम में हमने बाल स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाजी राउत के जीवन पर समर्पित कार्यक्रम सुना। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो के निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है गणेश उत्सव में हमने क्या सीखा। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा चतुर्वेदी।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। हाजिर हूँ लेकर आपका एक बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम जिसे आप सब प्यार से बाल सभा कहते हैं। आप सब अपने घर में बैठे हैं, मैं स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें कर रही हूँ। हर बार कोई ना कोई बातों का ऐसा धागा शुरू होता है कि हम बातों से पूरा एक प्रेम रूपी चादर बुन देते हैं। तो आज हम आपसे जानते हैं क्या बात करने वाले हैं। हम आपसे बात करने वाले हैं, अभी अभी गणेश उत्सव हो कर चुका है और उससे हमने, आपने, हम सब ने क्या सीखा। क्योंकि बच्चों जब भी कोई उत्सव, जब भी कोई त्योहार आता है, हमारे लिए क्या क्या खास होता है उसमें। कोई बच्चा सोच रहा होगा मिठाई खास होती है, कोई बच्चा सोच रहा होगा नए कपड़े खास होते हैं, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा अरे त्योहारों का तो पूरा सीजन ही आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चों। हमारा देश एक बहुत प्यारा, बहुत सुंदर और उल्लास और उत्साह से भरा पूरा देश है। इसीलिए तो हम कितने सारे उत्सवों को एक साथ मनाते हैं। अभी गणेश उत्सव जब जाकर चुका है, हम श्री गणेश का विसर्जन कर चुके हैं, तब ये बहुत ज़रूरी बात है कि क्या सीखा आखिर हमने इस उत्सव से, क्या हमारे दिमाग में आया, आपने क्या खास किया। जब आप श्री गणेश की स्थापना हुई तब से लेकर उनके विसर्जन तक ऐसी क्या खास बात थी जो आपको लगता है कि उसका जिक्र आज होना चाहिए। देखिए मुझे तो बहुत सारे बच्चे मिले हैं तो मैं तो आज बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूं कि कोई कहानी के पात्र की बात नहीं करूंगी मैं आज। आज मैं कोई किताब भी नहीं खोलूंगी, किसी नए पन्ने को देखकर कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी। आज हम बात करेंगे मिट्टी की और हमारी कल्पना की। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने सभी से अपील की थी कि हम गणेश उत्सव में प्रकृति का बहुत ख्याल रखें। और वो क्यों की थी पता है आपको बच्चों? वो इसलिए की थी ताकि हम मिट्टी से जैसा हमारे मन में है वैसा प्रभु श्री गणेश का रूप गढ़ें। हाँ, और आकार से बड़ी आस्था होती है। तो उस खास बात में ये बात थी बच्चों कि कई लोग ये महसूस करते हैं कि जब हम स्वयं अपने आराध्य की मूर्ति बनाते हैं तो उसका रूप ही अलग होता है। आपको पता है यहाँ एक जगह है भोपाल में नदी का घर, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रोज आते थे कार्यशाला में भाग लेने और सीखने कि कैसे मूर्ति बनाई जाती है। और जब वो बच्चे आते थे, क्योंकि मैं रोज जाती थी उस कार्यशाला में बच्चों, क्योंकि मुझे बच्चों से मिलना, बच्चों से बातें करना बहुत पसंद है। आप यकीन करिए बच्चों, पहले दिन आकर कुछ बच्चों ने सीखा और फिर दूसरे दिन से उन्होंने मिट्टी के गोले लेकर नीचे अखबार रख कर क्या आकार देना शुरू किया है। मैं तो देखकर दंग रह गई। मतलब इतने सुंदर सुंदर आकार बनाए उन्होंने, जो जो उनकी कल्पना थी वो सब कुछ उन्होंने मिट्टी में गढ़ने की कोशिश की। आपको बताए एक बच्चे ने तो एक बहुत ही प्यारी सी पहले मूर्ति बनाई और उसके बगल में एक छोटा सा चौकोर मिट्टी से लेकर बना दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये दीदी मेरा मोबाइल है। मैंने कहा मोबाइल है मतलब? मैंने कहा ये यहाँ क्यों बनाया? तो बोला कि मैंने सोच लिया है दीदी, अब से मैं मम्मी का मोबाइल नहीं छूऊंगा। मुझे इस कार्यशाला में आकर इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने ये मोबाइल भी अर्पण कर दिया है प्रभु को, और अब से मैं मोबाइल कभी नहीं छूऊंगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब बच्चे अपनी कल्पनाओं में जाते हैं ना, तब वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, आप उसका पीछा तो छोड़िए, आप उसको सोच भी नहीं सकते। कितनी बड़ी बात है बच्चों। आप कभी ऐसे अपनी कल्पनाओं में गए हैं? आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर ऐसे अपने आराध्य की मूर्ति गढ़ी है? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि गणेश उत्सव बीत चुका है, अब हम कैसे मूर्ति बनाएं। नहीं, आप अभी भी जिसकी चाहे उसकी मूर्ति या कोई आकार देकर देखिए बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। और ये संदेश सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि हमें अपने आराध्य की मूर्ति मिट्टी से बनानी है। बहुत अच्छी बात थी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये संदेश मिल चुका है कि हमें अपनी प्रकृति का ख्याल रखना है। हमें पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति को नहीं स्थापित करना है, क्योंकि हमारे जलाशय, हमारे तालाब, हमारी नदियाँ, हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, और अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे बच्चों, तो भला कौन रखेगा? आपको पता है वहाँ कोई सांचा नहीं था बच्चों के पास। किसी के गणेश जी मोटे बन रहे थे, किसी के छोटे से बन रहे थे, किसी का एक कान थोड़ा सा बड़ा बन गया तो उसने फिर से मिट्टी ली और उसको थोड़ा सही करके हाथ से आकार देकर छोटा किया। एक बच्चा अपने साथ बहुत सारे कुछ लेकर आया था, छोटी सी सुई, छोटी सी एक पेंसिल, एक छोटा सा कटर। मैंने पूछा, तुम इतनी सारी चीज़ें मूर्ति बनाने के लिए क्यों लेकर आए हो? तब उसने बोला कि मैं इस पेंसिल से थोड़ा सा, जब मिट्टी गीली रहेगी ना दीदी, तो मैं गणेश जी को धोती पहनाऊंगा और इसी से उसका जनेऊ भी बनाऊंगा। मुझे लगा कितनी अच्छी बात है। मतलब जब आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हैं, आपको आकार देना आ गया है, तब आप उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप सोच रहे हैं कि अब चलो अब मुकुट भी खुद बनाते हैं और फिर मुकुट को सजाते भी हैं। मतलब जब भी आप कोई भी काम जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, जिसमें थोड़ी सी कल्पनाशीलता लगती है और थोड़ी सी आपकी एकाग्रता लगती है बच्चों, वो हर काम कमाल का काम होता है। तो मैंने तो इस गणेश उत्सव से, सच बताऊं बच्चों, सबसे ज्यादा बच्चों से ही सीखा। अब बात आई कि भाई हमने मिट्टी की मूर्ति अपने अपने हिसाब से गढ़ी है, अब आप क्या करेंगे, अब भाई स्थापना कैसे करें? तो स्थापना के लिए बच्चों ने बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े, मैंने देखा, जोड़ जोड़ के और फिर उनसे एक बहुत सुंदर चादर बनाई। कोई बच्चा अपनी मम्मी पापा के साथ जाकर बहुत खूबसूरत सा गणेश जी के लिए आसन लेकर आया, कोई चौकी लेकर आया, किसी ने उनको बहुत प्यार से अपने घर के बीचों बीच बिठाया, किसी ने पूरे पीछे लाइट लगा दी, किसी ने कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर रखा, किसी ने केले के बड़े बड़े पत्तों को पीछे घर जैसा सजाया और फिर सामने बहुत छोटे छोटे से खिलौने भी रखे। मतलब मैं जिस बच्चे के घर गई ना बच्चों, सबका श्रृंगार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। और सबसे बड़ी बात इनमें एक और थी कि कोई बच्चा, जितने दिन गणेश उत्सव चला उस दौरान कोई बच्चा मोबाइल की, टीवी देखने की जिद नहीं कर रहा था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। तब मुझे एक और बात दिमाग में आई बच्चों कि ये सब जिद हम तब करते हैं, स्क्रीन की जरूरत हमें तब पड़ती है बच्चों, जब हम सच मायनों में खाली होते हैं। खाली सिर्फ इस बात से नहीं कि हमारे पास करने को कुछ नहीं है, खाली इस बात से कि हमारे दिमाग में भी कोई आइडिया आता नहीं है और आ जाए तो उसे हम आगे बढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि लेटे लेटे अपनी छत को ताकते ताकते ढेर सारे आइडियाज आना और उनका वहीं पे खत्म हो जाना, ये बहुत खराब बात है बच्चों। आपको पता है आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, लेटे लेटे सोचते रहते हैं कल से हम ये करेंगे, परसों से हम वो करेंगे, लेकिन कभी कल आता ही नहीं। और जब बच्चों कल ही नहीं आएगा तो परसों कहाँ से आएगा? ऐसे ही आप सपने देखते रह जाओगे ना बिस्तर पे लेटे लेटे। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। तो हमेशा याद रखिए कि कल कभी नहीं आता। आपको जो करना है, जैसे करना है, उसकी एक आदत डालिए। और आपको एक और बात बताऊं कि आज मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वो मुझसे कह रहे थे कि हम जब बात करते हैं ना बच्चों को कि मोटिवेशन मोटिवेशन, तो कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि मोटिवेशन ही सब कुछ नहीं होता, हमारी आदत बहुत बड़ी चीज़ होती है। उन्होंने तो मजाक मजाक में एक बहुत ही अच्छी बात कह दी मुझसे। उन्होंने कहा मोटिवेशन को आप ऐसा समझ लो मोटी बेसन की पकौड़ी, बस एकदम से एक झटके में खाई और फिर उसको हम भूल गए। लेकिन अगर हमने किसी चीज को करने की आदत डाली है ना बच्चों, तो वो काम फिर जरूर होता है। इसलिए लेटे लेटे ढेर सारे आइडियाज में मत जाइए, बहुत डीप थिंकर मत बनिए, पहले करिए, अपने शरीर को चलायमान बनाइए, है ना। एक जगह बैठे तो बैठ के रह गए। याद आ रहा है आपको गणेशोत्सव कितना डांस कर रहे थे आप कॉलोनी में, मोहल्ले में, जहाँ चौकी पर बड़े से गणेश जी विराजित थे, आप कितना आनंद ले रहे थे। किसी बच्चे ने फैंसी ड्रेस में भाग लिया था, किसी बच्चे ने ड्राइंग में भाग लिया था, कोई बच्चा घर से मोदक भी बना के लाया था। हाँ, ऐसे मोदक जिसमें आपको गैस या आग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो आपको बिना कुछ जलाए दूध और मावा इन सब से ही बन गया। तो बच्चों ने मम्मियों की बहुत मदद की उस दौरान। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं तब हम बहुत अच्छे बच्चे बनते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो क्यों ना हम लेटे लेटे लेटे लेटे ये सोचते रहें कि हमारी जो शरीर की मशीनरी है उसे चलाएंगे भी नहीं और हमारे मन का इंजन दौड़ाते रहेंगे, नहीं वो भी ठप हो जाएगा बच्चों। अपना शरीर भी चलाइए, है ना। अब मिट्टी से हमने इतना कुछ बनाया, लेकिन मिट्टी ने हमें क्या सिखाया? मिट्टी ने हमें ये सिखाया कि गलती से डरना नहीं है। एक बार कोई शेप बिगड़ गया, आप फिर से मिट्टी को मसल के दोबारा आप बना लीजिए। मिट्टी हमें ये सिखाती है कि अपने हाथों से हमें कुछ नया बनाना है। और शायद बच्चों सबसे सुंदर बात ये है कि जब बच्चे अपने हाथों से श्री गणेश बनाते हैं तो वो सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बनाते, वो अपनी कल्पना को आकार देते हैं। आपने देखा है जब बच्चे मूर्ति बना रहे थे, तो हो सकता है आप जो बच्चे सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे हों, तो बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि किसी ने सूंड सामने उठा दी, किसी ने साइड में कर दी, और सबके भाव एक ही हैं, और भाव है श्रद्धा का, भाव है आस्था का, भाव है विश्वास का। और धीरे धीरे जो भाव आप सब में रोपित हो गया अनजाने में, वो ये है कि हमने प्रकृति से मिट्टी ली, अपने हाथों से उसको आकार दिया, अपने घर में आस्था के साथ स्थापना की, खूब उसके सामने मिट्टी के ही दीपक जलाए, फूल चढ़ाए, और फिर मिट्टी को मिट्टी में ही विलय कर दिया। है ना कितनी अच्छी बात। और धीरे धीरे पानी में घुलती हुई मिट्टी आपको ये सिखा गई कि जीवन में एक सार होना कितना जरूरी है, है ना। कितना कुछ सीखा ना हमने इस मिट्टी से। जब मिट्टी पानी में घुलती है तो आप देखते हो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे भूरा होने लगता है, है ना। और ये प्रकृति से जो हमें दोनों चीजें मिली हैं, जल और मिट्टी, ये वापस मिट्टी में ही चली गई, यानी प्रकृति को हमने वैसे का वैसा ही वापस लौटा दिया। इस पूरे चक्र में कहीं हमने प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो बस ये खूबसूरत सी बात थी जो मुझे आज आपसे करनी थी, बहुत मन कर रहा था मेरा।

0: एक और बहुत अच्छी सीख जो मुझे लगी वो ये कि बच्चों ने एक जगह गणेशोत्सव में एक बहुत अच्छी सी प्रतियोगिता रखी थी कि गणेश जी पर अपने भाव प्रकट कीजिए। एक बच्चे ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, उसने अपनी दादी नानी किसी से सुनी होगी कि मुझे गणेश जी इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे। मैंने कहा कैसे, तो वो बताने लगा बच्चा कि देखिए एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तो गणेश जी ने अपनी माँ के चारों ओर चक्कर लगा लिए। कहानी उसे विस्तार से तो नहीं पता थी लेकिन कहानी का सार उसको पता था कि माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ होते हैं, ये उसको बहुत अच्छे से पता था। उसने बड़े भोलेपन से ये कहानी सुनाई। कहानी सुन के मुझे तो बहुत आनंद आया, साथ ही साथ और बहुत सारी कहानियाँ बच्चों ने सुनाई। एक कहानी सुनाई थी मुझे एक बच्चे ने वहाँ पर, वो गणेश जी की तो नहीं थी लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी ये थी कि मैडम, मैंने उससे कहा कि भाई मैडम मत बोलो, दीदी बोलो। तो बोलता नहीं, आपको देख के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी क्लास टीचर हो। तो मैंने कहा ठीक है मैडम बोलो। उसने कहानी सुनानी शुरू की कि मैडम जब मैं गणेश जी को देखता हूँ तो मेरे मन में एक ही बात आती है कि हम जब किसी से भी मिलते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कई बार अपनी मम्मी के साथ कहीं जाता हूँ तो लोग आजकल ये नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल। सबसे पहले लोग यही बताते हैं, अरे तुम बहुत पतले हो गए, अरे तुम बहुत मोटे हो गए, अरे तुम्हारे चेहरे पे बहुत दाग हो गए, कुछ इलाज करवाया। लेकिन मैडम गणेश जी को देखकर इतना मन खुश होता है कि देखिए कोई कहीं भी हो, कितना भी हो, सबके गणेश अलग अलग हैं लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इनके वाले ऐसे हैं, उनके वाले वैसे। सबको कितने सुंदर लगते हैं प्रभु श्री गणेश और हर रूप में कितने सुंदर लगते हैं। वो बच्चा तो अपने बालपन में ये बात कह गया लेकिन ये बात ना बच्चों मेरे घर कर गई। और मैंने इस उत्सव से ये सीखा कि आज के बाद मैं कभी किसी में कोई कमी नहीं देखूंगी। मुझे देखना होगा तो मैं उसकी खूबियां देखूंगी, क्योंकि ये तो मेरी दादी भी कहा करती थी कि किसी की तरफ जब एक उंगली उठाते हो तो आपकी तरफ तीन उंगलियां आती हैं। तो क्या किसी की एक कमी ठीक करने के प्रयास में हम अपनी तीन कमियों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? तो बेहतर होगा कि दूसरे से हम अच्छाई सीखें और अपनी बुराई देखें, क्योंकि बच्चों ये सबसे अच्छा प्रयास होता है। क्योंकि हम जब किसी में कमियां देखते हैं तो हम बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे करते ना, हम बहुत मीन मेक निकालने लगते हैं सब में, कोई मिला नहीं कि बस हम शुरू हो जाते हैं ये बिना सोचे कि उसे कैसा लगेगा। जैसे अभी कॉलोनी में मैं देख रही थी कि एक बच्चा, बहुत दिन से उसको कोई प्रॉब्लम हुई और उसको डॉक्टर ने बोला कि थोड़े दिन आपको आराम करना है, अब बच्चे जब खाएंगे पिएंगे और आराम करेंगे तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है। हालांकि अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं भी यही कह रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो लौट के जब उसका आराम वाला समय खत्म हुआ और वो पार्क में आया तो बच्चे बड़ी आसानी से उसे बोलने लगे मोटू आ गया, मोटू आ गया। ये क्या बात हुई? वो पता है फिर 4-5 दिन फिर नहीं आया। फिर मैं उसके घर गई एक दिन उसकी मम्मा से मिलने, मैंने कहा बेटा आप आते नहीं हो पार्क में। उसने बोला आंटी मैं जाता हूँ तो बच्चे चिढ़ाते हैं मोटू आ गया मोटू आ गया। तो मैंने कहा बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? बोला नहीं आंटी मुझ पर तो फर्क पड़ता है। सुना बच्चों आपने, हो सकता है किसी पे फर्क ना पड़ता हो लेकिन किसी पे फर्क पड़ता है। तो इस उत्सव से मैंने ये भी सीखा कि जो है जैसा है, हमें उसकी कमियां नहीं, हमें उसकी अच्छाइयां देखनी है। हम कोई नहीं होते बच्चों किसी की कमी निकालने वाले, है ना? वो खुद जब समझेगा समय रहते हर चीज ठीक कर लेगा। एक और अच्छी चीज मैंने इस उत्सव से सीखी वो ये सीखी कि कई लोगों ने इस बार अपने घर की सजावट करने में प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग किया, बहुत सारे विकल्प तलाशे, है ना? कई लोगों ने धागों से, कई लोगों ने मौली जो होता है उससे फूलों की माला बनाई, कुछ लोगों ने आम्र पत्र से अपने घर की सुंदरता बढ़ाई, कुछ लोगों ने और बहुत सारी चीजें लाई जिनसे अपने घर को सुंदर बनाया, और कुछ लोगों ने बाजार से जो प्लास्टिक की चीजें आती हैं वो भी खरीदी और वो भी उन्होंने उससे अपने घर को सजाया। ठीक है, लेकिन अब जब उत्सव ये बीत चुका है तब एक बार हमें फिर से ध्यान देने की जरूरत है कि अब से दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत सारे त्योहार आएंगे, लेकिन हम कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, है ना बच्चों? इस बार हम ज़रूर सोचें कि त्योहारों के सीज़न में हम जितना कम प्रकृति को आहत करें, जितना कम से कम, कोशिश करें कि करें ही नहीं। अगर बहुत ज़रूरी कुछ है तो उसको बहुत न्यूनतम पे ले आएं, है ना बच्चों। अब देखिए इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो जल्दी से आपके साथ फिर से आंख मूंद कर संकल्प ले लिया जाए। आपको तो पता ही है कि जब कोई बात मैं करती हूँ तो उससे संबंधित कुछ संकल्प ज़रूर हम लोग बाल सभा में लेते हैं। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा पानी पीती हूँ, आप लोगों के पास भी पानी रखा है तो पीजिए, और फिर आंखें बंद करके बैठिए, शांति से धीमा सा संगीत सुनिए। सबने आंखें बंद कर ली, चलिए हाथ जोड़ लीजिए। मैं पहला संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि उत्सवों को बहुत उत्साह और उल्लास से मनाऊंगा या मनाऊंगी। आज का हमारा दूसरा संकल्प है कि हम हर त्योहार प्रकृति के अनुरूप मनाने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा तीसरा संकल्प है प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करेंगे। चौथा और बहुत ज़रूरी संकल्प बच्चों, हर त्यौहार हर उत्सव में अपनी कल्पनाशीलता को हम और बढ़ावा देंगे। अपनी सृजन क्षमता को और बढ़ावा देंगे। और अब आखिरी संकल्प, हम अपने हर व्यवहार से प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आपस में रगड़िए और बहुत प्यार के साथ आंखों पे लगाइए। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए और एक बार पुनः उन सब बातों का स्मरण कीजिए जो मैंने आज आपसे बाल सभा में कही हैं, है ना। अच्छा संगीत सुनिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, किसी की कमी मत निकालिए, जो देखना है अच्छा देखिए, गांधी जी के तीन बंदरों का ख्याल कीजिए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो बस इसी विचार के साथ अब चलूं, अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा। चलती हूँ बच्चों, नमस्ते। अभी आप बाल सभा सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा, यह विषय था आज के बाल सभा कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा चतुर्वेदी ने। इसके साथ ही हमारा आज का बाल सभा कार्यक्रम संपन्न होता है।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है, जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था, और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की, तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रबी की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगू राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रबी की हत्या को एक प्रोपोगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है, ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रबी की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है विश्व पशु कल्याण दिवस पर हमारा विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत।
2: श्रोताओं नमस्कार, ये है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूँ मनीषा और हर साल 4 अक्टूबर को पूरी दुनिया में विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि पशु पक्षियों और असंख्य जीव जंतुओं की भी साझा घर है। विश्व पशु दिवस हमें पशुओं के प्रति अपने व्यवहार, उनकी देखभाल, उनके स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के बारे में सोचने का अवसर भी देता है। इस वर्ष पशु दिवस की थीम है सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज, यानी दुनिया को हम उनकी आंखों से देखें। इसी विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे एक ऐसे विशेषज्ञ से जो रोज पशुओं के स्वास्थ्य और उनकी तकलीफ को बहुत करीब से देखते और समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पशु चिकित्सक

0: दुनिया को उनकी आंखों से देखें, ये एक टैगलाइन बहुत ही वास्तविक में एक बहुत ही अच्छी टैगलाइन साबित हो सकती है यदि हम हमारी रोज़मर्रा की जो सुविधाएं हैं, हम एसी में बैठे हैं, अपने डेली स्ट्रेस देख रहे हैं ऑफिसेस के, अपनी लाइफ देख रहे हैं, प्रेशर देख रहे हैं, टेंशन देख रहे हैं बॉस का, घर की चिक चिक चल रही है, लेकिन क्या हम ये महसूस कर पा रहे हैं कभी कि हमारा पेट भी हमारे साथ ही वही इन्वायरमेंट शेयर कर रहा है जो हम कर रहे हैं। यानी हमारे घर में यदि आज कहीं कोई डांट चल रही है, यदि किसी के आपस में झगड़े चल रहे हैं, या कोई हमारी कॉलोनी में किसी डॉग को मार पीट रहा है, देख रहा है वो दृश्य, हमारे डॉग की क्या साइकोलॉजी बना रहा होगा। तो यही हमारी आज की टैगलाइन है, सी द वर्ल्ड थ्रू देयर आईज।
1: सर, आपने इतनी गंभीर बात कही है, और चूंकि मैं भी पेट पेरेंट रही हूँ तो मैं देखती थी कि आपस में जब कभी हम लोग ऐसे बात नहीं कर रहे हैं या मैंने अपने बच्चों को डांटा तो बीच में आ जाती थी एकदम से वो चक्कर जो मेरी पैट थी, और वो बचाती थी बच्चों को कि नहीं डांट नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो आपकी बात है कि घर की बातों का असर क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पेट पे पड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है सर ये। लेकिन हम कैसे इस चीज़ को महसूस करें कि पशु क्या महसूस कर रहा है?
0: मैम, ये साइकोलॉजी आपको एनिमल बिहेवियरिस्ट एक टाइप का कोर्स भी आजकल शुरू हो गया है जी। जिस कोर्स में बच्चों को, जो कि ग्रेजुएशन का कोर्स है, उसमें बच्चे आते हैं और उसमें आकर के ये सिर्फ यही सीखते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद देयर एनिमल्स, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, जो उनके दिमाग में चल रहा है आप उसको कैसे भाप सकते हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर की, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा लोगों का एक प्रचलित बिजनेस बन गया है, कई बार एक कुछ ऐप्स भी बन गए हैं एस्ट्रो टॉक और इंस्टप के, तो आप उसमें देखेंगे कि लोग एक फेस रीडिंग करने लगते हैं। सेम इज़ विद द एनिमल्स, आपके पास की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी पॉजिटिविटीज़ हैं, जो भी एनर्जीज हैं आपके ऑरा में, दैट ऑल आर रिफ्लेक्टेड ऑन योर पेट्स। इफ द पेट इज हैविंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शंस related to the skins also, then it means that your surrounding has been unhygienic. ये क्लियर कट है। आज की तारीख में हम स्वच्छता अभियान, एक बहुत मेजर अभियान है हमारे देश का, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, हम छोटी छोटी गलियों को साफ कर रहे हैं, स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, कई जगह स्वच्छता पखवाड़ा सेलिब्रेट हो रहा है। तो इसका सिर्फ एक मेजर इशू यही नहीं कि सिर्फ हमारी साफ सफाई हो रही है, ये एक हाइजीन है। और आज हम देख रहे होंगे कि हमारे कंट्री में, हमारे पूरे देश में कई सारी ऐसी बीमारीज है जिनका इंसिडेंस रेट कम हो गया। क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द क्लीनलीनेस। थोड़ी थोड़ी साफ सफाई यदि बनती जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ एरियाज में वो चीजों का जो पहले आउटब्रेक हो जाता था आज वो नहीं है। तो सेम इज विद योर पेट्स, यदि आपके घर में भी क्लीनलेस मेंटेन्ड है, इफ योर पेट इज ग्रूम्ड, इफ योर पेट इज हाइजीनिक, इट्स नीट एंड क्लीन, उसके आईज, ईयर्स, नोज, फर, नेल्स, एवरीथिंग इज प्रॉपर, देन इट सीम्स दैट इट रिफ्लेक्ट्स योर ऑरा ऑल्सो, दैट योर यू हैव बीन सो हाइजीनिक, या यू हैव बीन सो पर्सनलाइज, आप इतना केयर करते हैं अपने घर की मेंबर्स की, इवन योर हाउस, आपकी सराउंडिंग साफ सुथरी हैं, ये आपका पेट रिफ्लेक्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि जानवरों की उम्र इंसानों की तुलना में कम और छोटी होती है, इसलिए कोई ना कोई बीमारी अंततः उनके जाने की वजह बनती है। हम कैसे पहचाने कि, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते, हम कैसे पहचाने कि इन्हें क्या बीमारी है?
0: देखिए मैम, ऐसा औसतन कहा जाता है, जैसे प्रचलित रहता है कि भाई थोड़ी दूर थोड़ी पास, ये थोड़ा वाला कोई डिस्टेंस नहीं है जिसको कोई लिमिट नहीं है, कोई इसका कैलिब्रेशन नहीं है। वैसे ही हम पेट्स के लिए बात करेंगे कि आज ये थोड़ा सुस्त है, तो ये जो थोड़ा सुस्त है, दो दिन से खाना नहीं खाया, शाम से सुबह से हम वेट करते रहे, या दो दिन हम घर से बाहर होंगे, बेटी घर से गई हुई है, को आज कोचिंग नहीं आई, आज इसका फेवरेट ट्रीट नहीं मिली खाने को, शायद यही सब छोटे छोटे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जिस समय हमको थोड़ा चिंतित हो जाना चाहिए कि यार शायद इसको कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे ह्यूमन के एक साल इक्वलेंट टू, मतलब डॉग का एक साल हमारे ह्यूमन के 7 ईयर्स के बराबर हो जाता है, तो 14 इयर्स एक मैक्सिमम एज मानी जाती है डॉग की औसतन। वैसे जैसे हमारी ह्यूमंस की एज आज की तारीख में धीरे धीरे घटती जा रही है, पहले 90 इयर्स, 100 इयर्स तक भी हमारे ओल्डर पेशेंट्स अच्छे से जी लेते थे, आज हम देखते हैं तो पहले घटते घटते 60 तक, और कई बार तो आजकल 40-45 पे भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है। तो वैसे ही हमारे डॉग्स के साथ भी है, बिकॉज क्योंकि हम भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं और हमारा पेट भी वही एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है। हम देखा जाए तो हमारा पेट भी उसी घर में रह रहा है, जिस घर में हम रह रहे हैं, सेम ब्रीथ सेम सांस जो हम ले रहे हैं वही हमारा पेट ले रहा है, शायद जो हम खा रहे हैं वो भी हमारा पेट खा रहा है, और जो हम खा रहे हैं या हम जो कंजम्पशन ले रहे हैं उन्हीं से ही उनका पेट फूड भी तैयार हो रहा है, ये भी मान सकते हैं। तो जो मेडिसिन या प्रिजर्वेटिव हमारे खाने में हमको लेज में चिप्स में इन सब में जो भी हम ले रहे हैं फूड्स स्नैक्स ये सब जो भी हैं ये ले रहे हैं स्टेपल फूड्स, तो यही जो प्रिजर्वेटिव हैं उनके भी ग्रेवीज में उनके भी ड्राई फूड्स में और साथ साथ उनकी ट्रीट्स में भी आ रही।
1: एक बात कही जाती है डॉक्टर साहब कि पालतू पशु रख लेने से या रखने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई हम समय पे भोजन दे रहे हैं समय पे पानी दे रहे हैं फिर भी हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसा कौन सा व्यवहार करें कि हमारे डॉग को कोई बीमारी ना हो और वो कभी सुस्त ना हो, तो वो क्या एक अच्छे जैसे बच्चों के संदर्भ में भी कहा जाता है कि अभिभावक बनना सबके बस की बात नहीं है, तो वैसे ही मुझे लगता है कि पेट पेरेंट्स बनना भी सबके बस की बात नहीं है, तो वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पेट के अभिभावक में होनी चाहिए?
0: सबसे अच्छे पेट अभिभावक वो हो सकते हैं जो अपने पेट के साथ समय बिताएं। आप अपने पेट को सिर्फ लाइबिलिटी के तौर पर ना पालें, यदि आप अपने घर में पेट लाएं तो उसको एक सदस्य के तौर पर माने, सदस्य के तौर पर मानना ही और उसका दर्जा देना ही एक अलग बात होती है, आपको उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखना वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है
1: जी।
0: उसका वैक्सीनेशन समय पर हो, उसको पेट के कीड़ों की दवाई समय पर दी जाए
1: जी।
0: उसको कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है यदि सीनियर पेशेंट्स है या प्रेग्नेंट है तो उस समय उसकी सप्लीमेंट्स और इन सब की केयर देख रेख करना, साथ ही हमारे पेट्स को एक नियमित तौर पर एक्सरसाइज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, शायद हम इंसानों को भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि अब हम लोग पार्क और ग्राउंड पे जाने की बजाय जिम में कन्फाइन हो गए हैं, तो जब हम पार्क और ग्राउंड में जाते थे तो शायद लोग अपने पेट्स को लेकर के वहाँ घूमते थे, अब जब से जिम का प्रचलन आया है तब से लोग पेट्स को जिम में तो इनकॉर्पोरेट कर नहीं पा रहे हैं, कई बार ऑफिसेज में पेट को कई बार एक आजकल चलन चला था बीच में थोड़े समय में मेट्रो सिटीज में कि कुछ पेट पेरेंट्स या कुछ ऑफिस मतलब जो भी ऑफिस में एम्प्लॉयज थे वो अपने पेट्स को ऑफिस लाने लग गए थे, क्यों? क्योंकि वो 7-8 घंटे वहाँ रहते थे और उनका पेट बहुत छोटा था, कभी कभी कोई कैट हो छोटा पपी हो तो वो लोग अपने पेट्स को ऑफिस में साथ में कैरी करने लगे थे, और कई बार आजकल रहता है कई लेडीज़ हैं जो कि किटी पार्टीज में भी एज अ शो के लिए अपने पेट्स को लेकर के जाते हैं क्योंकि आजकल पेट बिल्कुल पॉकेट वाले हो गए, छोटे छोटे पेट्स हो गए, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे पेट की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मान सकते हैं कि आजकल सोसाइटीज़ क्लोज्ड हैं तो कहीं कहीं जगह पर हमको उनके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि भाई गंदगी ना हो, रोड्स पे नहीं जाएं, किसी दूसरे डॉग से फाइट ना हो जाए, तो कुछ पेट फ्रेंडली पार्क्स भी हैं भोपाल में, जिस पेट फ्रेंडली पार्क्स में आप जा सकते हैं, इवन कई सारे ग्राउंड्स हैं हमारे भोपाल में जो कि अभी रिसेंटली जैसे कोई त्यौहार नहीं है तो वो खाली भी रहते हैं, तो वहाँ पर पे भी आप जा सकते हैं सुबह सुबह के टाइम या थोड़ा सा शाम लेट नाइट के टाइम, और वहाँ जा कर के आप अपने पेट को भरपूर एक्सरसाइज कराने दे सकते हैं। आज ही रिसेंटली की बात है, कुछ पेट पेरेंट्स हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि सर इसको हम घर के बाहर इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि घर के बाहर हमारे बहुत सारे डॉग्स हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आपकी कॉलोनी में लुक लाइट में काफ़ी सारे डॉग्स हैं, बट आपकी कॉलोनी में कोई तो पार्क होगा। बोले हाँ, हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो मैंने बोला आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते? तो वो बोले हम लोग वहाँ ले जा सकते हैं बट हम ही लोग नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ऑफिसेज और ये हस्बैंड नहीं रहते तो कार नहीं रहती तो वहाँ तक जाना और थोड़ा डिस्टेंस रहता है। तो मैंने बोला आप कोशिश करिए कि दिन में नहीं तो 2 दिन में एक बार उसको वहाँ पे जाके वॉक कराइए। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जब से उन्होंने लास्ट 15-10 डेज में उसको एक्सरसाइज कराना शुरू करी और वहाँ वो जाके इतना खूब खेलता है, इतना खेलता है, वो बताते हैं सर कि इसको टॉय वॉय की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये कम से कम 4-5 राउंड तो सिर्फ दौड़ता ही है, और वो यंग डॉग है, लैब्राडोर है, 1 साल का है, और वो खूब दौड़ता है। 4-5 राउंड दौड़ने के बाद बोले जब वो थक जाता है तब वो आ जाता है खुद से कि चलो अब वापस,
1: अब हो गया।
0: और अब उसके बाद से उनको ये समझ में आ रहा है कि जो उसकी एग्रेसिवनेस थी, जो उसकी बेचैनी थी, जो उसको दिन भर घर में रहती थी, वो उस चीज से वो छूट गई।
1: मेरे सामने ऐसे बहुत सारे घर और ऐसे बहुत सारे अभिभावक अब मेरे ध्यान में आ रहे हैं जो आपने बताया था कि सिर्फ एक लायबिलिटी की तरह की भाई इसका खाना पीना देख लिया, अपने घर के बाहरी हिस्से में रखते हैं, जबकि अगर वो खतरनाक नहीं है डॉग तो घर के अंदर भी लिया जा सकता है। तो ये जो पूरे दिन अकेले रहने वाले डॉग होते हैं जिन्हें समय से ले जाया जा रहा है, एक्सरसाइज हो रही है लेकिन सब कुछ ठीक है, पर वो पूरे दिन अकेले हैं, फिर दूसरे दिन या रात में उनको वॉक पर ले जाया जाएगा, ये वाला नज़रिया कितना ठीक है कि घर के दरवाजे पर एक डॉग पूरे दिन बैठा हुआ है अकेला और आते जाते लोगों पे वो भूख रहा है क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई नहीं है, उसके पास समय बिताने के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं?
0: इसमें एक्चुअली क्या होता है मैम, एक फैमिली जैसे हम मान सकते हैं कि फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स की ही ये जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डॉग का पूरा केयर करें, लाते तो बच्चे हैं।
1: हाँ
0: सही बात तो यह है कि लाते तो बच्चे हैं, अब बच्चे शौक शौक में ले आते हैं और फिर उसके बाद उनकी स्कूल और कोचिंग की पढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद उनका एकदम ऐसा निग्लेक्ट होता है कि भाई आए तो कोचिंग से बैग पटका और फोन उठा के शुरू, या फिर आते ही होमवर्क शुरू हो जाता है।
1: आपने बहुत सारे अभिभावकों की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम घरों में यही होता है डॉक्टर साहब कि लाते तो बच्चे हैं और फिर वो पूरी तरह से जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बन जाता है।
0: ये बहुत बड़ा इश्यूज था मैम जब कोरोना खत्म हुआ था।
1: हाँ।
0: जब कोविड टाइम चल रहा था तो एक बार घर में कोरोना के कारण कई सारे लोगों के घर में डेथ भी हुई। उस डेथ को उन्होंने, उससे उभरने के लिए उन्होंने कुछ पेट्स इंट्रोड्यूस किए। किसी वाइफ ने हस्बैंड खोया तो उनने एक पेट दे दिया, किसी घर में किसी के पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे की डेथ हो गई, तो वो कहीं ना कहीं उनने एक पेट को इनकॉर्पोरेट कर लिया एज अ फैमिली मेंबर। फिर समय आया जब वापस लॉकडाउन ओपन हुआ और जो एम्प्लॉयज थे, जो सर्विस कर रहे थे प्रोफेशनल्स, वो वापस अपने अपने बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, जहाँ भी उनके मुंबई शिफ्ट होना शुरू हुए। अब समस्या आई पेट्स कहाँ जाएंगे, जो अब्रॉड जाने वाले थे, अभी भी एक वॉर हुआ था उस समय काफी सारे दुबई से लोग आए इंडिया में, देन अगेन दे उन्होंने यहाँ पे आके पेट्स रख लिए। अब पेट्स को साथ में ले जाना है वापस दुबई, तो कई बार कुछ पेट पेरेंट्स तो अफोर्ड कर सकते थे, बिल्कुल उनकी टिकट कराए और पूरे फॉर्मेलिटीज करके यहाँ से लेकर के गए, बट कुछ पेट पेरेंट्स ऐसे थे कि नहीं अब ये पेट यहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहेगा, तब बड़ी एक इशू आई। लेकिन आज की तारीख में भी मैं ऐसा बता सकता हूँ कि डॉग वॉकर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे ही हम अर्बन क्लैप्स की बात करते हैं घर में क्लीनिंग के लिए, या फिर हम क्लाउड किचन की बात करते हैं घर में कोई गेस्ट आए तो फूड के लिए, वैसे ही आज डॉग वॉकर्स की भी अवेलेबिलिटी है। यदि आप एक डॉग वॉकर भी रख सकते हैं तो सुबह शाम आपकी एब्सेंस में आकर के उसको घुमा करके एक चक्कर, जो भी उसके डेली नीड्स हैं, यूरिन, पॉटी, जो भी उसको करना है, इतना भी करा देंगे तो शायद वो एंगेज हो जाएगा।
1: अब हम रुक करते हैं अपने घर की चार दीवारी से निकलकर सड़क की ओर और ऐसे बात करते हैं ऐसे पशुओं की जो घरों में नहीं रहते, उनकी हम और या और समाज के लोग किस तरह मदद कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि उनके आसपास सड़कों पर रहने वाले जानवर बीमार हैं या उन्हें कुछ ज़रूरतें हो सकती हैं, इसकी कंडीशनिंग के लिए क्या व्यवहार हो सकता है?
0: देखिए मैम, अपन ये देखें कि दयालुता जो होती है, दयालु जो आदमी है, वो सिर्फ सोचने भर की बात नहीं होनी चाहिए, हमारे कार्यों में दिखनी चाहिए।
1: जी,
0: यदि हम एक छोटे से चिड़िया के लिए एक पानी का सकोरा, हमारे घर के बाहर रहने वाले डॉग के लिए, कई बार होता है कि डॉग कार के नीचे, मेरी डेली कार खड़ी रहती है घर के बाहर और उस कार के नीचे हमेशा डॉग या फिर कोई कैट आराम करती ही है। अभी भी मैं जस्ट आया हूँ तो मेरे एक डॉग आराम कर रहा था और मैंने उसको डॉग का फूड वहाँ पे खोल के रैपर डाला, वो उठ के आधा खाया और आधा वो वापस सो गया, मुझे मालूम है कि वो शाम को फिर खाएगा। तो ये दयालुता जो है, ये बेसिकली हमारे एक संवेदनशीलता सिर्फ मानसिक तक नहीं रहनी चाहिए, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी दिखनी चाहिए। जैसे ही हम ये थोड़ा सा अपना दिन का 1% भी उसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग इस चीज पे ओवरकम कर पाएंगे। आज की तारीख में यदि हम बात करते हैं वन हेल्थ का कंसेप्ट जो है, जिसमें एनिमल्स, ह्यूमंस एंड द एग्रीकल्चर, ये तीनों चीज का कंसेप्ट है, जिसमें ये बात बहुत सही बात है कि फार्म टू फोर्क, यदि हम पोल्ट्री फार्म की बात करें, हम डेयरी फार्म की बात करें या फिर हम कोई एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें, इट कम्स ऑन टू अ टेबल। हमारी सुबह उठने की चाय, हमारी दिवाली की मिठाई, हर चीज दूध से आ रही है। तो क्या हमारी ये बेसिक नीड नहीं है कि एनिमल्स का होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? तो जो ये वन हेल्थ का कंसेप्ट है, ये भी बहुत जरूरी है हमको आज समझने के लिए कि हम उनकी आंखों से एक बार देखें कि हमारे पेट के घर के बाहर हैं, कोई बात नहीं, आप उसके लिए एक पानी रख दीजिए, एक कटोरी दूध मिला के, पानी मिला के डाल दीजिए, आप कुछ बिस्किट्स डाल सकते हैं, कई लोग होते हैं जिनके घर में तो बिस्किट्स होते ही हैं, बिस्किट्स डाल सकते हैं, आपकी एक रोटी डाल सकते हैं। अभी तो वैसे भी श्राद्ध का महीना चल रहा है, डॉग्स को रोटी खिलाना एक है, श्राद्ध में एक दिन होता है उसमें डॉग्स को रोटी भी खिलाई जाती है, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि गायों को गोग्रास दिया जा रहा है और चीटियों को भी दिया जा रहा है, कौओं को भी दिया जा रहा है। तो ये एक इस प्रकार का पुण्य को ही मान के हम क्यों ना कर लें कि हम साल भर ही एक गाय को रोटी खिला दें या एक डॉग को रोटी खिला दें।
1: बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, मतलब आपके बहाने से ही, क्योंकि वो मैंने देखा है अनुभव से, मैं कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी चीज़ कंटिन्यूटी की भी होती है। आप 10 दिन लगातार काम करें तो वो पंछी भी आपका इंतज़ार करने लगते हैं और वो पशु भी आपका इंतज़ार करने लगते हैं। क्योंकि मैं एक जगह ग्वालियर में गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ सुबह होते ही सर वो दाना डालती हैं और लगभग 100-150 पक्षी आकर सुबह 5 बजे, अगर हम लोग गए हुए थे तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोल पाया तो उनकी दरवाजे पे बकायदा चिड़ियाँ चोंच मारने लगी। तो ये देख के लगा कि जैसे हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि अब ये नहीं हो सकता। तो मतलब उन्हें भी इतनी सजगता है कि हमारा टाइम हो गया।
0: ये बताइए, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, आपने कौवा कब से नहीं देखा?
1: सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत दिनों से नहीं देखा। हम जैसे सब लोगों ने बहुत दिनों से नहीं देखा।
0: नहीं देखा,
1: नहीं देखा।
0: आज की तारीख में भोपाल में कौवे ढूंढना भी एक बड़ी टास्क हो गई। बहुत सारे बर्ड वॉचर्स से मैंने पूछा, वो बोले कई लोग बताए कि वन विहार साइड में देखे गए, कोई लोग बताए कि न्यू मार्केट में रोशनपुरा चौराहे के आसपास कहीं देखा गया। तो आज अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़पेपर में ही बात चल रही थी कि कौवे कहाँ हैं,
1: कौवे कहाँ हैं।
0: तो यदि हम एक छोटा सा, जैसा आपने बताया, एक प्रयास है, यदि आप एक छोटे से बर्ड्स को दाना डाल रहे हैं तो इससे कम से कम बर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि शायद आज हम भी दाना डालना शुरू करें और हमारे भोपाल में कौवे वापस आए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो गाने खत्म हो जाएंगे जो झूठ बोले कौवा काटे। मुझे लगता है ऐसे गानों की कहीं प्रासंगिकता ही नहीं बचेगी। तो शुरू से हमारे देश में समृद्धता का परिचय ही ऐसे होता था सर कि पशु मवेशी अगर हमारे घर में है, अनाज हमारे यहाँ भरपूर है तो समृद्ध हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आपस में ही सिमट के रह गए हैं। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपसे, और भी मेरा जाने का मन है। एक जो और सवाल है मेरा कि कोई सड़क के पशु पक्षियों के लिए अगर कोई मदद करना चाहता है तो कई बार हम दया के चलते खुद ही मदद करने लग जाते हैं, और इसका कई बार उल्टा भी होता है। अगर डॉग परेशान है या और भी कोई पशु परेशान है तो उल्टा कई बार वो लोग पलट के भी हमला कर देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है।
0: सबसे पहले तो मैम देखिए, हमारे घर के आसपास यदि कोई पेट तो नहीं बोल सकते, स्ट्रे डॉग, यदि कहीं स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैटल, बफेलोज या कोई भी एनिमल आपको वाइल्ड भी मिल सकता है हाईवेज पे, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप कहाँ पर खड़े हैं पहले ये डिसाइड करें। इफ यू आर इन दी सिटी या आप हाईवे पे हैं या जिस भी एरिया में है, वहां पे 1962 एक डायल करके एक एनिमल एम्बुलेंस चल रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चल रही है, और इसमें वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा इस एम्बुलेंस को डिजाइन कराइंग में और इसका इम्पैनलमेंट में, इसको स्टार्ट करने में पॉलिसी को। तो जैसे ही ये पॉलिसी और ये एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई, ये सेवाएं अब चालू हैं। हम कभी सोचते थे कि हमको डायल 108 आके एम्बुलेंस ह्यूमंस के लिए लेगी
1: जी,
0: बट आज 1962 जा करके पेट्स का, स्ट्रे एनिमल्स का, इवन जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, यदि कहीं रोड पे एक्सीडेंटल हैं तो आप उस एम्बुलेंस को बुला करके उनका प्राथमिक उपचार करा सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं आसपास के। फिर उसमें जो सर्विलेंस टीम रहती है वो आगे आसपास में कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को रेस्क्यू करवा लेती है उस एनिमल को।
1: बिल्कुल, 1962 ये नंबर याद रखा जाए श्रोताओं, क्योंकि एक बहुत ही अहम नंबर है। एक और समस्या है, एक तरफ हैं जो लोग बहुत मतलब कहते हैं कि डॉग लवर्स हैं, और दूसरी तरफ हैं जिन्हें लगता है कि घर के आसपास और सड़क पर इतने डॉग्स नहीं होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कई बार मैंने देखा है पड़ोसी पड़ोसी से बहस कर जाते हैं। इस विषय में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें।
0: मैम मैंने तो ये देखा है कि एक आज रात है तो कल सुबह होगी और सुबह है तो रात होगी। यदि कोई एक पशुपालक है, यदि कोई पशु पाल रहा है, जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मैम ने यही कहा कि भाई अब सर एक के बाद दूसरा रखने के मन नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम रख रहे थे, फिर अब हम नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही हमारे घर में भी बहुत, हमारी दादी जी थी और हमारी नानी जी हैं, वो लोग का ये है कि नहीं पशु नहीं होना चाहिए, और आज की तारीख में ये है कि हमारी नानी जी भी पशु रखी हैं और हमारी दादी जी के हमारे घर में भी पशु है। तो ऐसा मन बदलने में देर नहीं लगती। जैसे ही ये उनके मन में, और मैं बता रहा हूँ ना, आप उनके घर में देखेंगे जैसे ही जनरेशन 1, 2, 4, 5, 10 साल हो सकता है आदमी के अंदर हट रहेगी, जैसे ही नाती पोते आते हैं और घर में सब बदल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: सबको मना लेते हैं।
1: आपसे बात करके बहुत बेहतरीन दृष्टि भी मिल रही है कि कैसे पशुओं की नज़र से संसार को देखा जाए। सर एक आखिरी सवाल है हमारे श्रोताओं के लिए कि हमारे श्रोताओं को हम ये बात कैसे समझा पाएं, किस संदेश के माध्यम से समझा पाएं, ताकि पशुओं के प्रति अधिक संवेदनशील, जिम्मेदार और जागरूक समाज बनाने में वो भी अपनी भूमिका निभा सकें।
0: पशुओं की देखभाल केवल भोजन और आश्रय तक सीमित नहीं है, समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, सही पोषण और तनाव मुक्त वातावरण देना भी बेहद जरूरी है। यही पशु पालतू पशुओं की संवेदनशीलता और देखभाल रखने के लिए बेसिक नीड है।
1: श्रोताओं, आज जो हमारी बातचीत हुई है उस लिहाज से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पशुओं के स्वास्थ्य, उनकी देखभाल, उनके प्रति जिम्मेदारी से जुड़े इतने महत्वपूर्ण विषय आज इस बातचीत में उठे हैं, और निश्चित ही आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये साझी धरती है इंसानों की भी और जानवरों की भी, पशुओं की भी, पक्षियों की भी, तो हमको थोड़ा और संवेदनशील होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी अच्छी और इतनी जानकारी भरी बातें की, आपका बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, और आप सभी को भी एक बार फिर विश्व पशु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे विश्व पशु दिवस पर विशेष कार्यक्रम। इस बातचीत में हमारे साथ थे डॉक्टर अंकुर नारद। इसी के साथ ये बातचीत अब यहीं समाप्त होती है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: विश्व पशु कल्याण दिवस पर आप सुन रहे थे हमारी विशेष प्रस्तुति। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद से बातचीत कर रही थी मनीषा चतुर्वेदी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम में आज का विषय है भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया। इस विषय पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौड़ बातचीत कर रही हैं।
1: 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: जो अधिकारी वर्ग होता है आर्मी का, उसका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है?
3: इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर जब आप ज्वाइन करना चाहते हैं
2: जी,
3: तो 2 तरह के कमीशन होते हैं। कमिश्निंग का मतलब होता है कि ऐसे ऑफिसर जब ज्वाइन करते हैं तो ऐसे कमीशन ऑफिसर होते हैं। तो एक परमानेंट कमीशन होता है
2: जी,
3: एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है
2: जी।
3: परमानेंट कमीशन का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद जब आप कमीशन हो जाता है आपका, तो आप मिनिमम 20 ईयर्स आपकी पेंशनेबल सर्विस होती है और वो सर्विस आप जिस लेवल तक जाते हैं वो पूरी कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस में जो सर्विस है वो 10 साल की होती है, वो एक्सटेंडेबल होती है। 10 साल के बाद अगर आप करना चाहते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से परमिटेड है तो 4 साल और आगे कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन कहलाता है। अब इनके लिए जो एंट्री है उसके बारे में हम विस्तार से जिक्र करते हैं। देखिए, जब स्कूल में सबसे पहले जो एंट्री लेवल होता है वो 10+2 का होता है,
2: अधिकारी वर्ग के लिए
3: 10+2 में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए जो स्कीम होती है वो सबसे पहले स्कीम है एनडीए के थ्रू है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ये ट्राई सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के कंबाइंड
2: एंट्रेंस एग्जाम
3: होता है और इसमें तीनों विंग के जो है बच्चे होते हैं। ये साल में 2 बार होता है, मतलब इसमें 6-6 महीने के टर्म्स होते हैं, तो एक साल में 2 टर्म्स होते हैं और इसमें टोटल वैकेंसी जो होती है 320 वैकेंसीज होती हैं पर टर्म। 6 महीने में 320 वैकेंसीज आती हैं, जिसमें से कि आर्मी की तकरीबन 208 वैकेंसीज होती हैं, नेवी की 42 के करीब होती हैं और एयरफोर्स की 70 वैकेंसीज होती हैं। इसका नोटिफिकेशन आता है और इसमें जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं।
2: नोटिफिकेशन हर महत्वपूर्ण समाचार पत्र में आता होगा?
3: बिल्कुल आता है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में मिलेगा, डेली न्यूज़पेपर्स जो आते हैं उसमें भी आता है और फिर इसके अलावा वेबसाइट्स हैं, जिस वेबसाइट का जिक्र किया था joinindianarmy.net,
2: उसके अलावा संस्था की अपनी वेबसाइट पर भी आता होगा इसका विज्ञापन,
3: वो भी आता है। और लेकिन सबसे ज्यादा ये यूपीएससी जो साइट है और जो हमने अभी जिक्र किया है, joinindianarmy इज द बेस्ट साइट एक्चुअली, जिसमें की सारे के सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इसकी जो एज लिमिट है, आपकी उम्र 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 19 साल से कम होनी चाहिए। और ये जो एज का कट ऑफ होता है वो जिस दिन से कोर्स शुरू हो रहा होता है, जैसे एक कोर्स जनवरी में शुरू होता है, एक कोर्स जुलाई में शुरू होता है
2: जी,
3: जो फर्स्ट डे ऑफ द कोर्स होता है
2: जी,
3: उस दिन जो है इस एज
2: ग्रुप में ये एज होनी चाहिए,
3: ये एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन जैसे हमने बात करी थी कि 12th क्लास होना चाहिए, आर्मी के लिए नॉर्मल मतलब किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन फॉर अगर वो एफओस या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी होता है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता है।
2: कर्नल साहब, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनने एज क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, पर मान लीजिए वो दूसरे टर्म में बैठे हैं, जुलाई के बाद वाले टर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या? क्योंकि उन्हें अभी
3: बिल्कुल, जब आप 10+2 कर रहे हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्राइटेरिया क्लियर है, आपकी एज 16.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए
2: जी,
3: और 19.5 से आपकी कम होनी चाहिए, और आपने 10+2 अपीयर कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम देने से पहले भी आप कर सकते हैं
2: जी।
3: और उसमें कट ऑफ ये है कि जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हो उससे पहले आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए और आप पास हो चुके होने चाहिए। जब आपने अगर 10+2 कर लिया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी एज 19.5 से कम है और आपकी शादी नहीं होनी है तो अनमैरिड होना कंपल्सरी है। और अगर आप एयर फोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है फिजिक्स मैथ्स होना कंपल्सरी है, आर्मी के लिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है
2: जी।
3: ये कोर्स एनडीए में 3 साल का होता है और तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के स्टूडेंट एक साथ पढ़ाई करते हैं।
2: अच्छा।
3: और एनडीए खत्म होने पे इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है, बीएससी की ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। तो 3 साल खत्म करने के बाद एनडीए में जिन लोगों ने आर्मी के लिए अप्लाई किया है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं, जहां पे कि उनका 1 साल का और ट्रेनिंग होता है और फिर उनका वहां से कमीशनिंग होती है
2: इंडियन आर्मी के लिए।
3: इंडियन आर्मी के लिए
2: आपने अगर एनडीए क्लैरिफाई कर लिया है तो आप 4 साल मानिए, 1 साल आईएमए का।
3: बिल्कुल, 3 साल एनडीए और 1 साल आईएमए, और 3 साल एनडीए के दौरान आप ग्रेजुएशन हो जाता है आपका, जो कि आप बाहर भी करते हैं। इसमें यह है कि पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है और इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं वहाँ पे। इसमें क्या होता है कि पढ़ाई के अलावा अपनी अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, हॉबीज क्लासेस होती हैं। इफ यू गो देयर देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह की वो एकेडमी है, क्यों उसको वर्ल्ड क्लास एकेडमी कहा जाता है। हर चीज, बॉक्सिंग, हॉर्स राइडिंग, एनी काइंड ऑफ अदर थिंग विच यू वॉन्ट यू कैन थिंक ऑफ। इसी तरह से क्या होता है, 10+2 करने के बाद एक और एंट्री के थ्रू वो जा सकते हैं जिसको हम टेक्निकल एंट्री स्कीम बोलते हैं
2: जी।
3: इसमें क्या है, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं तो इनके लिए ये लागू होता है। जैसे 10+2 में उन्हें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री है जिनके पास, उसमें उन्होंने अप्लाई किया, पर इसमें कंपलसरी क्या है कि वो जेई का एग्जाम दिया होना चाहिए उन्होंने, मतलब जेई का जो मार्क्स है वो जरूरी है
2: जी। और उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है।
3: हाँ, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है।
2: वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस
3: सेम इसमें भी अगेन आपको जो है joinindianarmy.nic में आता है, उसमें नोटिफिकेशन आता है, वो इसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। साल में 2 बार मतलब इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। अगेन जितने जो न्यूज़पेपर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है, सब में ये आता है।
2: इंटरनेट का समय है तो सिर्फ टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी टाइप करे तो उसको जानकारी मिल जाएगी।
3: बिल्कुल मिल जाएगी, और यह सबसे आसान है कि जॉइन इंडियन आर्मी साइट है उसमें आप जाइए, उसमें इन डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। इनका भी जो एज क्राइटेरिया है वो 16.5 से ज्यादा होना चाहिए और 19.5 से कम होना चाहिए।
2: लेकिन ये कंपल्सरीली उन बच्चों के लिए है जो बीटेक करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग जैसी सर्विसेज में जाना चाहते हैं,
3: करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। और इनका कोर्स भी जो है 5 साल का होता है। हर कोर्स में 90 वैकेंसीज होती हैं
2: टेक्निकल एंट्री के लिए
3: जी। इसमें भी साल में 2 बार होता है और 2 फेजेस में होता है। फेज 1 में पहले 1 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग होती है गया में, एंड उसके बाद जो है उनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जैसे जो बच्चे सिग्नल्स में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन है उनके लिए अलग है
2: जी।
3: जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए अलग है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लेते हैं उनके लिए अलग है। अभी जैसे हमने 2 एंट्री की बात करी
2: जी, टेक्निकल और साधारण,
3: टेक्निकल और एनडीए की बात करी और टेक्निकल एंट्री, ये दोनों एंट्री हैं 10+2
2: जी।
3: अब 10+2 के बाद किसी कारणवश आपने इसमें अप्लाई नहीं किया
2: जी,
3: तो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं
2: जी।
3: यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है
2: जी,
3: जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है। इसको हम कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन एंट्री स्कीम है
2: जी।
3: तो इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए हर साल जो है 200 सीटें ट्वाइस एन ईयर होती
2: जी।
3: है इनका भी कोर्स जैसे वही जनवरी और जुलाई में शुरू होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यूपीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं और इसके बारे में जो नोटिफिकेशन होते हैं सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में आते हैं, और इवन ये जो साइट हमने बताया था जॉइन इंडियन आर्मी, इसमें भी इसके बारे में पूरी डिटेल्स रहती हैं। इसका क्वालिफिकेशन ये है कि एज आपकी 19 से ज्यादा होनी चाहिए और 24 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से
2: और किसी भी स्ट्रीम में,
3: किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। देन सेकंड थिंग इज कि आपकी ट्रेनिंग जो होती है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, और डायरेक्ट एंट्री होने के कारण ये 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है
2: जी।
3: तो हमने जैसे जिक्र किया था एनडीए का
2: जी,
3: एनडीए में जो बच्चे 3 साल कंप्लीट करते हैं
2: जी,
3: वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आते हैं और 1 साल की ट्रेनिंग करते
2: जी।
3: हैं जो डायरेक्ट एंट्री जाते हैं
2: जी,
3: वो वहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग करते हैं। इसमें आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी 3 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एनडीए वाले हमेशा सेकंड टर्म आके ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर पासिंग आउट सबका एक साथ रहता है। इसको हम जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू परमानेंट कमीशन के लिए ये स्कीम होती है। इसी तरह से शॉर्ट सर्विस के लिए इसमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 175 सीट्स होती हैं, वैकेंसीज होती हैं ट्वाइस ए ईयर
2: जी।
3: इनके भी 2 कोर्सेज होते हैं और इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए चेन्नई में होती है। सेम इसमें जो एज लिमिट है वो 19 साल कम से कम होनी चाहिए और 25 साल ज्यादा हो सकती है
2: जी।
3: और ग्रेजुएशन सेम इसमें जो है होना चाहिए। और ये सारे के सारे जो जाहिर है क्योंकि फौज की सर्विस ऐसी है तो इसमें अनमैरिड होना कंपलसरी है
2: जी।
3: चाहे कोई भी एंट्री होती है तो उसमें अनमैरिड होना कंपलसरी माना जाता है। इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो तकरीबन 49 वीक्स की होती है, वही 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनका कमीशन होता है
2: जी।
3: देखिए क्या है कि ये तो था यूपीएससी के थ्रू एग्जाम में हमने देखा, यानी हमने पहले देखा कि आप 10+2 के बाद आप 2 एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ग्रेजुएशन के बाद जो है आप एक परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, एक अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा सकते हैं। अब एक और भी ब्रांचेस ऐसी होती हैं, जैसे एक जज एडवोकेट जनरल ब्रांच होती है जिसमें कि लॉ क्वालिफाइड लोग जाते हैं। इसकी वैकेंसी होती है हर कोर्स की तकरीबन 10 वैकेंसी होती है, ये भी साल में जो 2 बार होता है। और इसमें जिन बच्चों ने लॉ किया होता है, जो लॉ क्वालिफाइड होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं।
2: कन्हैया साहब, ये सिर्फ आर्मी के लिए है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू है?
3: ये अभी हम आर्मी की बात कर रहे हैं, जो बाकी उसमें जाएंगे उसमें भी होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या है वो हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम जब आर्मी की बात कर रहे हैं तो इसमें इनकी जो एज ग्रुप है 21 से 27 साल होती है, तो इस एज ग्रुप में अगर वो हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी भी ट्रेनिंग जो होती है वो ओटीए चेन्नई में ही होती है, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद इनको जो है कमीशन मिलता है। इसी तरह से एक स्पेशल एंट्री होती है एनसीसी के बच्चों के लिए, जिसमें कि 50 वैकेंसीज होती हैं, ये भी साल में 2 बार होता है। इसका नोटिफिकेशन जो होता है वो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट से आता है। अप्लाई जब करते हैं तो जो एनसीसी का डायरेक्टरेट होता है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं। इसमें उम्र जो होती है बच्चे की वो 19 साल से ज्यादा होनी चाहिए, 25 साल से कम होनी चाहिए। और कंपलसरी बात यह है कि इसमें सी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका, एनसीसी सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए विद बी ग्रेड मिनिमम, ये कंपलसरी है। तो इनको क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम नहीं देते हैं, इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है
2: जी,
3: सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ये लोग डायरेक्ट जाते हैं और वहां से फिर क्वालिफाई होने के बाद जो है एकेडमी ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा जो है और भी स्कीम्स आती है, जैसे एक टेक्निकल ग्रेजुएट्स एंट्री स्कीम होती है। इसमें भी क्या होता है कि तकरीबन 60 वैकेंसीज होती हैं, साल में 2 बार होती हैं, जिसमें कि जिन बच्चों ने बी कर लिया होता है, बी टेक जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होता है, जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है और 27 साल से कम है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून में, जिससे टेक्निकल एंट्री परमानेंट कमीशन हो गया जब वो आईएमए में जा रहा है। इसी तरह से एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी एक एंट्री होती है,
2: टेक्निकल एंट्री होती
3: है। इसमें मतलब 100 वैकेंसीज होती हैं साल में 2 बार जो होती हैं, और इनकी ट्रेनिंग जो है ओटीए चेन्नई में होती है
2: जी।
3: काफी सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमने बहुत पहले भी बताया था कि इट्स अ वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम, काफी बड़ा स्पेक्ट्रम होता है आर्मी में, तो इसमें काफी और मतलब जो है तरह से आप जो है एंट्री कर सकते हैं। ये मेजर हैं जिनसे जा सकते हैं। अभी एक और सर्विस होती है जो कि बहुत फेमस है, दैट इज मेडिकल सर्विसेज
2: जी।
3: मेडिकल सर्विसेज का एक आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज होता है जो कि आर्मी का है, जिसमें कि डॉक्टर के लिए मतलब एंट्री लेवल उसका 10+2 होता है। उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद वो पूरा का पूरा अपना मेडिकल की पढ़ाई वहीं उसी इंस्टीट्यूट में करते हैं, ये पुणे में है। और फिर इनके बाद ये आर्मी नेवी एयरफोर्स में डॉक्टर्स एज ए कमीशन ऑफिसर बन के कार्य करते हैं। इनका शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है मेडिकल ऑफिसर्स का
2: जी।
3: उसकी एंट्री अलग होती है।
2: अच्छा।
3: इसी तरह से एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज होती है
2: जी।
3: उनकी भी एक एंट्री अलग होती है जिसमें कि लड़कियां जो है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आप जब साइट पर जाते हैं joinindianarmy.tech पे आपको पूरी डिटेल्स पता चल सकती हैं।
2: लेटरल एंट्री की हम लोग आजकल बात करते हैं, जैसे अग्निवीर योजना की बात की उसमें लेटरल एंट्री हो गई, आर्मी में क्या इस तरह की लेटरल एंट्री संभावित है किसी स्पेशल विशेष कार्य के लिए?
3: समय समय पे ये तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, उसके हिसाब से अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं। अग्निपथ स्कीम आई है, ये एक तरह से बिल्कुल ही नया एक्सपेरिमेंट है
2: जी।
3: तो हो सकता है आगे चल के कुछ और आए, तो अभी तक लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हमने जितनी बात करी वो सिर्फ मेल
2: एस्पिरेंट्स जो हैं
3: उनके लिए थी, इसी तरह से इवन फीमेल विमेन के लिए भी एंट्रीज हैं
2: जी।
3: थोड़ा सा हम उसके बारे में भी जानकारी देना चाहेंगे। विमेन के लिए भी जो है 10+2 के बाद वो एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अभी इनके जो वैकेंसीज आती हैं वो एज पर नोटिफिकेशन होती हैं, क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें सेम हैं जैसे हमने आपको पहले बताया था, उसमें कोई चेंज नहीं है, और एग्ज़ाम भी और कोर्सेज भी इनके सेम वही उसी तरह से हैं। 3 साल एनडीए करने के बाद 1 साल लिए आईएमए में ट्रेनिंग करके कमीशन ऑफिसर्स बनेंगे। वुमेन के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जो है वैकेंसीज होती हैं, इनकी 12 वैकेंसीज होती हैं साल में 2 बार, और अगेन उसका भी एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है जो मेल का था, यानी कि 19-25 ईयर्स एज होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, और इनका भी ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग होता है। एनसीसी में भी अगेन जो है सेम जैसे मेल का एंट्री होती है वैसे ही फीमेल के लिए वुमेन के लिए भी एंट्री है, जिसमें साल में इनके लिए अगेन 4 सीट्स होती हैं, ट्वाइस ए ईयर होता है, एज क्राइटेरिया सेम है 19-25, और सीनियर डिवीजन में मिनिमम बी ग्रेड के साथ सीटर सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। इनका डायरेक्ट एसएसबी होता है। जैग ब्रांच में भी जो कि हमने बोला था जज एडवोकेट एंड जनरल ब्रांच जिसमें कि लॉयर्स जाते हैं, इसमें भी वुमेन्स की वैकेंसी होती है और उसमें भी वो अप्लाई कर सकती हैं। एज क्राइटेरिया सेम है 21 से लेकर 27 साल, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी सेम है कि लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए 55% एग्रीगेट के साथ, और इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट के साथ, ये कंपलसरी होता है। इन एडिशन उनका जो है क्लैट पीजी स्कोर जो है प्रिसीडिंग ईयर का मैंडेटरी होता है, एंड इसके अलावा अगर कोई और क्वालिफिकेशन अगर उस समय ज़रूरत होती है तो टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन आते हैं या उस ब्रांच के नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको साइट पे उसकी जानकारी मिलती है। देन इसके अलावा वेमेन का जो है टेक्निकल एंट्री भी होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, सेम वही उनका एज क्राइटेरिया 20-27 ईयर्स है, ओटीए चेन्नई में जाते हैं, साल में 2 बार इनके लिए एग्ज़ाम होता है, 20 वैकेंसी फर्स्ट 6 मंथ्स होती है। इसका भी सेम जैसे मेल का रहता है, इनका भी नोटिफिकेशन जो होता है सारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में और डेली न्यूज़पेपर्स में आता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में तो स्पेशली लेडीज ही जाती हैं, आर्मी डेंटल कोर की वैकेंसीज होती हैं उसमें भी फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो ये मतलब सारी की सारी एंट्रीज हैं जिसमें कि फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एक और बात हम थोड़ा मिस कर गए थे, जो अग्निवीर स्कीम है उसमें भी हमारा आर्मी में कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है
2: जी।
3: उसमें फीमेल यानी कि महिलाएं जाती हैं तो उनके लिए भी वो स्कीम लागू है। बाकी उनके जो क्राइटेरिया है सेम है, सेम एज जो हमने बताया था वही उनके लिए भी लागू होते हैं। आर्मी में जाने के लिए ऑफिसर बनने के लिए आपको रिटन एग्जाम के अलावा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होना होता है।
2: वो एक तरह का इंटरव्यू होता है
3: जी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक तरह का इंटरव्यू होता है, लेकिन ये 5 दिन का होता है
2: जी।
3: तो 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है ये काफी टफ होता है, एंड इसके लिए काफी तैयारी करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे जिस दिन जाते हैं आप, ये 2 स्टेजेस में होता है। इसमें पहले दिन जो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके अलावा एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट बोलते हैं, ये इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। इसमें जो बच्चे पास कर लेते हैं वो अगले 4 दिन के लिए टेस्ट देते हैं, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, ग्रुप टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होते हैं, और इंटरव्यूज होते हैं। तो ये पूरा का पूरा 5 दिन के लिए होता है, एंड इसके लिए जो सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं जैसे भोपाल में है, बैंगलोर में है, जालंधर में है, और इलाहाबाद में है। तो ये जो है सेंटर्स हैं, इसी तरह से एयरफोर्स के भी हैं सेंटर्स जो हैं अलग हैं, नेवी के भी हैं। एसएसबी जो है किसी भी ब्रांच में किसी भी विंग में ऑफिसर बनने के लिए कंपलसरी होता है
2: जी।
3: और यही डिसाइड करता है आपका सिलेक्शन जो है होगा या नहीं। श्रोता हैं वो और ज़्यादा इसके बारे में जो है नेट के ऊपर जो है जानकारी हासिल कर सकते हैं, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट.
2: बिल्कुल, ऑल द बेस्ट. श्रोताओं के साथ साथ हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई और इतने अच्छे तरीके से बताई. इस तरह से बताएं कि कोई भी हमारा युवा हतोत्साहित नहीं होगा. महिलाओं के लिए भी है, ग्रेजुएट्स के लिए भी है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए भी है, सबके लिए हर स्तर पर कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी उपस्थित है. कर्नल साहब, जो सिलसिला शुरू किया है हमने महत्वपूर्ण जानकारियों का, वो आगे भी जारी रहेगा. आप हमारे श्रोताओं से और महत्वपूर्ण बातें जानकारियां साझा करें. इसी विनती के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू अदिति. जय हिंद श्रोताओं.
4: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को. ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने.
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व.
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व. इस कार्यक्रम में आज का विषय था भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया. जानकारी दी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा ने और इनसे बातचीत कर रही थी अदिति गौड़. 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहें रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए.

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम में आज हम डिफेंस स्पेस एजेंसी पर जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA यानी अंतरिक्ष में भारत की सुरक्षा की नई चौकी के बारे में।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू, आज तो आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। देखिए ना, कितने सारे तारे चमक रहे हैं।
2: अरे हाँ, जब शहर की रोशनियां कम होती हैं, तब ही आसमान की असली सुंदरता दिखाई देती है।
1: दादू, आज मेरे मन में एक बात आई। देखिए, अब तक हमने जहाजों की बात की, विमानों की बात की, मिसाइलों की बात की, लेकिन आप ये बताइए मुझे, क्या देश की सुरक्षा का संबंध अंतरिक्ष से भी होता है?
2: बिल्कुल होता है बेटा, क्यों नहीं होता। मुझे लगता है बेटा, आज का विषय तुम्हें खुद ही मिल गया।
1: सो तो है दादू।
2: हाँ बेटा, बहुत गहरा संबंध है। आज की दुनिया में केवल जमीन, समुद्र और आकाश ही महत्वपूर्ण नहीं है, अंतरिक्ष भी रणनीतिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है।
1: यानी सुरक्षा की एक नई सीमा अंतरिक्ष भी है दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल सही।
1: अच्छा दादू, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्या है जो सुरक्षा के लिए इतना जरूरी है?
2: अच्छा ये बताओ, आज हम मोबाइल पर दिशा कैसे खोज लेते हैं?
1: ये तो बहुत आसान है दादू, हम ऐसा GPS की मदद से कर पाते हैं।
2: और मौसम का पूर्वानुमान कैसे पता कर लेते हैं?
1: वो हम उपग्रहों की मदद से कर पाते हैं।
2: TV प्रसारण, संचार, समुद्री जहाजों की निगरानी, सीमा क्षेत्रों की जानकारी, इन सब में भी उपग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बेटा।
1: यानी हम रोज जिन सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उनके पीछे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह काम कर रहे होते हैं।
2: बिल्कुल बेटा, और यही उपग्रह देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
1: दादू, पहले के युद्ध तो जमीन पर लड़े जाते थे, फिर समुद्र और आकाश भी इसमें शामिल हो गए, अब क्या अंतरिक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का हिस्सा बन गया है?
2: हाँ बेटा, आज कई देश अंतरिक्ष को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि यदि किसी देश के उपग्रह आधारित क्षमताएं प्रभावित हो जाएं, तो उसके

0: अंतरिक्ष क्षमताओं के बेहतर समन्वय और उपयोग को मजबूत किया जा सके।
1: दादू, यानी आज की कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष और भारत की सुरक्षा के बदलते रिश्ते की कहानी है।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल। और इस कहानी में उपग्रह है, संचार है, निगरानी है, नेविगेशन है, और सबसे बढ़कर भारत की बदलती सुरक्षा जरूरतों के साथ बदलती तकनीक है।
1: अच्छा दादू, क्या DSA हमारी सेनाओं से सीधे जुड़ी है?
0: हाँ बेटा, और यही इसकी सबसे खास बात है। DSA का संबंध थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों की अंतरिक्ष से जुड़ी जरूरतों से है बेटा।
1: इसका क्या मतलब है दादू, मैं तो नहीं समझी।
0: देखो बेटा, ऐसा है, तीनों सेनाएं अंतरिक्ष से मिलने वाली जानकारी और तकनीक का उपयोग करती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी हो, समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना हो, संचार व्यवस्था हो, या ऐसे ही कई दूसरे काम, इनमें अंतरिक्ष आधारित प्रणालियां सहायता से करती हैं।
1: मतलब अंतरिक्ष ऊपर है, लेकिन उसका लाभ जमीन, समुद्र और आकाश तीनों को मिलता है।
0: हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक।
1: अच्छा दादू, आपने कहा था कि उपग्रह देश की सुरक्षा में मदद करते हैं, कहा था ना? लेकिन वे ये सब कैसे कर पाते हैं?
0: बिटिया, कल्पना करो कि तुम्हें किसी बहुत बड़े मैदान की निगरानी करनी है।
1: तो मैं किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाऊंगी?
0: बिल्कुल, ऊंचाई पर जाने से तुम्हें एक साथ ज्यादा बड़ा क्षेत्र दिखाई देगा। अंतरिक्ष से पृथ्वी के बड़े बड़े क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में भी यही सिद्धांत उपयोगी होता है।
1: तो ऊंचाई बढ़ने के साथ निगरानी का दायरा भी बढ़ सकता है दादू।
0: हाँ बेटा, यही बात हमें समझाती है कि अंतरिक्ष आधारित प्रणालियां रक्षा और सुरक्षा के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
1: अब बात कुछ कुछ समझ में आ रही है मुझे।
0: अब एक और बात सोचो बेटा।
1: वो क्या?
0: अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह केवल पृथ्वी को देखने में ही मदद नहीं करते, संचार भी करते हैं। आधुनिक सेनाओं के लिए तेज और सुरक्षित संचार बेहद महत्वपूर्ण है।
1: मतलब अलग अलग स्थानों पर मौजूद सैनिकों और सैन्य इकाइयों को एक दूसरे से जुड़े रहने में भी अंतरिक्ष आधारित प्रणालियां मदद करती हैं।
0: बिल्कुल, उपग्रह आधारित संचार लंबी दूरी तक संदेश और सूचनाएं पहुंचाने में सहायता करता है, और इसी कारण अंतरिक्ष तकनीक आज राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण क्षमताओं में शामिल हो चुकी है।
1: दादू, कुछ समय पहले मैंने मिशन शक्ति का नाम सुना था, क्या उसका संबंध भी अंतरिक्ष से है?
0: हाँ बिटिया, मिशन शक्ति भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण था। सरल शब्दों में कहें तो इसके माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में मौजूद एक लक्ष्य को भेदने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया।
1: मतलब वैज्ञानिकों ने ये करके दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष से जुड़ी जटिल तकनीकी चुनौतियों को समझने और उनका सामना करने में सक्षम है दादाजी।
0: बिल्कुल, और यही हमें बताता है कि अंतरिक्ष अब केवल वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान का क्षेत्र नहीं रहा, ये देश की तकनीकी क्षमता और सुरक्षा से भी बड़ा जुड़ चुका है बेटा। DSA की कहानी समझने के लिए हमें केवल उपग्रहों को समझना काफी नहीं होगा, हमें ये भी समझना होगा कि भारत अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को सुरक्षा के लिए किस तरह व्यवस्थित करता है और उसका किस तरह उपयोग करता है ना बिटिया? अब यहीं से हमारी कहानी एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ती है। जब अंतरिक्ष इतना महत्वपूर्ण है तो वहां मौजूद प्रणालियों और क्षमताओं की सुरक्षा कैसे की जाती है?
1: दादू, अंतरिक्ष तो इतना विशाल है कि उसकी कोई सीमा कहीं दिखाई ही नहीं देती है, तो फिर वहाँ किसी चीज पर नजर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है?
0: यही तो सबसे रोचक बात है बिटिया। अंतरिक्ष भले ही बहुत विशाल हो, लेकिन पृथ्वी की कक्षाओं में आज हजारों उपग्रह घूम रहे हैं। इनके अलावा पुराने उपग्रहों के हिस्से, रॉकेट के अवशेष और कई दूसरी वस्तुएं भी अंतरिक्ष में मौजूद हैं।
1: अरे अरे, समझी मैं, मतलब अंतरिक्ष उतना खाली नहीं है जितना हम समझते हैं।
0: बिल्कुल बेटा, खासकर पृथ्वी की कक्षाओं में लगातार गतिविधियां होती रहती हैं। अलग अलग देशों के उपग्रह अपने अपने काम कर रहे होते हैं।
1: तो दादू, फिर तो ये जानना जरूरी हो जाता होगा कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है।
0: बिल्कुल सही बेटा, यदि किसी उपग्रह और अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी वस्तु की स्थिति और गति की जानकारी ना हो तो टकराव का खतरा हो सकता है। इसीलिए अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है।
1: वाह दादू, यानी जैसे धरती पर यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए वाहनों की स्थिति और गति पर ध्यान रखा जाता है, वैसे ही अंतरिक्ष में भी वस्तुओं की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। सही कहा ना आपकी रुचि ने?
0: हाँ बेटा बिल्कुल, शाबाश। इसी जागरूकता और निगरानी को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इसकी सही और समय पर जानकारी रखना कहा जाता है। जैसे सक्रिय उपग्रह पुराने उपग्रह, रॉकेट के हिस्से और अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे अवशेष, इन सब पर नजर रखी जाती है।
1: दादू तो क्या ये आपस में टकरा भी सकते हैं?
0: हाँ हाँ बेटा, अगर समय रहते उनकी स्थिति और गति का पता ना चले तो टकराव का जोखिम हो सकता है।
1: क्या अंतरिक्ष में भी सैनिक होते हैं दादाजी?
0: अरे नहीं बेटा, अंतरिक्ष में अभी वैसी सैन्य चौकियां नहीं है जैसे हम धरती पर देखते हैं।
1: तो फिर अंतरिक्ष की सुरक्षा कैसे होती है?
0: अंतरिक्ष सुरक्षा मुख्य रूप से तकनीक, निगरानी, विश्लेषण और समन्वय के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है।
1: मतलब यहाँ युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी और तैयारी होती है?
0: हाँ बेटा, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा समय रहते सही जानकारी प्राप्त करने और उसके आधार पर तैयारी करने पर निर्भर करता है।
1: दादू एक बात अभी भी मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आई।
0: अच्छा, वो क्या?
1: वो ये कि उपग्रह अंतरिक्ष से इतनी सारी जानकारी पृथ्वी तक कैसे भेजते हैं?
0: देखो, उपग्रहों में अलग अलग प्रकार के सेंसर और उपकरण लगाए जाते हैं। ये अपने उद्देश्य के अनुसार पृथ्वी से जुड़ी अलग अलग तरह की जानकारी एकत्र करते हैं।
1: तो क्या हर उपग्रह में कैमरा लगा होता है?
0: जरूरी नहीं, कुछ उपग्रहों में पृथ्वी की तस्वीरें लेने वाले सेंसर होते हैं, लेकिन केवल तस्वीर लेना ही उनका काम नहीं होता। कुछ सेंसर ऐसी जानकारियां भी एकत्र कर सकते हैं जिन्हें हमारी आंखें सीधे नहीं देख सकती।
1: दादू मतलब उपग्रह की आंखें भी अलग अलग तरह की होती है क्या?
0: हाँ बेटा, और इन सेंसरों से प्राप्त जानकारी को उपग्रह की संचार प्रणाली के माध्यम से पृथ्वी पर स्थित ग्राउंड स्टेशन तक भेजा जाता है और फिर वहां इस जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। यहीं से अंतरिक्ष से मिली जानकारी उपयोगी सूचना में बदलती है और यही जानकारी कई महत्वपूर्ण निर्णयों में सहायता प्रदान करती है।
1: यानी दादू, भविष्य में अंतरिक्ष हमारे रोजमर्रा के जीवन और देश की सुरक्षा दोनों के लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है।
0: बिल्कुल बेटा, लेकिन अंतरिक्ष की ये दुनिया केवल बड़े वैज्ञानिकों या अंतरिक्ष यात्रियों की नहीं है, इसमें उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अवसर है जो आज से ही विज्ञान को समझने और नए सवाल पूछने की आदत डालें, जैसे कि हमारी रुचि बिटिया सवाल पूछती है।
1: दादू आप भी ना, मैं बड़ी हो गई हूँ अब। यानी आज का एक छोटा सा सवाल कल किसी बड़े आविष्कार की शुरुआत हो सकता है।
0: हाँ बेटा, विज्ञान की दुनिया में बड़े बदलाव अक्सर छोटे से सवाल से ही शुरू होते हैं, और अगर कोई बच्चा अंतरिक्ष, उपग्रह या रक्षा तकनीक में काम करना चाहता है तो उसे केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नई तकनीक सीखने की आदत भी डालनी चाहिए।
1: दादू तो क्या आज के समय में विज्ञान कई क्षेत्रों का मेल है?
0: हाँ बेटा, अंतरिक्ष विज्ञान में भौतिकी, गणित, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर डेटा और इंजीनियरिंग सबकी अपनी अपनी भूमिका है। इसीलिए सीखने का दायरा जितना व्यापक होगा संभावनाएं उतनी ही बढ़ेंगी।
1: दादू आपकी बातों से आज मुझे एक बात तो समझ में आ रही है भाई, कि अंतरिक्ष हमसे बहुत दूर दिखाई देता है लेकिन उसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत पास से पड़ता है।
0: हाँ बेटा, यही आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। बेटा अंतरिक्ष केवल तारों को देखने की जगह नहीं है बल्कि ज्ञान, तकनीक और भविष्य की संभावनाओं का एक विशाल संसार है,
1: और हमारा भारत भी इस यात्रा में पीछे नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं है, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी क्षमताएं बहुत विकसित की है और अब अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक का उपयोग देश की सुरक्षा, संचार, मौसम, आपदा प्रबंधन और अनेक दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है बिटिया, जो चीज दूर से रहस्य लगती है उसे समझने की कोशिश करो तो वही ज्ञान बन जाती है,
1: और शायद इसी ज्ञान से कोई नया विद्यार्थी कल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अपना योगदान दे दे।
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, हो सकता है आज हमारा कोई श्रोता भविष्य में वैज्ञानिक बन जाए, उपग्रह तैयार करे, नई तकनीक विकसित करे, देश की सुरक्षा को मजबूत करने वाली किसी व्यवस्था का हिस्सा बने।
1: दादू एक बात मुझे बहुत रोचक लगती है, उपग्रह पृथ्वी से इतनी दूर होते हैं फिर भी उनका काम हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
0: यही तो अंतरिक्ष विज्ञान की विशेषता है, अंतरिक्ष में मौजूद तकनीक धरती पर रहने वाले लोगों की अनेक तरह से सहायता करती है बेटा। मौसम की जानकारी, दिशा बताने वाली प्रणालियां, संचार और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में सहायता करना, समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और भी बहुत कुछ।
1: दादू हम लगातार सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंतरिक्ष तकनीक केवल रक्षा कार्यों के लिए ही उपयोगी है?
0: नहीं बेटा, कई बार अंतरिक्ष तकनीक सीधे लोगों की जान बचाने में भी सहायता करती है।
1: सच में?
0: हाँ बेटा।
1: कैसे?
0: मान लो किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, चक्रवात आ जाए या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए।
1: तब तो बहुत जल्दी और सटीक जानकारी पहुंचनी चाहिए दादू।
0: बिल्कुल बेटा, ऐसे समय में उपग्रहों से प्राप्त चित्र और सूचनाएं प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति समझने और राहत एवं बचाव कार्यों की बेहतर योजना बनाने में मदद करती है।
1: यानी अंतरिक्ष में मौजूद तकनीक धरती पर संकट झेल रहे लोगों तक मदद पहुंचाने में भी सहयोग कर सकती है।
0: सही कहा बेटा तुमने, अंतरिक्ष कई बार हमारे लिए एक अदृश्य सहायक की तरह काम करता है।
1: अच्छा दादू, समुद्र में तो चारों ओर पानी ही पानी होता है, फिर वहाँ पर उपग्रह कैसे मदद कर सकते हैं?
0: समुद्र क्षेत्र बहुत विशाल होते हैं बेटा, जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने, समुद्र और मौसम की स्थिति जानकारी प्राप्त करने तथा दूर दराज के क्षेत्रों में संचार बनाए रखने में अंतरिक्ष आधारित प्रणालियाँ महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। कई बार समुद्र के ऐसे क्षेत्रों में जहां जमीन से सहायता या संचार सीमित होता है, उपग्रह आधारित प्रणालियां बेहद उपयोगी साबित होती हैं।
1: दादू आपने कहा था कि कुछ उपग्रह समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कहा था ना? तो क्या उनका कोई नाम भी है?
0: हाँ बेटा, ऐसे ही महत्वपूर्ण उपग्रहों में एक है GSAT-7, जिसे कई लोग रुक्मणी के नाम से भी जानते हैं।
1: रुक्मणी? दादू उपग्रह का इतना सुंदर नाम, लेकिन ये समुद्र में हमारी मदद कैसे करता है?
0: देखो बेटा, GSAT-7 भारत का एक महत्वपूर्ण संचार उपग्रह है, जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया था। इसे वर्ष 2013 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया।
1: यानी ये उपग्रह नौसेना के लिए एक तरह से अंतरिक्ष में मौजूद संचार केंद्र जैसा काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा, समुद्र बहुत विशाल है, जब हमारे जहाज लंबी दूरी तक समुद्र में तैनात होते हैं तो बेटा उनके लिए लगातार और विश्वसनीय संचार बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। GSAT-7 ऐसी ही संचार आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: लेकिन दादू समुद्र में तो जहाज एक जगह रुके नहीं रहते, वो तो लगातार चलते रहते हैं।
0: सही कहा, और यही तो अंतरिक्ष आधारित संचार की खासियत है। उपग्रह की मदद से समुद्र में दूर तक मौजूद नौसैनिक प्लेटफॉर्मों के साथ संचार संपर्क बनाए रखने में सहायता मिलती है।
1: तो इसका मतलब है कि जमीन से बहुत दूर समुद्र में मौजूद हमारे जहाज भी अपने मुख्यालय और दूसरे महत्वपूर्ण केंद्रों से संपर्क बनाए रख सकते हैं।
0: हाँ बेटा, आधुनिक नौसैनिक अभियानों में सूचना का समय पर आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। संचार जितना मजबूत और भरोसेमंद होगा, उतना ही बेहतर ढंग से नौसेना अपने अभियानों का समन्वय कर पाएगी।
1: अब समझ में आया, यानी समुद्र में सुरक्षा केवल जहाजों और हथियारों से नहीं होती, बल्कि उनके पीछे एक मजबूत संचार व्यवस्था भी जरूरी होती है दादाजी।
0: हाँ बेटा शाबाश, और यही वो जगह है जहाँ अंतरिक्ष तकनीक समुद्री सुरक्षा की रीढ़ को मजबूत करने में मदद करती है।
1: लेकिन दादू आपने तो कहा था कि कुछ उपग्रह समुद्र पर नजर रखने में भी मदद करते हैं, तो क्या GSAT-7 भी वही काम करता है?
0: यहाँ एक बात समझना जरूरी है बेटा, हर उपग्रह की अपनी विशेष भूमिका होती है। GSAT-7 की प्रमुख भूमिका सुरक्षित और विश्वसनीय संचार उपलब्ध कराना है। समुद्री निगरानी और जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत के पास अन्य अंतरिक्ष एवं समुद्री निगरानी प्रणालियां भी हैं।
1: यानी

0: बाजार है बेटा। अंतरिक्ष में मौजूद तकनीक दिखाई भले ना दे, लेकिन उसका योगदान धरती, समुद्र और आकाश तीनों जगह महसूस किया जा सकता है।
1: हाँ दादाजी, ऐसे ही न जाने और कितने अंतरिक्ष साथी होंगे ना हमारे।
0: हाँ हाँ बेटा, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में ऐसे कई उपग्रह हैं जिनकी अपनी अलग अलग कहानी और अपनी अलग जिम्मेदारी है।
1: दादू, तो क्या ये सभी उपग्रह केवल संदेश पहुंचाने का ही काम करते हैं?
0: नहीं नहीं बेटा, कुछ उपग्रह पृथ्वी का अवलोकन भी करते हैं।
1: यानी पृथ्वी की तस्वीरें लेते हैं?
0: हाँ, ऐसे उपग्रहों की सहायता से विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कार्टोसैट श्रृंखला के उपग्रह पृथ्वी अवलोकन से जुड़े महत्वपूर्ण उपग्रहों में गिने जाते हैं।
1: यानी वे ऊपर से धरती को देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
0: तुमने एकदम सही समझा बेटा। ऐसे ही रिसेट श्रृंखला भी भारत की महत्वपूर्ण पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं का हिस्सा रही है।
1: अच्छा दादू, इनकी विशेषता क्या होती है?
0: विभिन्न प्रकार के सेंसर और तकनीकें वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराती है।
1: मतलब अलग अलग उपग्रह अलग अलग प्रकार का काम करते हैं।
0: हाँ बेटा, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़ी टीम में हर सदस्य की भूमिका होती है।
1: दादू, जब हम सीमा पर तैनात सैनिकों की बात करते हैं तो अंतरिक्ष उनसे कैसे जुड़ता है?
0: इसको बेटा ऐसे सोचो, यदि किसी दुर्गम क्षेत्र में तैनात सैनिकों को मौसम, दिशा या संचार से जुड़ी सटीक और समय पर जानकारी मिले तो उनका काम कितना आसान हो सकता है।
1: मतलब अंतरिक्ष तकनीक उन्हें बेहतर जानकारी और संचार की सुविधा उपलब्ध करा सकती है।
0: हाँ हाँ बेटा, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में सूचना का महत्व बहुत बढ़ गया है। उपग्रह उस सूचना को सही समय पर उपलब्ध कराने और दूर दराज के क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: अब समझ में आया दादू कि अंतरिक्ष और सुरक्षा का संबंध कितना गहरा है। आसमान में दिखाई देने वाले उपग्रह भले ही हमें नजर ना आए, लेकिन उनका असर हमारी धरती पर हर दिन दिखाई देता है।
0: हाँ बेटा, यही अंतरिक्ष विज्ञान की असली ताकत है, दूर रहकर भी धरती के बेहद करीब काम करना।
1: अच्छा दादू, अलग अलग देश अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए ना कि क्या ये केवल प्रतिस्पर्धा है?
0: नहीं नहीं बेटा, ये प्रतिस्पर्धा के साथ साथ जिम्मेदारी भी है।
1: जिम्मेदारी? कैसे जिम्मेदारी?
0: देखो, अंतरिक्ष को पूरी मानवता की साझा धरोहर माना जाता है, इसीलिए इसका उपयोग सोच समझ कर शांतिपूर्ण उद्देश्यों और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।
1: मतलब तकनीकी प्रगति के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है?
0: हाँ बेटा बिल्कुल।
1: दादू, अब मुझे लग रहा है कि विज्ञान की किताबों में पढ़ी हुई बातें वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। वही गणित, वही भौतिक विज्ञान, वही तकनीक आगे चलकर उपग्रहों और अंतरिक्ष प्रणालियों का आधार बनती है।
0: हाँ बेटा बिल्कुल सही।
1: यानी आज का एक छोटा सा विज्ञान प्रयोग कल किसी बड़े मिशन की नींव बन सकता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, ये बात तो तुमने किसी वैज्ञानिक की तरह कह दी।
1: अच्छा दादू, अच्छा सुनिए ना, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमने अब तक जिन संस्थाओं की कहानी जानी वे सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी थी। किसी का संबंध जहाजों से था, किसी का मशीनों से था, किसी का विशेष धातुओं से था और किसी का विमानों से था।
0: हाँ बेटा, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी।
1: ज्ञान, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और दादू, आज DSA की कहानी ने भी दिखाया है कि यही यात्रा अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है।
0: सही कहा बेटा, तारों के बीच भारत की उपस्थिति अब केवल कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता की वास्तविकता है।
1: दादू, जब हम छोटे थे तो तारों को देखकर कहानियां सुनते थे। कोई कहता था कि वहाँ परियां रहती हैं, कोई कहता था कि वो देवताओं का लोक है।
0: हाँ बेटा, हर पीढ़ी ने अपने अपने ढंग से आकाश को समझने की कोशिश की है।
1: लेकिन आज का भारत आकाश को केवल देखता नहीं है बल्कि उसे समझने और उसका उपयोग करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल बेटा, यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबी है, वो जिज्ञासा को ज्ञान में बदल देता है।
1: मतलब जिन तारों को देखकर कभी लोग केवल कल्पनाएं करते थे, आज उन्हीं के बीच हमारे उपग्रह भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
0: हाँ बेटा, और ये केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुसंधान और दूरदृष्टि का परिणाम है।
1: दादू, पहले मुझे लगता था कि सुरक्षा का मतलब केवल सैनिक, टैंक, विमान ये सब होते होंगे, लेकिन अब लगता है कि सुरक्षा का अर्थ उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
0: हाँ बेटा, यदि संचार सुरक्षित है, जानकारी समय पर मिल रही है, मौसम की चेतावनी समय पर पहुंच रही है और महत्वपूर्ण प्रणालियां सही ढंग से काम कर रही हैं, तो ये भी सुरक्षा का ही हिस्सा है।
1: मतलब आधुनिक युग में सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि तकनीक, सूचना और अंतरिक्ष में भी सुनिश्चित की जाती है।
0: बिल्कुल सही बेटा, और यही कारण है कि आज अंतरिक्ष क्षमताओं को इतना महत्व दिया जा रहा है।
1: दादू, अब मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्पेस एजेंसी केवल एक संस्था का नाम नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जिसमें देश भविष्य की चुनौतियों को पहले से समझकर उसकी तैयारी करता है।
0: सही कहा बेटा, क्योंकि जो राष्ट्र केवल आज के बारे में सोचता है वो पीछे रह जाता है, लेकिन जो आने वाले कल के बारे में सोचता है वही आगे बढ़ता है, और यही दूरदृष्टि किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है।
1: दादू, क्या आपको लगता है कि आज के बच्चे भविष्य में अंतरिक्ष से जुड़े बड़े काम कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आज जो बच्चा रात को आसमान देखकर प्रश्न पूछ रहा है वही कल उपग्रह डिजाइन कर सकता है बेटा, नई तकनीक विकसित कर सकता है और अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना भरपूर योगदान दे सकता है।
1: यानी मैं भी?
0: क्यों नहीं बेटा।
1: दादू, हर बड़ा वैज्ञानिक सफर एक छोटे से प्रश्न से शुरू होता है,
0: और तुम तो प्रश्न पूछने में पहले से ही माहिर हो।
1: लेकिन दादाजी, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है।
0: अच्छा।
1: आज की चर्चा के बाद जब भी मैं रात के आसमान को देखूंगी ना, तो मुझे केवल तारे नहीं दिखाई देंगे।
0: तो और क्या दिखाई देगा?
1: मुझे उन अनगिनत वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं की मेहनत दिखाई देगी जो वर्षों तक काम करके ऐसी तकनीक विकसित करते हैं।
0: बहुत सुंदर बेटा, शाबाश।
1: और दादू, मुझे ये भी याद रहेगा कि देश की प्रगति केवल बड़ी इमारतों या मशीनों से नहीं होती बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से भी होती है।
0: बिल्कुल सही बात है बेटा, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की प्रतिभा और उनके सामूहिक प्रयास में छिपी हुई होती है।
1: दादू, हमने देश की रक्षा और अनुसंधान की इस श्रृंखला में कितनी अलग अलग संस्थाओं की कहानियां जानी ना, जहाज बनाने वाली, भारी मशीनें बनाने वाली, विशेष धातुएं विकसित करने वाली, विमान बनाने वाली और अब अंतरिक्ष से जुड़ी संस्था।
0: सही कहा बेटा, और इन सभी कहानियों का संदेश भी एक ही है कि आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द नहीं बल्कि लगातार सीखने, शोध करने और आगे बढ़ने की यात्रा है।
1: और दादू, मैं भी अब आगे बढ़ती हूँ, आपकी चाय का जो समय हो रहा है।
0: समझ गई लाडली।
1: श्रोताओं, आज आपने जानी डिफेंस स्पेस एजेंसी अर्थात DSA की कहानी, एक ऐसी संस्था जो अंतरिक्ष से जुड़ी क्षमताओं के समन्वय और उपयोग के माध्यम से भारत की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगले पड़ाव में फिर चलेंगे रुचि और दादू के साथ किसी नए विषय की यात्रा पर। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन किया स्वाति गिरी ने। मैं थी आपके साथ भगवती सक्सेना
0: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहे रेडियो आजाद हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसके अंतर्गत आज हमने डिफेंस स्पेस एजेंसी पर जानकारी प्राप्त की।
3: नमस्कार आदाब, मैं हूँ पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
4: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: तो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। हमारा अगला कार्यक्रम है हिंदोस्ता हमारा। आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा के जीवन पर केंद्रित है।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर सन 1857 को काठियावाड़ प्रांत के मंडलीय ग्राम में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से श्याम जी के मन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर क्रांति योजनाओं का संचालन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय क्रांति दर्शन को व्यापक रूप प्रदान करने और विश्व में उसे सम्मानीय स्थान दिलाने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। प्रार्थनाओं और याचनाओं से स्वाधीनता अर्जित न होते देख उन्होंने क्रांतिकारी हथकंडों का प्रयोग शुरू कर दिया और लंदन को भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा बना दिया। ज्वलंत भावनाओं के चेतनशील नवयुवकों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने हजारों रुपए की छात्रवृत्तियों की घोषणा की। इन्हीं छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए लाला हरदयाल और विनायक सावरकर जैसे विद्यार्थी लंदन पहुंचे थे। श्यामजी वर्मा का उद्देश्य इन नौजवानों को लंदन में क्रांति की दीक्षा देकर भारत में क्रांति का संचालन करवाना था। श्यामजी वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार तीव्रता से किया जाने लगा। लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। इस भवन में भारतीय क्रांतिकारियों को ठहरने की सुविधा प्रदान की जाती थी, जहां विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था थी। श्यामजी वर्मा ने ये साबित किया था कि भारतीय क्रांतिकारी दुश्मन के घर में सेंध लगाने का दुस्साहस कर सकते थे।

0: पगला गया है ये।
1: अगर हम पगलाए न होते तो सारा देश दुकानदारों का हो गया होता। हम देश को, अपने गांव को और बस्ती को अपना घर समझते हैं, बाजार और दुकान नहीं समझते।
0: अच्छा है? तो फिर दिवाली पर घरों की पुताई क्यों करते फिर रहे हो?
2: क्रांतिकारियों की पेंटिंग ही बनाते रहते भैया है,
0: सारी उम्र यही तो किया है।
1: अरे तुम नहीं समझोगे कल्लू, एक से दिल और दिमाग की आग शांत होती है तो दूसरे से पेट की आग।
2: हम तो यही जानते हैं हरिया, तुम्हारे हाथों में बड़ा हुनर है, लेकिन तुमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं।
1: एक हम ही नहीं है, इस देश में लाखों दीवाने ऐसे थे जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अगर अपना अपना सोचते तो क्या भगत सिंह जैसे दीवाने फांसी के फंदे पर झूलते? क्या चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाते?
3: लेकिन हरिया, अपनी इस अंबेडकर बस्ती में रहने वाले तो आज भी आजादी की रोशनी से दूर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। समाज में बराबरी तो अभी तक नहीं आई।
1: ऐसा नहीं है कल्लू, बाबा साहब ने तो हमारे समाज की ही नहीं पूरे देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी तो समाज से असमानता और छुआछूत जैसी बुराइयों को हटाने का काम भी किया। हमारा संविधान भी बाबा साहब ने बनाया। एक बात समझ लो, इस देश की आजादी में हर सिपाही की लड़ाई अलग अलग थी और लड़ने का तरीका भी अलग अलग था।
2: अब तुमसे कौन जीत सकता है हरिया, लो चाय पियो। लेकिन नाना भैया, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हमारे राम भरोसे भैया जो हैं, अपने ढाबा छोड़कर गायब कहाँ हो गए हैं आजकल?
4: क्या बताएं भैया, जब से हरिया ने उनसे कहा है कि आपको आसपास के गांवों के बच्चों को आजादी की कहानियां सुनानी है, बस तभी से परेशान है, शायद तैयारी में लगे हुए हैं।
2: लेकिन यूं तो आजादी के दीवानों की कहानियां उनकी पोटली में हमेशा रहती हैं, फिर अब ये तैयारी की क्या जरूरत आ गई भाई? हमें तुम्हें कितनी कहानियां सुनाई है उन्होंने।
4: सच पूछो तो बच्चों से डर लग रहा है उन्हें, पता नहीं बंदरों की फौज कब क्या पूछ ले।
2: अच्छा।
4: हाँ, फिर उनके लिए वो गीत संगीत की तैयारी भी कर रहे हैं, और पता है कल्लू, बच्चों ने भी उनकी पोटली देखकर उनका नाम पोटली बाबा रख दिया है।
2: क्या कहा, पोटली बाबा?
4: हाँ।
2: अच्छा नाम है भाई, अच्छा नाम है।

0: बच्चों, आज की कहानी सुनने से पहले ये तस्वीर देखो। ये लंदन की एक इमारत है।
1: अरे, इतनी बड़ी इमारत?
0: हाँ, और इस 3 मंजिला इमारत का नाम है इंडिया हाउस, जिसका निर्माण लंदन में सन 1904 में क्रांतिकारी विचारक श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कराया था, जो वास्तव में लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए तंत्रिका तंत्र या कहें दिमाग के रूप में कार्य करने लगे थे। ये इंडिया हाउस भारतीय क्रांतिकारियों का एक घर ही बन गया था।
2: वहाँ इंग्लैंड में बाबा?
0: हाँ, और इस इमारत में क्रांतिकारियों की हलचल भी शुरू हो गई थी। आज हम जिस क्रांतिकारी की कथा सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने इंडिया हाउस की दीवारों में क्रांति की इबारत लिखी थी। उन्होंने ही इस इमारत को क्रांतिकारियों के लिए एक ऐसा किला बना दिया था, जहां वे सब सुरक्षित भी थे और जहां से उन्हें क्रांति की रूपरेखा तैयार करने में मदद भी मिलती थी।
1: क्या नाम था उनका बाबा?
2: अरे, अभी नाम तो बताया था बाबा ने।
0: आज हम उन्हीं क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे, और अपनी बात शुरू करने के लिए हमें लंदन से पूना चलना होगा।
2: लंदन से पूना कैसे जाएंगे बाबा?
1: बस कहानी के रास्ते पहुंच जाएंगे।
0: 20वीं शताब्दी की शुरुआत के दिनों में भारत में ब्रिटिश जासूस परेशान हो रहे थे। पूना में मिस्टर रैंड और मिस्टर आयरिस की हत्या के आरोप में चाफेकर बंधुओं यानी दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर और वासुदेव चाफेकर के साथ महादेव रानाडे को भी फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था, और उम्मीद थी कि अब कोई क्रांतिकारी हलचल नहीं होगी। लेकिन अंग्रेजों को क्या पता था कि भारतीय क्रांतिकारी रक्त बीज होते हैं।
1: ये रक्त बीज क्या होते हैं बाबा?
0: रक्त बीज पुराण कथाओं का एक चरित्र है। उसको जब कोई मार देता था तो उसके खून से हजारों ऐसे रक्त बीज पैदा हो जाते थे।
1: अच्छा?
0: हाँ, एक क्रांतिकारी का खून बहा तो उसे देखकर कितने ही नए क्रांतिकारी अपना रक्त बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाफेकर बंधुओं के बलिदान को अधिक दिन नहीं हुए थे कि पूना में एक बार फिर बम का धमाका हुआ। ब्रिटिश जासूस और अफसर परेशान हो गए।
3: ये कैसे हो सकता है? अभी अभी तो हमने चाफेकर ब्रदर्स को फांसी पर लटकाया था। तुम सब बोला था अब सब ठीक हो गया है, तो फिर ये क्या हो रहा है? पुणे में बम कहां से फूटा? हमको ये आदमी मांगता है। हमारा सरकार ने पूरा हिंदुस्तान में जासूसों का जाल बिछा दिया है, और ये लोग तुमको हमको उल्लू बनाता है। जाने कहां से आता है, बम फोड़ता है और फेंक जाता है। ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हमको बताओ ये आदमी कौन है जो इन धमाकों के पीछे खेल रहा है?
4: सर, हमारे पास पक्का इन्फॉर्मेशन है कि इन सबका सरदार श्याम जी वर्मा है। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी योजनाएं बनाने का पक्का खिलाड़ी है वो।
3: जब तुमको उसका नाम मालूम है, उसका काम मालूम है, तो तुम उसको पकड़ते क्यों नहीं? हम भी देखेगा ये श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन है।
5: श्याम जी वर्मा कौन है? ये सवाल अंग्रेजी अफसर के दिमाग में ही नहीं कुलबुला रहा, बल्कि समूचे अंग्रेजी हुकूमत के दिलो दिमाग में गूंज रहा है कि श्याम जी वर्मा कौन है। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं इस सवाल का जवाब। दरअसल मैं ही हूं श्याम जी कृष्ण वर्मा। आप कहेंगे नाम में क्या रखा है, अपने काम के बारे में बताओ। वैसे तो मेरे बारे में जानने के लिए अंग्रेजी जासूसों की फौज लगी हुई है, लेकिन वो मेरे बारे में हाल फिलहाल तो शायद ही कुछ जान पाएं। लेकिन आपसे वादा किया है तो अपने अतीत के बारे में बताता हूं। पहले तो ये जान लें कि मेरा जन्म 4 अक्टूबर 1857 को कठियावाड़ के मंडलीय ग्राम में हुआ था। औसत परिवार में पैदाइश के बावजूद मैंने अपना सारा ध्यान पढ़ने की तरफ लगाया और संस्कृत में अपना अध्ययन इस ऊंचाई तक ले गया कि इंग्लैंड के विद्वान भी मेरी ओर आश्चर्य से देखने लगे थे। एक दिन आचार्य जी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तब मुझे पता नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा मुझे लंबे समय से थी। आचार्य जी, आपने मुझे बुलाया?
6: हाँ भाई, अब तुम्हें तो हमसे मिलने की फुर्सत मिलती नहीं, सो हमने ही तुम्हें बुला भेजा। इसके बाद तो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि शायद तुम हमारे बुलाने पर भी ना आ पाओ।
5: मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है आचार्य जी, किंतु आपने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है?
6: नहीं नहीं, इसमें भूल की कोई बात नहीं है श्याम, बल्कि ये तो गौरव का विषय है। आज संस्कृत में तुम्हारे ज्ञान और अधिकार के कारण इंग्लैंड के विद्वान भी तुम्हें प्रकांड विद्वान मानने लगे हैं, और आज ही मुझे ब्रिटेन के संस्कृत विद्वान मोनियर विलियम्स का ये पत्र मिला है। लो, तुम स्वयं ही पढ़ लो।
5: मोनियर विलियम्स का पत्र? अरे, ये तो मेरा सौभाग्य है।
6: वो चाहते हैं श्याम कि तुम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल करो, और देखो यदि ऐसा हुआ तो ऐसा करने वाले तुम पहले भारतीय होगे।
5: हाँ आचार्य जी, जी हाँ। गुरुजनों और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की और बैरिस्ट्री की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सन 1885 में जब मैं शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटा तो कई भारतीय रियासतों ने मुझे अपने यहां बुलाना चाहा, लेकिन मैंने चुनाव रतलाम रियासत का किया। 2 साल तक मैं वहां दीवान के पद पर काम करता रहा। इस बीच रतलाम रियासत की उन्नति से प्रभावित होकर उदयपुर के शासक फतेह सिंह जी ने मुझे राज्य मंत्री का ओहदा सौंपा, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर मेरा मन क्रोध और विरोध से भर गया।

0: मैंने नौकरी छोड़कर क्रांति की मशाल थामने का संकल्प किया और इसी का नतीजा है कि आज अंग्रेजी हुकूमत और उनके जासूस मेरी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं।
1: हमने तुमको यहाँ किस लिए नौकरी पर रखा है? आई वांट एक्शन। तुमको जो कुछ करना है जल्दी करो, उसको पकड़कर हमारे सामने लाओ।
2: लेकिन अंग्रेज जासूस हरकत में आते उससे पहले ही श्यामजी वर्मा भारत से लंदन जा पहुंचे थे। दुश्मनों के घर में सेन लगाने के काम में ये भारतीय क्रांतिकारी माहिर था। भारत में होने वाले विस्फोटों से श्यामजी कृष्ण वर्मा का गहरा संबंध था। भारतीय क्रांति का ये योद्धा वैचारिक लड़ाई लड़ने में भी माहिर था। लंदन में बैठकर श्याम जी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम से एक अंग्रेजी पत्रिका निकालना शुरू की और भारतीय क्रांति के दर्शन को सारी दुनिया के सामने रखा।
3: साथियों, प्रार्थनाओं और याचनाओं का असर हमने ब्रिटिश हुकूमत पर देख लिया। ये लोग इस तरह हमारी बात मानने वाले नहीं है, इसलिए क्रांतिकारियों का रास्ता ही अब हमारे लिए बचा है। साथियों, ऐसा लगता है कि भारत में कोई भी आंदोलन केवल गोपनीय तरीके से ही चल सकता है।
2: इस पत्रिका की प्रतियां धड़ल्ले से बिकने लगी और इससे श्यामजी वर्मा के प्रयासों को एक बड़ा संबल मिला और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से ही भारतीय क्रांति के संचालन का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। सन 1907 में उन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट में लिखा,
3: भारत में अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए रूसी क्रांतिकारियों की पद्धति ही उपयोगी हो सकती है। अंग्रेजों के अत्याचारों को खत्म करके उनके बोरिया बिस्तर बंधवाने का काम रूसी क्रांतिकारियों के रास्ते पर चलकर ही किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि यहां लंदन में रहकर अभी भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें ज्वलंत भावनाओं के चेतनाशील नवयुवक चाहिए जो लंदन में क्रांति की दीक्षा लेकर भारत में सफल क्रांति का संचालन कर सकें। और ऐसे नवयुवकों को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ छात्रवृत्तियां घोषित करेंगे। ये छात्रवृत्तियां ऐसे युवकों को दी जाएंगी जो यहां लंदन में हमारे आंदोलन से वैचारिक और व्यावहारिक रूप से जुड़ सकेंगे। लेकिन एक शर्त रहेगी कि छात्रवृत्ति लेने वाले युवक कभी भी ब्रिटिश सरकार में नौकरी नहीं करेंगे। ये वायदा उन्हें करना होगा। मुझे लगता है कि इस तरह कई ऊर्जावान नवयुवक हमारे साथ आएंगे।
2: और वास्तव में हुआ भी यही। इन छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए कई नवयुवक इस आंदोलन से जुड़े। इनमें वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सेनापति पांडुरंग, महादेव बापट जैसे क्रांतिकारी भी श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे।
4: गुरुजी, आपको बहुत बहुत बधाई, आखिर आपके सपने साकार होने लगे।
5: आओ बापट आओ। क्या बात है बापट, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, लगता है कोई अच्छी खबर लाए हो।
4: आप ही ने कहा था ना गुरुजी, यहाँ लंदन में रहकर भारतीय युवक हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं।
5: हाँ भाई, कहा तो था, और इसीलिए तो हमने कई स्कॉलरशिप भी घोषित की थी।
4: गुरुजी, अब हमारी योजना रंग ला रही है।
5: अच्छा,
4: आपके इस आंदोलन से कई नौजवान जुड़ रहे हैं जिनमें देश की आजादी का जज्बा भी मौजूद है, और ये लोग किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। वीर सावरकर, वीवीएस अय्यर, सरदार सिंह राणा, सब एक से बढ़कर एक हैं।
5: और तुम अपना नाम कैसे भूल गए महादेव बापट? हैं?
4: भूला नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन अपने मुंह से अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता ना।
5: अच्छा चलो, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ, क्या खबर लाए हो
4: गुरुजी? आपको हरदयाल का नाम याद है?
5: हरदयाल? हाँ हाँ, अरे अच्छी तरह से याद है बापट, बहुत अच्छी तरह से याद है। सिर्फ नाम ही नहीं, उसका चेहरा भी आज तक मेरी आंखों के सामने से कोंता रहता है। अरे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हरदयाल कोई मामूली नौजवान नहीं है। अरे उसकी आंखों में चमक है, और उसकी चमक बताती है वो आज भी अपने देश पर मर मिटने को तैयार है। काश ये युवक हमारे साथ होता। लेकिन उसे तो ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप मिली है ना?
4: असली खुशखबर तो मैं लेकर आया हूँ गुरुजी।
5: अच्छा बोलो क्या बात है?
4: हरदयाल ने ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप ठुकरा कर अपनी छात्रवृत्ति मंजूर कर ली है।
5: क्या कह रहे हो बापट, तुम सचमुच आज मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर लाए हो। हरदयाल का हमारी टीम में आना निश्चय ही एक शुभ लक्षण है।
4: अब इस बात पर तो गुरुजी मिठाई होनी चाहिए।
5: मिठाई? अरे मिठाई तो अभी कहाँ मिलेगी बापट।
4: मुझे मालूम है गुरुजी, आपकी रसोई में बेसन के लड्डू हमेशा रखे रहते हैं।
5: अरे तुम्हारी वीरता और चतुराई से तो मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेकिन इस जासूसी का मुझे जरा भी पता नहीं था।
4: अब आप ही कहा करते थे ना, एक क्रांतिकारी को हमेशा सजग, सचेत और जानकारियों से भरा पूरा होना चाहिए।
5: हाँ तो ये है तुम्हारी जानकारी बेसन के लड्डुओं के बारे में, है ना? अरे मान गए बापट, मान गए। अब जाओ और रसोई की अलमारी में रखा है लड्डुओं का डिब्बा।
4: अरे वाह,
5: ले आओ उसे। अरे वैसे भी हरदयाल के आने की खुशी में आज इंडिया हाउस में मिठाई तो बांटी ही जाएगी ना,
4: जी,
5: है ना बापट? चलो जाओ लेके आओ।
4: अरे अभी लाया मैं।
2: उधर श्याम जी जाने माने विचारक स्पेंसर के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। स्पेंसर का एक वाक्य उन्होंने अपने जीवन में गुरु मंत्र की तरह अपना लिया था।
3: साथियों, आक्रामकता का विरोध और प्रतिरोध करना न सिर्फ न्यायोचित है बल्कि अनिवार्य भी है। हर्बर्ट स्पेंसर का ये कथन मैंने अपने जीवन का मंत्र बना लिया है। मैं चाहता हूं हमारे आंदोलनकारी साथी भी इस मंत्र को अपनाएं और हर आक्रमण का विरोध करने के लिए अपने को तैयार कर लें।

0: 1904 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारतीय क्रांतिकारियों को लंदन में ठहरने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडिया हाउस नाम का तिमंजिला भवन बनवाया। ये एक प्रकार का छात्रावास था, जहां भारतीय विद्यार्थी निशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था पाकर क्रांति के प्रचार का काम करते थे। एक दिन इंडिया हाउस में युवा क्रांतिकारियों के साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा गोपनीय बैठक में चर्चा कर रहे थे।
1: वर्मा जी अभी
2: आ जाना चाहिए था, तो
1: पता
3: है। युवा क्रांतिकारियों, ये दोहराने की बात नहीं है कि अपने देश से दूर यहां लंदन में बैठकर हम सब इंडिया हाउस की इस छत तले केवल एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। वो मकसद है भारत की आजादी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के प्रकाशन और उसकी सफलता के बाद हमने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी कर दी है। इसके माध्यम से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रचार प्रसार जिस तेजी से किया जा रहा है, उसमें आप सबका योगदान निश्चय ही सराहनीय है। लेकिन साथियों, हम लोगों का काम जिस तरह प्रभावशाली और सफल होता जा रहा है, उसे देखते हुए अब हमारा काम उतना ही मुश्किल भी होने लगा है। यहां भी ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे कामों और ठिकानों पर पड़ गई है।
1: ये क्या कह रहे हैं सर, क्यों यार?
2: कुछ समझ में नहीं आता, क्या सचमुच?
3: हाँ साथियों, ब्रिटिश जासूसों की नजर हमारे हर ठिकाने पर पड़ गई है।
0: इससे पहले कि श्याम जी ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में आते, सन 1910 में वे लंदन छोड़कर फ्रांस में पेरिस पहुंच गए और वहां से क्रांति का संचालन शुरू कर दिया। पेरिस में श्याम जी के जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर प्रवासी भारतीय सरदार सिंह राणा ने भी दो छात्रवृत्तियां घोषित कर दी और अब भारतीय क्रांतिकारी बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए पेरिस तक पहुंचने लगे। हेमेंद्र दास और उल्लास दत्त, दो बंगाली युवक, बम बनाना सीखने के लिए सबसे पहले पेरिस पहुंचे थे। इन सबके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा का घनिष्ठ संबंध रहा।

0: श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत से हजारों मील दूर रहकर भी यूरोप से स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया और देश की आजादी के सपने को जिंदा रखा। पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर श्याम जी कृष्ण वर्मा को फ्रांस से स्विट्जरलैंड के जिनीवा में जाकर बसना पड़ा। गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में 4 अक्टूबर 1857 को पैदा हुए इस क्रांतिकारी ने जिनीवा में रहकर भी एक क्रांतिकारी गुरु की भूमिका निभाई। 31 मार्च 1930 को जिनीवा में उनका निधन हो गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह को कारगर हथियार के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1905 में उन्होंने कहा था,
1: अगर भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह को अपना लें तो एक हफ्ते में ही उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो जाएगा। अगर हम उनका सामान खरीदना बंद कर दें और हर वर्ग में उनसे लेन देन पर रोक लगा दें तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई गुनाह होगा। इस तरह इन गोरों की मदद न करके भी हम उन्हें बेहद परेशान कर सकते हैं।
0: उधर इंडिया हाउस से जुड़कर क्रांतिकारियों ने भारत में स्वाधीनता संग्राम को चलाते हुए किस तरह धमाके किए, इन सब के बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे। क्यों बच्चों?
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा, आज की कड़ी स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्याम जी कृष्ण के जीवन पर केंद्रित थी। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
4: जेम्स रबी की हत्या, एक मौत जिसने साम्राज्य को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। क्या आप जानते हैं कि 1887 में एक सुदूर जंगल में एक अकेले ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मी साम्राज्य के बीच लगभग युद्ध छेड़ दिया था। वो व्यक्ति था जेम्स रबी, और नाफ नदी के मुहाने पर हुई उसकी मौत केवल एक साधारण अपराध नहीं थी, ये उस मानवीय आपदा का रक्त रंजित चरमोत्कर्ष था जिसे अंग्रेज हताशा में अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी 1785 में शुरू होती है जब बर्मा ने अराकान पर आक्रमण किया, जिसके कारण हजारों शरणार्थी भागकर कंपनी के चटगांव जिले में आ गए। ये मगह शरणार्थी अंग्रेजों के लिए कृषि श्रम का एक संभावित जरिया थे, लेकिन वे एक राजनयिक दुस्वप्न भी थे। बर्मी जनरल वानकेचा उच्च पदस्थ अराकानी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था और उसे कंपनी की सीमाओं की कोई परवाह नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने शरणार्थियों की इस पहली लहर को कैसे संभाला? उन्होंने उन्हें जुआओ डी बैरोस नामक एक पुर्तगाली जमींदार की देखरेख में रख दिया और उसे एक मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब बर्मी सेना ने वास्तव में सीमा पार की तो कंपनी की स्थानीय सेना, जो संसाधनों की कमी से जूझ रही थी और अपनी हार से डरी हुई थी, पीछे हट गई। ये महसूस करते हुए कि ब्रिटिश सुरक्षा एक खोखला वादा है, शरणार्थी पहाड़ियों में भाग गए और जीवित रहने के लिए मुक्त लूटपाट और डकैती का रास्ता चुन लिया। इसी अराजकता के बीच जेम्स रबी को लूट लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। रबी की मौत तक स्थानीय कलेक्टर छिपाने की संस्कृति का पालन कर रहा था। वो कलकत्ता में अपने वरिष्ठों के सामने अक्षम न दिखने के लिए बर्मी छापों की रिपोर्ट को हल्का करके पेश करता था, लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक की हत्या ने सब कुछ बदल दिया। ये एक ऐसी खबर थी जिसे अधिकारी अब दबा नहीं सकते थे, जिसने फोर्ट विलियम्स की केंद्र सरकार को आखिरकार ये स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि उनकी दक्षिणी सीमा एक कानून विहीन शून्य बन गई है। इस संकट का परिणाम वास्तव में विचित्र था। बर्मी गवर्नर वाजा, जिसे पेगू राजा के नाम से जाना जाता है, उसने रवि की हत्या को एक प्रोपेगेंडा हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ब्रिटिश कलेक्टर को एक ताना मारते हुए पत्र लिखा, जिसमें दावा किया गया कि वो 4,000 मस्कटधारियों के साथ चटगांव पर आक्रमण कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था लागू की जा सके और उन लुटेरों को पकड़ा जा सके जिन्होंने अंग्रेज को मारा था। क्या आप इस संकट की दुखद विडंबना जानते हैं? कलेक्टर शियरमैन बर्ड ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शरणार्थियों को लुटेरा घोषित कर दिया और कहा कि वे कभी भी देश की कोई आवश्यक सेवा नहीं करेंगे। वो पूरी तरह से इस तथ्य को भूल गए कि सुरक्षा प्रदान करने में उनकी अपनी विफलता ने ही उन्हें अपराध के लिए मजबूर किया था। जेम्स रवि की मौत इस बात की याद दिलाती है कि विचारों के साम्राज्य में ईआईसी अक्सर अपने झंडे के नीचे रहने वाले लोगों की सुरक्षा से अधिक सत्ता की छवि की परवाह करती थी।

जोआओ डी बैरोस ब्रिटिश और बर्मी साम्राज्य के बीच एक पुर्तगाली जमींदार। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय इतिहास के सबसे विस्फोटक शरणार्थी संकटों में से एक को संभालने के लिए पुर्तगाली मूल के एक जमींदार पर भरोसा किया था। ये कहानी है जोआओ डी बैरोस की, जिनकी चटगांव सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित जागीर ब्रिटिश कंपनी और विस्तारवादी बर्मी साम्राज्य के बीच एक उच्च स्तरीय राजनयिक गतिरोध का केंद्र बन गई थी। ये नाटक सन 1785 में शुरू हुआ, जब अराकान पर बर्मी आक्रमण के बाद हजारों शरणार्थी ब्रिटिश कब्जे वाले चटगांव की ओर भागने लगे। इन हताश लोगों में केवूटी जैसे उच्च पदस्थ राजनीतिक विद्रोही और अराकान के दिवंगत राजा का परिवार भी शामिल था। तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर चार्ल्स क्रॉफ्ट्स उलझन में थे। वे इन शरणार्थियों को जिले के कम आबादी वाले ग्रामीण इलाकों में बसाने के लिए संभावित श्रम शक्ति के रूप में चाहते थे, लेकिन उनके पास उनकी रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य संसाधन नहीं थे। लिमिटेड राज की स्थानीय सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाते हुए क्रॉफ्ट्स ने इन शाही शरणार्थियों को जोआओ डी बैरोस के घर में ठहराया। एक पुर्तगाली जमींदार के पास उन्हें रखकर कंपनी डी बैरोस को एक मानव ढाल और प्रशासनिक बफर के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि बर्मी जनरल वानकेचा, जिसने अभी-अभी अराकान जीता था, इस व्यवस्था से नहीं डरा। उसने क्रॉफ्ट्स को धमकी भरे पत्रों की एक श्रृंखला भेजी, जिसमें केवूटी और उनके अनुयायियों को तुरंत सौंपने की मांग की गई। क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ जब अंग्रेजों ने बर्मी जनरल की धमकी को हल्के में लिया? क्रॉफ्ट्स ने शुरू में चटगांव बटालियन का एक हिस्सा नाफ नदी के मुहाने पर भेजा, लेकिन प्रांत के सुदूर कोनों में अनिश्चित काल के लिए सेना रखने का खर्च वो नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही उन्हें वापस बुला लिया। कमजोरी के इस संकेत को देखकर वानकेचा ने कंपनी के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और कंपनी की कई बंगाली प्रजा को मार डाला। शरणार्थियों को जल्द ही एहसास हो गया कि जोआओ डी बैरोस की शरण स्थली केवल खोखलेवादों का एक जाल थी। वे पहाड़ियों में भाग गए। केवूटी को अंततः बर्मी लोगों ने पकड़ लिया और मार डाला। अपनी मृत्यु से पहले उसने ब्रिटिश शासन पर एक मार्मिक आरोप लगाया। उसने कहा, जो लोग सुरक्षा के लिए भागे थे, उन्हें वो सुरक्षा और संरक्षा नहीं मिली जिसकी वे अंग्रेजों से उम्मीद कर रहे थे। डी बैरोस की देखरेख में मौजूद लोगों की रक्षा करने में विफलता के विनाशकारी परिणाम हुए। सुरक्षा की उम्मीद खो चुके कई शरणार्थी जीवित रहने के लिए लुटेरे और डाकू बन गए। इसी अराजकता के कारण सन 1787 में एक ब्रिटिश नागरिक जेम्स रवि की कुख्यात हत्या हुई। जोआओ डी बैरोस की कहानी हमें एक दिलचस्प सबक सिखाती है। विचारों के साम्राज्य में जब कोई राज्य अपने सबसे कमजोर मेहमानों की रक्षा करने में विफल रहता है, तो वो केवल अपना सम्मान ही नहीं खोता, वो अपनी सीमाओं पर व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता भी खो देता है।

0: नजर जब एक उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार बन गया। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के भारतीय कूटनीति की दुनिया में एक साधारण सा उपहार राजनीतिक आत्मसमर्पण का हथियार हो सकता था? ये कहानी है नजर की, यानी वो औपचारिक उपहार जो अधीनता का प्रतीक था और इस बात की कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इसे प्रतिबंधित करने के लिए इतने जुनूनी क्यों हो गए थे। नजर के डर को समझने के लिए हमें पहले कॉर्नवालिस के पूर्ववर्ती वॉरेन हेस्टिंग्स को देखना होगा। हेस्टिंग्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जीवित रहने के लिए मुगल मुखौटा पहनना होगा। वे मुगल राजकुमारों के साथ भव्य जुलूसों में निकलते थे और इस राजनीतिक कल्पना को स्वीकार करते थे कि कंपनी सम्राट की सेवक है। इस दुनिया में नजर का आदान प्रदान शासक और शासित के बीच परिचित संबंधों का मॉडल था। इन उपहारों को भेंट करके ब्रिटिश अधिकारी स्वदेशी वैधता के सदियों पुराने नाटकीय प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा। कॉर्नवालिस एक ब्रिटिश कुलीन और पेशेवर सैनिक थे जिनके पास उन चीजों के लिए धैर्य नहीं था जिन्हें वे अपमानजनक समारोह कहते थे। उनके लिए किसी भारतीय शासक को नजर भेंट करना कोई शिष्टाचार नहीं था, बल्कि ये एक अपमानजनक स्थिति थी जिसने ब्रिटिश श्रेष्ठता के भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। ये तनाव 1789 में चार्ल्स मैलेट नामक एक राजनयिक के साथ चरम पर पहुंच गया। मैलेट मराठा संघ के नेता पेशवा के दरबार में कंपनी के रेजिडेंट थे। एक औपचारिक बैठक के दौरान उम्मीद की गई कि मैलेट अपने हाथों से नजर पेश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कॉर्नवालिस ने उनसे क्या कहा? उन्होंने मैलेट को इनकार करने का आदेश दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें कभी भी, यहाँ तक कि किसी नौकर के माध्यम से भी, खुद को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहिए। कॉर्नवालिस का मानना था कि ब्रिटिश सरकार की गरिमा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसने साम्राज्य को थाम रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय समाज अत्यंत सतर्क है और किसी स्थानीय राजकुमार के प्रति व्यक्तिगत सम्मान के किसी भी संकेत को व्यक्तिगत अक्षमता या कमजोरी के रूप में देखा जाएगा। उन्हें डर था कि यदि अंग्रेज अधीनस्थ दिखाई दिए तो उन्हें हीन वर्ग के लोगों के रूप में देखा जाएगा और कंपनी का विचारों का साम्राज्य गायब हो जाएगा। नजर पर प्रतिबंध लगाकर कॉर्नवालिस मुगल मुखौटे को उतार फेंकने और उसकी जगह अंग्रेजों के अडिग चरित्र को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। वे कंपनी को शौकिया और विश्वसनीय व्यापारियों के समूह से एक पेशेवर नौकरशाही में बदलना चाहते थे जो भारतीय समाज से अलग और उनसे ऊपर खड़ी हो। ये प्रतिबंध केवल शिष्टाचार के बारे में नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की घोषणा थी। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि प्रतिष्ठा के दम पर टिके राज्य में अंग्रेज अब अधीनस्थ दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नजर का डर हमें एक दिलचस्प सबक सिखाता है। शुरुआती राज में एक उपहार केवल एक उपहार नहीं था, ये उस साम्राज्य के कवच में एक दरार थी जो अपने दिल में राजनीतिक नाटक का एक नाजुक हिस्सा था।
1: भारतीय रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की प्रयोगशालाओं में एक गहरा बौद्धिक परिवर्तन आकार ले रहा था। प्रतिष्ठित रसायन शास्त्री F.G. डोनन के मार्गदर्शन में तीन युवा भारतीय विद्वानों ने एक ऐसा बंधन बनाया जो अंततः उनके स्वदेश के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने वाला था। इतिहास में रसायन विज्ञान के थ्री मस्केटियर्स के रूप में प्रसिद्ध इस समूह में शांति स्वरूप भटनागर, ज्ञानचंद्र घोष और ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी शामिल थे। उनकी ब्रिटेन की यात्रा भारतीय छात्रों के उस रणनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी जो सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पश्चिम में उच्च शिक्षा की तलाश कर रहे थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्हें डोनन के रूप में एक ऐसा गुरु मिला जिसने उपनिवेशिक परिधि और महानगरीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान के बीच एक महत्वपूर्ण संस्थागत सेतु के रूप में कार्य किया। डोनन की प्रयोगशाला एक ऐसी भट्टी साबित हुई जहाँ इन विद्वानों के साथ औपनिवेशिक अधीनस्थों जैसा व्यवहार नहीं किया गया। बल्कि उन्हें एक वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय के समान भागीदारों के रूप में देखा गया। लंदन में इन वर्षों के दौरान बनी इस मित्रता ने आपसी समर्थन का एक आजीवन नेटवर्क तैयार किया, जो उपमहाद्वीप में लौटने पर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1920 के दशक में भारत लौटने पर थ्री मस्केटियर्स ने एक ऐसी शैक्षणिक दुनिया में प्रवेश किया जो तेजी से विस्तार कर रही थी। जेसी बोस और पीसी राय जैसे वरिष्ठ दिग्गजों की सलाह पर शांति स्वरूप भटनागर को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भौतिक रसायन विज्ञान के अध्ययन के रूप में नियुक्त किया गया। भटनागर का करियर भारतीय वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रमाण बन गया। वे रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए नाइट की उपाधि दी गई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक उन्हें ही नियुक्त किया गया। जेसी घोष ने भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया और बाद में स्वतंत्र भारत के योजना आयोग में सेवा दी। मुखर्जी के साथ मिलकर इन तीनों ने भारतीय वैज्ञानिकों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया जिसने यूरोपीय सिद्धांतकारों के लिए केवल तथ्य संग्रहकर्ता की उपनिवेशिक भूमि को अस्वीकार कर दिया था। उनकी सफलता H.B. मेडलिकॉट जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के उन नस्लीय पूर्वाग्रहों को सीधा जवाब थी जिन्होंने कभी दावा किया था कि भारतीय मौलिक कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। इन थ्री मस्केटियर्स ने साबित कर दिया कि भारत का वैज्ञानिक तार मौलिक और प्रभावशाली था। अपने स्वयं के शोध संस्थानों और संघों की स्थापना करके उन्हें भारतीय विज्ञान का ध्यान शुद्ध प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक गुरुओं के रूप में कार्य किया और विज्ञान के आधुनिक मंदिर में शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को तैयार किया। अंततः उनकी कहानी दर्शाती है कि कैसे एक महानगरीय गुरु और उनके भारतीय शिष्यों के बीच का व्यक्तिगत संबंध एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भावना को जन्म दे सकता है जिसने भारत को एक आत्मनिर्भर
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गुंजन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए एक ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। यहां कविताएं केवल सुनाई नहीं जाती, वे समय के बंद कपाट खोलकर मनुष्य को उसके भीतर छिपे सत्य से मिला देती हैं।
4: पंचम सर्ग के उस करुण पड़ाव के बाद श्रोताओं, पंचम सर्ग का वह करुण अध्याय यही पूर्ण होता है जहां एक माँ का आजीवन संचित पश्चाताप और एक पुत्र का जीवन भर का मौन संताप आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। उस संवाद का अंत भले ही शब्दों से हुआ हो, परंतु उसकी प्रतिध्वनि अभी भी समय के हृदय में गूंज रही है। कर्ण अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए और कुंती अपने अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकी। दोनों ने एक दूसरे को पा भी लिया और सदा के लिए खो भी दिया। यही तो महाभारत की सबसे बड़ी करुणा है, जहां मिलन भी विरह का ही दूसरा नाम बन जाता है। अब नियति ने अपनी गति तेज कर दी है, कुरुक्षेत्र की धूल उठने को है, शंखों का निनाद क्षितिज पर आकार लेने लगा है और इतिहास अपने सबसे निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा है। किंतु दिनकर जी की दृष्टि केवल युद्ध भूमि तक ही सीमित नहीं ठहरती। वे तलवारों की टकराहट से पहले मनुष्यों के अंतःकरण में उठते हुए तूफानों को सुनते हैं। उनके लिए युद्ध का आरंभ रणभूमि में नहीं, मनुष्य के भीतर होता है। आइए श्रोताओं, अब बढ़ते हैं रश्मि रथी के 6वें सर्ग की ओर, जहाँ कर्ण का चरित्र अपने सबसे ऊंचे शिखर पर प्रतिष्ठित होने वाला है। ये केवल अस्त्रों और शस्त्रों का आख्यान नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य, मित्रता और प्रतिज्ञा, नियति और पुरुषार्थ के महासंघर्ष का महाकाव्य है। यहाँ एक प्रश्न बार बार हमारे सम्मुख खड़ा होता है कि क्या मनुष्य अपने भाग्य से बड़ा हो सकता है? क्या विपत्तियों के बीच भी वह अपने चरित्र की ज्योति को अक्षुण्ण रख सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर अब स्वयं कर्ण अपने जीवन से देने वाले हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं रश्मि रथी के छठवें सर्ग की ओर, जहां कथा का स्वर और अधिक गंभीर होने वाला है। प्रस्तुत है षष्ठ सर्ग के भाग एक और दो का काव्य पाठ। पहले सुनते हैं भाग एक का काव्य पाठ।
3: नरता कहते हैं जिसे सत्तव, क्या वो केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है लेकिन तक भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी? यह जहर ना छोड़ेगा उभार अंगार, ना क्या बुझ पाएंगे हम इसी तरह, क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रहकर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़कर धीरज खोता है, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वो मीठी बोली बोले, तब वो मीठी बोली बोले।
4: श्रोताओं, छठवा सर्ग का ये आरंभ हमें कुरुक्षेत्र की भूमि से कहीं आगे मनुष्य के अपने अंतरतम में चल रहे संघर्ष की ओर लेकर जाता है। दिनकर जी ने यहाँ युद्ध का वर्णन करने से पहले एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया है जो हर युग में मनुष्य के सामने खड़ा रहा है। क्या शक्ति का अर्थ केवल किसी को पराजित करना है? क्या विजयी वही है जो दूसरों के पतन पर खड़ी हो, या वह विजय बड़ी है जहाँ मनुष्य अपने भीतर के क्रोध अहंकार और हिंसा पर विजय प्राप्त कर सके? आज के समय में भी जब संसार विज्ञान प्रगति और सामर्थ्य की ऊंचाइयों को छू रहा है, तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है कि हमारी शक्ति किस दिशा में जा रही है। तलवारें बदल गईं, साधन बदल गए, संघर्षों के रूप बदल गए, परंतु मनुष्य के भीतर का द्वंद्व आज भी वही है, निर्माण और विनाश के बीच का संघर्ष। दिनकर जी मानो हमें चेताते हैं कि यदि संवेदना साथ नहीं है तो सामर्थ्य भी एक बोझ बन जाता है। इस काव्य पाठ को सुनकर लगता है कि दानवीर कर्ण हमसे कुछ कहना चाहते हैं।
5: हे विधाता, मनुष्य की पहचान केवल उसके हाथों में उठे शस्त्र से नहीं होती, उसके भीतर जागते हुए विवेक से होती है। मैंने जीवन भर युद्ध देखे हैं, अपमान की अग्नि में तपकर भी खड़ा रहा, पर एक प्रश्न सदैव मेरे हृदय को विचलित करता रहा, क्या वीरता केवल किसी को परास्त करने में है? क्या विजय वही है जहां किसी का रक्त धरती को लाल कर दे? यदि मेरी भुजाओं में बल है तो वो किसी निर्बल को कुचलने के लिए नहीं, किसी टूटे जीवन को सहारा देने के लिए है। संसार तलवारों की चमक से चकित होता है, पर मैंने जाना है कि करुणा का प्रकाश उससे कहीं अधिक दूर तक फैलता है। हे विधाता,
6: मैंने अपने भाग्य के लेख में विष के अनेक अक्षर पढ़े हैं, पर मन के अमृत को कभी सूखने नहीं दिया। जो पीड़ा मुझे मिली उसने मुझे पत्थर नहीं बनाया, उसने तो मेरे भीतर उन लोगों के लिए स्थान बनाया जो स्वयं संघर्षों में टूट चुके हैं। यदि मेरे हाथों से कोई कल्याण हो सके, यदि किसी पीड़ित की आंखों से आंसू कम हो सके, तो वही मेरे जीवन की सच्ची विजय होगी। क्योंकि रणभूमि में शत्रु को हराना सरल है, पर अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध को जीत लेना ही मनुष्य होने की सबसे बड़ी परीक्षा है। आज संसार पूछेगा कि महान कौन है, वो जो प्राण लेता है या वो जो प्राणों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। मेरा उत्तर यही है कि शस्त्र की धार से बड़ा है मानव का हृदय, और वही मनुष्य को पशुता से उठाकर देवत्व की ओर ले जाता है।
3: श्रोताओं, इस काव्य में कवि केवल योद्धाओं को नहीं देख रहा, वो पूरे मानव समाज की आत्मा को टटोल रहा है। वो पूछता है कि जिस मनुष्य ने आकाश को छूने की क्षमता पा ली, क्या उसने अपने हृदय को उतना ही विशाल बनाया? क्योंकि बाहरी उन्नति तभी सार्थक है जब भीतर का मनुष्य भी जागृत हो। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ समाज अंततः स्वयं को ही भस्म कर देता है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अब छठवें सर्ग से भाग दो का काव्य पाठ।
4: थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और ना क्या कह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती।

0: कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर मानव समाज का नयन मनुज, कर सकता वैरागी होकर मानव समाज का नयन मनुज, कर सकता वैरागी होकर।
1: श्रोताओं, छठवें सर्ग का ये प्रसंग केवल कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ते रथों की आहट नहीं है, यह तो मानव हृदय के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के महासंग्राम का स्वर है। दिनकर जी ने कितनी अद्भुत दृष्टि से दिखाया है कि असली पराक्रम केवल रणभूमि में शत्रु को परास्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठते क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की ज्वालामुखी को शांत कर लेना भी है। तलवार की चमक क्षण भर के लिए आंखों को चौंधिया सकती है, परंतु त्याग और करुणा का प्रकाश युगों तक मार्ग दिखाता है, और यही इस महाकाव्य की आत्मा है। श्री कृष्ण के माध्यम से कवि उस सत्य को सामने रखते हैं कि शक्ति का सर्वोच्च रूप विनाश नहीं, संरक्षण है। जैसे विशाल वृक्ष स्वयं धूप सहकर दूसरों को छाया देता है, वैसे ही महान पुरुष अपने सुखों का त्याग कर लोक मंगल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ शांति कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि वह धैर्य है जिसके आगे क्रोध की आंधी भी अपना वेग खो देती है।
0: दिनकर जी के लेखनी में यह प्रसंग केवल कथा नहीं रह जाता, ये जीवन का दर्पण बन जाता है। वे पूछते हैं कि यदि मनुष्य के पास बुद्धि, विवेक और संवेदना है, तो फिर वो पशुता के अंधकार में क्यों भटके। सच तो ये है कि सभ्यता की ऊंचाई महलों और शस्त्रों से नहीं, बल्कि उस करुणा से मापी जाती है जो सबसे कमजोर प्राणी के लिए भी हृदय में स्थान रखती है।
1: दिनकर जी की दृष्टि में सच्चा पुरुषार्थ वही है जहाँ शक्ति के साथ करुणा हो, साहस के साथ संयम हो और विजय के साथ विनम्रता हो। मनुष्य के भीतर एक सुधा कुंड है प्रेम, विवेक और दया का, परंतु अक्सर वह उसे छोड़कर विष की राह चुन लेता है। छठवां सर्ग का ये आरंभ हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है वही वास्तव में विजयी कहलाता है। तो आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं उस महागाथा की ओर जहाँ शब्दों में ओज है, भावों में वेदना है और जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। प्रस्तुत है रश्मिरथी षष्ठ सर्ग के भाग 3 और 4 का काव्य पाठ।
0: पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से, प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वो भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का वेत धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है।
1: श्रोताओं, यहाँ बात युग पुरुष और प्रकाश की हो रही है। कर्ण जैसा व्यक्ति जिसने जीवन भर अन्याय, अपमान और संघर्ष देखा, इस विचार पर मानो अपने भीतर से बोल रहा हो।
2: यदि मनुष्य के भीतर का अंधकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, तो फिर रणभूमि केवल बाहर नहीं भीतर भी सजती है। मैंने तो जीवन भर अपमान की अग्नि में तपकर यही जाना है कि शस्त्र से जीती हुई विजय क्षणिक होती है, पर हृदय में जगा हुआ प्रकाश युगों तक रहता है। मैंने भी देखा है मनुष्य कुल, जाति और अधिकार के अहंकार में कितना छोटा हो जाता है, पर जिस दिन वो किसी दूसरे के आंसू को अपना समझ ले, उसी दिन उसका जन्म सार्थक हो जाता है। शायद यही सच्चा धर्म है, जहां पराक्रम में करुणा हो और शक्ति में संयम।
1: द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था, वह आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में से एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो ऋक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो।
0: ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है? झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता थोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसारित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह है, तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था, उलझ उलझ रह जाता था।
1: श्रोताओं, छठवें सर्ग का यह प्रसंग हमें रणभूमि से हटाकर मनुष्य के अंतर मन के मैदान में ले आता है। दिनकर जी यहाँ केवल महाभारत की कथा नहीं कह रहे, वे युगों से चले आ रहे एक प्रश्न को हमारे सामने रखते हैं। क्या मनुष्य सचमुच सभ्य हुआ है, या केवल उसके हाथों के औजार बदल गए हैं? जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार युग पुरुष वही होता है जो अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दे। धर्म केवल ग्रंथों में लिखे शब्दों का नाम नहीं है, ये उस करुणा का नाम है जो किसी अनजान के आंसू देखकर भी हृदय को विचलित कर दे।
0: बिल्कुल, इसीलिए रश्मिरथी केवल वीर रस का महाकाव्य नहीं, बल्कि मानव चेतना का महाग्रंथ बन जाती है। दिनकर जी ने मनुष्य को उसके बाहरी वैभव से नहीं, उसके भीतर छिपे प्रकाश और अंधकार से परखा है। आज भी जब संसार शक्ति और संघर्ष के बीच खड़ा है, ये पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि सभ्यता की असली पहचान ऊंची इमारतों से नहीं, ऊंचे विचारों से होती है। क्योंकि पशुता का वस्त्र बदल जाना सरल है, पर मनुष्यत्व का जाग जाना ही सच्ची विजय है। यही इस काव्य प्रसंग का अमर संदेश है। आइए अब सुनते हैं षष्ठ सर्ग से भाग चार का काव्य पाठ।
1: और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खंचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते, अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नर वीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण चले। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरिका उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग ज्यो महाकार, अथवा सूना कर आसमान, जो गिरी टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, जो गिरे भीष्म आलोक वरण, जो गिरे भीष्म आलोक वरण।
0: कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूलुठित पिता महा को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रो धोकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जेय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सदधर्म निभाने को। वह शरशय्या की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल।
2: हे तात, आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लांछित जन, ये वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है, उपहार अश्रु का लाया है।
0: श्रोताओं, दिनकर जी ने इस प्रसंग में केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं दिखाया, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले उस संघर्ष को उजागर किया है, जहां धर्म और अहंकार, करुणा और क्रोध, कर्तव्य और स्वार्थ आमने सामने खड़े हो जाते हैं। युद्ध भूमि बाहर जितनी भयंकर थी, उससे कहीं अधिक उथल पुथल मनुष्य के भीतर थी। यही कारण है कि रश्मिरथी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानव स्वभाव का दर्पण बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। आज भी समय बदल गया है, साधन बदल गए हैं, पर प्रश्न वही है, क्या मनुष्य ने अपने भीतर की हिंसा को जीता है? दिनकर जी जैसे पूछते हैं कि यदि बाहरी रूप से सभ्यता का श्रृंगार हो जाए, परंतु मन में करुणा का दीप न जले, तो वह विकास अधूरा है। कर्ण, भीष्म और श्री कृष्ण जैसे पात्र हमें यही तो सिखाते हैं कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप संयम है और विजय का सबसे ऊंचा शिखर मानवता है।
0: और फिर आता है वो क्षण जब राधेय, जिसे संसार ने कभी उपेक्षित किया था, उसी भीष्म के चरणों में आता है, जिनकी दृष्टि में कभी उसके जन्म का प्रश्न था। यही कर्ण की विराटता है। वो अपमान को भी संबंधों की मर्यादा से छोटा कर देता है। उसके हृदय में प्रतिशोध की आग है, पर आदर की ज्योति उससे कहीं अधिक प्रखर है।
1: यही दिनकर जी की लेखनी का चमत्कार है। उन्होंने कर्ण को केवल योद्धा नहीं बनाया, उसे एक ऐसा मनुष्य बनाया जो टूटकर भी ऊंचा उठता है। कुरुक्षेत्र की धूल में भी कुछ चरित्र ऐसे हैं जिनकी आभा युगों तक बनी रहती है, और राधेय उन्हीं अमर दीपों में से एक है जिसकी लौ संघर्षों की आंधी में भी बुझती नहीं है।
0: तो दोस्तों, आज के इस काव्य पाठ में हमने देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल रणभूमि का संघर्ष नहीं, बल्कि मानव मन के भीतर चलने वाले धर्म, कर्तव्य और विवेक के द्वंद्व का भी प्रतीक है। दिनकर जी ने अपनी लेखनी से उस युग की धूल में छिपे ऐसे प्रश्नों को उजागर किया है जो आज भी हमारे सामने खड़े हैं। भीष्म का पतन और राधेय का उठना हमें याद दिलाता है कि महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने में होती है। कर्ण का जीवन उसी अग्निपथ की कथा है, जहां पीड़ा भी पुरुषार्थ बन जाती है। अगले भाग में हम सुनेंगे षष्ठ सर्ग के भाग 5 और 6 का काव्य पाठ, जहां ये महागाथा एक और मार्मिक पड़ाव की ओर बढ़ेगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा। इसे आप तक पहुंचाया मैंने, यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
3: मैंने यानी दीपक नेमा,
1: और मैंने यानी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना ने।
0: तो फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
4: अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी का पाठ। इसके साथ ही हमारा आज का काव्य गुंजन कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना?
6: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को नाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है और अब जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 कार्यक्रम अक्षय निधि के साथ। उसके बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम। 6:00 महापुरुषों के जीवन पर केंद्रित वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी बाजी राउत के जीवन पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेंगे। 6:30 पर बाल सभा कार्यक्रम का विषय होगा गणेश उत्सव से हमने क्या सीखा। 7:00 विश्व पशु कल्याण दिवस पर विशेष कार्यक्रम जिसमें विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर नारद से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत आप सुन सकते हैं। 7:30 पर कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व जिसके अंतर्गत आज हम भारतीय सेना में उच्च अधिकारी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा। 8:00 देश के संस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम डिफेंस स्पेस एजेंसी पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। 8:30 पर कार्यक्रम हिंदोस्ता हमारा जिसमें आज हम स्वाधीनता संग्राम सेनानी श्याम जी कृष्ण के जीवन पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे। 9:30 पर कार्यक्रम काव्य गुंजन जिसके अंतर्गत हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी का पाठ सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जिन्हें आप 5:00 से 10:00 तक सुन सकते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। दोपहर के 12 बज रही हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा संपन्न होती है। हमारी सांध्यकालीन सभा 5:00 आरंभ होगी। तब तक आप हमारे केंद्र से विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहें।

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज की इस दोपहर कालीन प्रसारण सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, मैं सुनीता सिंह। आज इस दिन की सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे कार्यक्रम तराने आजादी के, उसके बाद भारत भारती कार्यक्रम का प्रसारण होगा। 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी और 2 हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। इसके बाद 3 तराने आज़ादी के कार्यक्रम का प्रसारण होगा और 4 आप सुनेंगे भारत भारती। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी के। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
3: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद प्रस्तुत करता है प्राचीन भारत में वैज्ञानिक चिंतन की गौरवशाली परंपरा की वानगी देने वाला अपना महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक।
0: इस कार्यक्रम में हर सप्ताह हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक से जिनकी सृष्टि और जीवन के किसी विशिष्ट अंग से जुड़ी अवधारणा ने एक महती वैज्ञानिक परिकल्पना को जन्म दिया।
1: वो परिकल्पना और सिद्धांत जिसका विकास पश्चिमी जगत 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद ही कर पाया। उदाहरणार्थ ज्यामिति का 29वां प्रमेय, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, वस्तुतः ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस का नहीं है। इसकी खोज शताब्दियों पूर्व ऋषि बोधायन कर चुके थे। ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा हमें बताएगी वेदकालीन भारत में ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था, चाहे वो सृष्टि की उत्पत्ति या सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्रों की गतियों का सटीक हिसाब हो या सूर्य चंद्र ग्रहणों की भविष्यवाणियों का अथवा कैलेंडर का निर्माण, पदार्थों की संरचना की बात हो अथवा पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की चर्चा।
0: दोस्तों, हमारे ऋषियों ने ग्रहों नक्षत्रों ज्योतिष गणित से लेकर वनस्पति चिकित्सा शल्य औषधि रसायन आदि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अनुसंधान की सुव्यवस्थित और सुदृढ़ प्रणाली को जन्म दिया।
1: ऋषि वैज्ञानिकों की ये गाथा देश की नई पीढ़ी को रूबरू कराएगी विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में वेदकालीन भारत की अद्वितीय और गौरवशाली उपलब्धियों से, ताकि हमारे युवा साथी हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें, उस पर गर्व कर सकें और प्राचीन भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की खोज के लिए प्रेरित हो सकें।
2: अंजू, तुम आज फिर मोबाइल लेकर आई हो? देखा शौरी, मोबाइल लेकर आई है।
3: लगा दिया हेडफोन कान में। पता है मेरे पापा कहते हैं जो कान में 24 घंटे ईयरफोन रखता है उसके कान के पर्दे फट जाते हैं और बहरा हो जाता है।
2: तो अरे मैं रोज रोज कान सुनती हूँ। वो तो आज नया गाना निकला है ना, इस वजह से उसकी म्यूजिकल लिरिक्स इतनी अच्छी है कि तुम लोग भी सुनोगे।
3: हमें नहीं सुनना।
2: अरे
4: अरे अरे गुरुजी मोबाइल छुपा ले,
2: छुपा ले, बैग कहाँ है? अरे बैग, अरे हाँ चलो।
5: प्रणाम गुरुजी।
6: हाँ प्रणाम भाई, वो क्या कहते हैं आयुष्मान भाव। हाँ क्या क्या कह रहे थे तुम, बोलो बोलो।
7: कुछ नहीं गुरुजी।
6: अच्छा, हाँ अरे आज तो ये सामने वाली सीट ही खाली पड़ी है, ये गौरव को क्या हुआ आज?
7: गुरुजी गौरव को कुछ नहीं हुआ है।
6: तो फिर
7: वो इंटर कॉलेज ड्रामा प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है।
6: अच्छा, वेरी गुड। तो वो फिर कहाँ गया है अभी?
7: गुरुजी वो रिहर्सल के लिए गया है।
6: अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, वो एक अच्छा कलाकार है, ये हमें पता ही नहीं था। अच्छा बच्चों, क्या तुम्हें पता है कलाएं प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होती हैं? बताओ। नहीं ना? 64 प्रकार की बताई गई हैं कलाएं। इनमें से बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिनका अपना विज्ञान है। महर्षि शुक्राचार्य नाम के अपने यहाँ महर्षि हुए हैं, वो इन कलाओं के भाष्यकार माने जाते हैं
7: जी,
6: और उन्होंने इन पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नीतिसार, समझे?
2: हाँ गुरुजी। गुरुजी आज हमें महर्षि शुक्राचार्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए ना।
4: बताइए गुरुजी।
6: ठीक है, हम तुम्हें महर्षि शुक्राचार्य के आश्रम में लिए चलते हैं।
4: चलिए गुरुजी।

0: वर्णित कलाओं में कुछ कलाएं समान हैं और कुछ भिन्न भी हैं।
1: आचार्य श्री, इन कलाओं में प्रत्येक कला के अपने शास्त्र तो होंगे ही।
0: हाँ, क्यों नहीं, सृष्टि में घटित और उपस्थित हर घटना हर वस्तु का शास्त्र होता है। शास्त्र चिंतन का प्रतिफल जो है, इसमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात। वैसे हमारे वैदिक साहित्य में सब कुछ उपलब्ध है, वो बहुत समृद्ध है।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, ये शास्त्र ही है जो किसी भी घटना किसी भी क्रिया के कार्य कारण की व्याख्या करता है, यही विज्ञान कहलाता है।
2: इसका अर्थ तो ये हुआ आचार्य श्री कि कलाओं का भी विज्ञान होता है।
0: हाँ वत्स, सच तो ये है कि विज्ञान का जन्म कला से ही हुआ है, जैसे कि दर्शन अथवा सिद्धांत का जन्म चिंतन से हुआ है। और यदि हम आदि मानव तक जाएं तो आदि मानव भी घटनाओं तथा तथ्यों के कार्य कारण संबंध से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं था। आदि मानव में भी जानने की भूख थी। आदि मानव जो सबसे पहले सृष्टि में जन्मा, उसके सामने बहुत कुछ सीखने और जानने को था। पता नहीं उस मानव के पास इन चीजों को नाम देने के लिए शब्द थे या नहीं, किंतु ये सत्य है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसके ज्ञान का कोष भी बढ़ता गया।
1: तो क्या यही विज्ञान का जन्म हुआ गुरुजी?
0: नहीं वत्स, ये मनुष्य का व्यवहारिक ज्ञान था। विज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर है, पर अंतर के बाद भी दोनों में एक समानता है, वो ये कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्यवहारिक ज्ञान से भी मनुष्य तैरने वाली नौका बना लेता है, उसे समुद्र के वक्ष पर दौड़ाता है, डूबने से बचाता है और किनारे पर ले आता है। वैज्ञानिक ज्ञान के सहारे भी वो यही सब कुछ करता है। व्यवहारिक ज्ञान क्रियात्मक होता है, कला के रूप में होता है, पर विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। फिर भी विज्ञान का जन्म व्यवहारिक ज्ञान से ही, कला से ही होता है। विज्ञान के पहले व्यवहारिक ज्ञान कला ही जन्मती है।
2: फिर तो आचार्य श्री, आदि मानव मूल वैज्ञानिक हुए।
0: निश्चय ही वत्स, वे आदि मानव ही थे जिन्होंने पत्थरों के हथियार तथा औजारों का निर्माण किया, डंडे के सहारे भारी पेड़ों के तने ढकेलना, चप्पू से नाव खेना, नाव बनाना, गन्ने को बटकर मरोड़कर रस निकालना, कुएं से पानी खींचने के लिए चरखी का उपयोग करना, फेंकन अथवा बरही बनाना, धनुष बाण बनाना, धोकनी बनाना, सुई सिल पत्थर का उपयोग करना, कृषि भोजन, पशुपालन, वस्त्र अलंकार, टोकरी भांड आदि बनाना, अग्नि उत्पन्न करना, धातु बनाना आदि कलाएं सीखी। हाँ, ये सत्य है, आदि मानव को इन कलाओं के अंदर छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक तैराक तैरना जानता है पर तैरने वाली वस्तुओं के सिद्धांत और जल के उछाल का संबंध नहीं जानता।
1: आचार्य श्री, ये सभी कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित होंगी?
0: हाँ, ये सभी कलाएं भी और अन्य कलाएं भी 64 कलाओं में सम्मिलित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: वत्स, कलाओं के नाम भिन्न भिन्न नहीं, उनके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि क्रिया के पार्थक्य से ही कलाओं में भेद हो जाता है। जो व्यक्ति जिस कला का अवलंबन करता है उसकी जाति भी उस कला के नाम से जानी जाती है।
1: जी।
0: हमारे हिसाब से पहली कला नृत्य है। हाव भाव के साथ गति नृत्य कहलाती है। नृत्य में करण, अंगहार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक नाट्य दूसरा अनाट्य। नटराज शिव को नृत्य का आदि गुरु माना जाता है। भरत मुनि ने नृत्य की कुल 108 मुद्राएं बताई हैं। नृत्य एक स्वाभाविक वस्तु है जो हृदय में प्रसन्नता का उद्रेक होते ही बाहर व्यक्त हो जाता है।
2: जैसे वर्षा ऋतु में घन गर्जना से आनंदित होकर मोर झूम झूम कर नाच उठता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी प्रमुख कला है विविध प्रकार के वाद्यों का निर्माण और उन्हें बजाने की कला। वाद्यों के मुख्य 4 प्रकार होते हैं।
2: कौन से गुरुजी?
0: तंत, सुपिर, अवनद्ध और घन। तार अथवा तांत का जिसमें उपयोग हो वे तंत वाद्य हैं, जैसे वीणा, तानपुरा, सारंगी, बेला, सरोद आदि, जिनका भीतरी भाग पोला और जो सछिद्र होते हैं तथा जिनमें वायु का प्रयोग होता है वे सुपिर वाद्य कहलाते हैं। जैसे बांसु

0: बांसुरी, अलगोजा, शहनाई आदि। ऐसे ही चमड़े से मड़े हुए वाद्य अवनद्ध कहलाते हैं, जैसे ढोल, नगारा, तबला, मृदंग आदि। जबकि परस्पर आघात से बजने वाले वाद्य घन कहलाते हैं, जैसे झांझ, मंजीरा, करताल आदि। ये गायन कला से संबंध रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती और नारद को वीणा वादन में, श्री कृष्ण भगवान को बंसी बजाने में और महादेव शिव को डमरू वादन में निपुण बताया गया है।
1: आचार्य श्री, आपने बताया वादन कला गायन कला से संबंध रखती है।
0: हाँ, वादन के बिना गायन अधूरा लगता है, ऐसे ही गायन वादन के बिना नृत्य, गायन वादन और नृत्य की त्रयी वैसे ही तीर्थ बन जाती है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम। गायन तीसरी प्रमुख कला है जिसे गांधर्व विद्या भी कहा गया है। संगीत का प्रमुख उपादान नाद होता है। नाद के माध्यम से ही संगीत कला की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति एवं प्रस्तुति संभव होती है। शारंग देव ने संगीत की परिभाषा देते हुए गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते कहा है, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को सम्मिलित करने से संगीत कहा गया है। ऐसे ही शारंग देव ने नाद को ब्रह्म स्वरूप निरूपित किया है। अस्ति ब्रह्म चिदानंदम स्वयं ज्योति निरंजनम ईश्वरम लिंग मित्युक्तम द्वितीयमजम विभु निर्विकारम निराकारम सर्वेश्वर मनश्वरम सर्वशक्ति च सर्वज्ञम तदंशा जीव संगकाह। संगीत और व्याकरण दोनों के तत्व माहेश्वर सूत्र हैं। व्याकरण में 5 शुद्ध स्वर और 2 मिश्रित स्वर होते हैं। ऐसे ही संगीत में भी 5 स्वर प्रधान और 2 गौण हैं। गांधर्व गान में ये 5 स्वर मध्यम, गांधार, ऋषभ, षडज तथा धैवत हैं। मध्यम मतलब म, गांधार मतलब ग, ऋषभ मतलब री, षडज मतलब सा और धैवत मतलब ध।
1: जी गुरु जी।
0: हाँ, ये सरल स्वरों में समझाया। गौण स्वर पंचम यानी प और निषाद है नी। संगीत और व्याकरण दोनों में नाद के 66 भिन्न रूप होते हैं जिन्हें श्रुति कहते हैं। आओ हम संगीत कक्ष की ओर चलें।
1: जी गुरु जी।
0: देख रहे हैं आप लोग?
1: जी गुरु जी।
0: गायन वादन और नृत्य की त्रयी, क्योंकि संगीत और व्याकरण में साम्य है अतः इस त्रयी में भी साम्य है। इन तीनों रूपों में एक लय है, ताल है, सम्मिति है। तीनों एक गणित में बंधे हैं, अतः इन कलाओं का भी एक विज्ञान है। ध्वनि तरंगों का विज्ञान, गति संचलन का विज्ञान। आइए यहाँ वृक्ष के नीचे बैठें। आइए।
2: जी गुरु जी।
1: जी गुरु जी।
2: आचार्य श्री।
0: हाँ।
2: आप 64 कलाओं की चर्चा कर रहे थे।
0: हाँ शिष्यों, आगे की 5 कलाएं हैं, यानी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, क्रमशः स्त्री और पुरुषों को वस्त्र और अलंकार सुरुचि रूप से पहनाने की कला, अनेक प्रकार के रूपों का आविर्भाव करने की कला, शैया और अस्तरण सुंदर रीति से बिछाने और पुष्पों को विभिन्न तरह से गूंथने की कला, दूत क्रीड़ा की कला और अनेक प्रकार के आसनों द्वारा सुरत क्रीड़ा की कला। इन 8 कलाओं का उल्लेख गांधर्व वेद में किया गया है।
1: आचार्य श्री, इनमें गायन, वादन और नृत्य भी सम्मिलित है।
0: हाँ वत्स, आगे की 10 कलाओं का संबंध आयुर्वेद से है। नवी कला से लेकर 18 कला तक की ये कलाएं हैं। विविध मकरंदों से आसव, मद्य आदि बनाने की कला, शल्य की पीड़ा को कम कर देना, शिरा और फोड़े आदि की चीर फाड़ करने की कला, इसमें हकीमों और आयुर्वेदाचार्यों की चीर फाड़ भी सम्मिलित है। वृक्षों से प्राप्त रस आदि से अन्न पकाने की कला, वृक्ष, गुल्म, लता आदि को लगाने, फल फूलों को उत्पन्न करने और वृक्षों के संरक्षण की कला, पत्थर, सोने, चांदी आदि धातुओं का खनन, उनकी भस्म बनाने की कला, इक्षु से राव, गुड़, खांड, मिश्री, कंद आदि बनाने की कला, स्वर्ण आदि अनेक धातु और उनसे औषधि निर्माण की कला, मिश्रित धातुओं को उनके मिश्रण से पृथक करने की कला, धातुओं का अपूर्व मिश्रण बनाने की कला, समुद्री जल और मृदा से नमक आदि पदार्थों को निकालने की कला, इन कलाओं में वनस्पति शास्त्र, वानिकी, धातु कर्म, रसायन शास्त्र आदि विज्ञान आ जाते।
1: जी गुरुजी।
2: आचार्य श्री, इनमें से अनेक क्षेत्रों में आचार्य नागार्जुन और महर्षि चरक आदि ऋषियों ने भी काम किया है।
0: हाँ वत्स, तुम ठीक कह रहे हो। प्रिय शिष्यों, आगे की 5 कलाएं युद्ध कला से संबंधित हैं।
2: जी गुरुजी।
0: ये धनुर्वेद का अंग है। यथा 19वीं कला पैंतरा बदलते हुए शस्त्रों के संचालन की कला है, 20वीं कला मल्ल युद्ध और बाहु युद्ध की कला, 21वीं कृत और प्रतिकृत मुष्ट युद्ध की कला, 22वीं अस्त्रों से अभिलक्षित देश को निशाना बनाने की कला, और 23वीं हाथी, घोड़ों और रथों की विशिष्ट गतियों के द्वारा युद्ध के आयोजन की कला। ये तो तुम लोग जानते ही हो कि युद्ध कला का अपना शास्त्र होता है, अपना पूरा पूरा विज्ञान होता है।
2: जी गुरु जी।
1: महर्षि, महाभारत ग्रंथ में भी तो इसका विशद वर्णन है। आचार्य द्रोणाचार्य इन कलाओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं ना?
0: हाँ वत्स, अपने आश्रम में भी तो इन कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। तुम लोग भी तो ये प्रशिक्षण ले रहे हो ना? अब तक तो तुम लोग इन कलाओं के अंतर्निहित सिद्धांतों को समझ ही गए होगे।
1: जी गुरु जी।
0: शिष्यों, आगे की कलाएं विविध कलाओं से और क्षेत्रों से संबंधित हैं। यथा 24वीं कला विविध प्रकार के आसनों में बैठकर दोनों हाथों की उंगलियों से विविध आकृतियां बनाकर ईश्वराधन करना, 25वीं कला रथ हाँकने की कला, 26वीं मिट्टी, पत्थर, लकड़ी तथा धातुओं के बर्तन बनाने की कला, और 27वीं चित्रांकन की कला।
2: अद्भुत, इस कला में तो भारत ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर रखी हैं। प्राचीन मंदिरों, महलों, गुफाओं में उकेरे गए चित्रों की वानगी देखते ही बनती है। इनके रंग शताब्दियों बाद भी धुंधलाए नहीं हैं।
0: तुम्हारा कथन सत्य है वत्स, पर हमें तो तुम लोगों के भांड और उन पर की गई चित्रकारी देखनी है। वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले वार्षिकोत्सव में हम इनकी प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार रहें।
1: जी गुरु जी।
0: हाँ तो शिष्यों, 28वीं कला तालाब, कूप, बावड़ी, महल, मंदिर, घर बनाने और भूमि समतल करने से संबंधित है, जबकि 29वीं कला समय बताने वाली घड़ियों के निर्माण से संबंधित। इनमें जल घड़ी, बालू घड़ी और धूप घड़ी आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है। ये तो तुम जानते ही हो कि ये कला ज्योतिर्विज्ञान से संबंधित है।
1: हाँ आचार्य श्री, हम जानते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि अनेक महर्षियों ने इस क्षेत्र में विशेष काम किया है।
0: शिष्यों, 30वीं कला विभिन्न अनुपात में रंगों के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को रंगना है। किस वस्त्र को कैसे रंगे ताकि उसकी चमक स्थायी रहे और रंग फीका ना पड़े, निश्चित ही विशिष्ट कला है। सूती कपड़ों की रंगाई की विधि निश्चित ही रेशमी कपड़ों की रंगाई से या ऊनी कपड़ों की रंगाई से भिन्न होगी। इसमें अंतर्निहित रंगों का अपना विज्ञान है। ऐसे ही 31वीं कला जल, वायु, भाप संचालित यंत्रों के निर्माण से संबंधित है, जबकि 32वीं कला नौका, रथ आदि जल थल के वाहन बनाने से संबंधित है। यंत्र सर्वस्व, यंत्र विधान ग्रंथों में इनका विशद वर्णन है। आवागमन के इन साधनों पर व्यापार भी निर्भर करता है।
2: वाह आचार्य श्री, महर्षि पाराशर ने तो नौका निर्माण के लिए वृक्षों की लकड़ी का भी वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया है।
0: हाँ वत्स, 33वीं कला सूत, सन आदि तंतुओं से रस्सी बनाने और 34वीं कला विभिन्न तंतुओं से पटबंध अर्थात वस्त्र बनाने से संबंधित है। वैदिक काल में परिष्कृत कपड़ा बुनने की तकनीक चली आ रही है। अथर्ववेद के अनुसार बुनाई महिलाओं का विशेष अधिकार था। वैदिक काल में 3 वस्त्र, निवि यानी अंतः वस्त्र, वसा यानी पोशाक एवं आदिवसा यानी उत्तरे या ओढ़नी प्रचलित थे। साड़ी भी अपने प्रारंभिक रूप में प्रचलित थी। आइए हम अपने करघा कक्ष की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।
0: देख रहे हैं ना, करघे पर धोती बुनी जा रही है और उधर दूसरे करघे पर साड़ी।
2: जी गुरुजी।
0: किनार या किनारी साड़ी और धोती का एक महत्वपूर्ण अनुषंग होता है। आप देख सकते हैं धोती की किनार एकदम सादा है, जबकि साड़ी की किनारी आकर्षक बनाई जा रही है, जो पूरी साड़ी को आकर्षक रूप प्रदान करती है।
2: आह, कितना सुंदर है ये दृश्य।
0: जितना धोती या साड़ी का आकलपन एक विशिष्ट कला है, उतना ही करघे को चलाना भी एक कला है। आओ अब हम उद्यान की ओर चलें।
1: आचार्य श्री, हमने चोल स्त्रियों को मत्स्य वल्का शैली में साड़ी पहने देखा है, जिसमें साड़ी को पैरों के बीच से निकालकर पीछे खोसा जाता है।
0: हाँ वत्स, दूसरी से चौथी शताब्दी तक आते आते साड़ी पहनने की शैली में कई परिवर्तन आए। शिष्यों, आगे की चार कलाएं आभूषण निर्माण से संबंधित हैं।
1: जी गुरुजी।
0: 35वीं कला रत्नों की पहचान और उनके वेधन से संबंधित है, जबकि 36वीं कला स्वर्ण रजत की शुद्धता की जांच से संबंधित है। 37वीं नकली सोने चांदी हीरे मोती बनाने की कला है, जबकि 38वीं कला सोने चांदी का लेप चढ़ाने, आभूषण बनाने और मीनाकारी करने की कला है।
2: आचार्य श्री, रत्नों के धारण का उद्देश्य तो श्रृंगार से अधिक उनके धारण से होने वाले शुभाशुभ फल से होता है, फिर नकली रत्नों का निर्माण किस लिए?
0: वत्स, नकली आभूषण केवल शोभा बढ़ाने के लिए ही धारण किए जाते हैं, इनकी चमक आभा में कोई कमी नहीं होती। अब जैसे मिश्री से जो कृत्रिम हीरा बनाया जाता है, उसे सामान्य जौहरी भी आसानी से नहीं पहचान पाते। आगे से दो कलाएं अर्थात 49वीं और 40वीं चर्म कलाएं हैं, जो पशुओं के शरीर पर से चमड़ा निकालकर अलग करने और चमड़े को मुलायम करके उपयोगी सामान बनाने से संबंधित है।
1: आचार्य श्री, पहले तो चमड़े का उपयोग प्रमुखतः चर्म आसन और चर्म वस्त्र के रूप में होता था, अब तो यह आवरण, थैला और डोलची बनाने के लिए भी उपयोग में आने लगा है।
0: हाँ वत्स, समय के साथ हर वस्तु के नए नए उपयोग विकसित होते जाते हैं। 41वीं कला गाय भैंस से दूध दोहकर मक्खन, घी, दही आदि बनाने की कलाओं से संबंधित है, जबकि 42वीं कला वस्त्रों की सिलाई है। 43वीं कला तैराकी है, जबकि 44वीं बर्तन मांजने, 45वीं वस्त्रों को धोने, साफ करने और 46वीं शौर कर्म कला है। फिर 47वीं कला तिल, रेंडी आदि बीजों से तेल निकालने की, 48वीं पेड़ों पर ऊंचे चढ़ने की और 49वीं हल जोतने की कलाएं हैं।
2: आचार्य श्री, पेड़ों पर चढ़ने को भी कला की श्रेणी में रखा गया है?
0: हाँ वत्स, खजूर, ताड़, नारियल, सुपारी आदि के पेड़ों पर चढ़ने के लिए विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दूसरों की सेवा करना भी एक कला है, ये 50वीं कला है, जबकि 51वीं कला बांस, खजूर, ताड़ आदि के पंखे, टोकरी आदि पात्र बनाना है।
1: आचार्य श्री, अपने आश्रम में भी तो छोटे बड़े अनेक प्रकार के बिजना बनाए जा रहे हैं और लगभग 2500 प्रकार की टोकरियां और सूपे बनाए जाते हैं।
0: हाँ, टोकरियां तो जैसे सामान रखने के लिए सर्वसाधारण उपकरण है। विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की टोकरियां बनाने का प्रचलन है।
1: जी।
0: फिर ठहरी हुई वायु को बिजना ही चलाता है, चाहे वो मोर पंख का बना हो, खजूर के पत्तों का हो या बांस का।
1: हाँ।
0: बस तुमने अपने लिए कितने प्रकार के पंखे बनाए हैं?
2: जी गुरुजी, 3 प्रकार के।
0: अच्छा।
2: एक खजूर का सादा, दूसरा बांस का बुनाई वाला और तीसरा उरई की सींकों को रंगीन धागों में बुनकर।
0: इन्हें हम देखेंगे कितनी कलमकारी या कलाकारी की है तुमने।
2: जी जी अवश्य गुरुजी।
0: अब हम 52वीं कला पर आते हैं, जो कांच के बर्तन आदि बनाने से संबंधित है।
1: जी गुरुजी।
0: रेत, चूना और सोडे के मिश्रण से गलाकर कांच बनाना एक विशिष्ट कला है, ये कीमियागिरी विज्ञान से संबंधित है। आगे की कलाएं हैं 53वीं स्रोतों से सिंचाई, 54वीं संहरण यानी अधिक जल वाले स्थान से जल हटाना, 55वीं हाथी, घोड़े, ऊंटों आदि के सवारी के आसन बनाना, 56वीं लोहे के अस्त्र बनाना और 57वीं, 58वीं और 59 बच्चों की कलाएं, बच्चों का पालन पोषण और खेलने के लिए खिलौने बनाने से संबंधित।
1: यानी आचार्य श्री, जीवन से संबंधित हर गतिविधि एक कला है?
0: हाँ वत्स, क्योंकि उसके सुचारू संपादन का आधार कुछ नियम और सिद्धांत हैं। अब जैसे कि अपराधियों को दंड देना 60वीं कला है, विभिन्न लिपियों को सुंदरता से लिखना 61वीं कला, और तो और पान का संरक्षण भी 62वीं कला है, और आदान 63वीं तथा प्रतिदान 64वीं कला है।
2: आचार्य श्री, इन 64 कलाओं का पाठ्यक्रम तो काफी व्यापक है, इसमें से तो प्रायः सभी विषयों का समावेश हो जाता है।
0: हाँ वत्स, शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है, सर्वांगीण विकास, ज्ञान की वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इस पाठ्यक्रम में इन सब का ध्यान रखा गया है। इतना ही नहीं, पारलौलिक कल्याण भी नहीं छोड़ा गया है। संक्षेप में कहें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का ये क्रम निश्चित किया गया है। श्री कृष्ण को इन सभी विषयों की पूरी शिक्षा दी गई थी और वे प्रायः सभी में प्रवीण भी थे।
1: आचार्य श्री, गुरुकुलों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि सभी बालकों को प्रायः इन सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है, क्या वे सभी सभी कलाओं में दक्ष हो जाते हैं?
0: वत्स, हम यूं कह सकते हैं कि सभी को सभी विषयों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। निपुण तो व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति के आधार पर किसी का या किन्हीं विशिष्ट विषयों में ही हो पाता है।
1: जी।
0: जिसकी जिस ओर प्रवृत्ति है उसे उसी में अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमने कहा है, याम याम कलाम समाश्रित्य निपुणो यो हि मानवः नैपुण्य करणे सम्यक ताम ताम कुर्यात् स एव हि। सच तो यह है वत्स, वंशागत कला के सीखने में पर्याप्त सुगमता होती है। एक बड़ई का लड़का बड़ई गिरी जितनी शीघ्रता और सुगमता के साथ सीखकर उसमें निपुण हो सकता है उतना दूसरा नहीं, क्योंकि वंश परंपरा और बालपन से ही उसे उस कला के योग्य संस्कार बन जाते हैं। ये शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब सांध्य संध्या का समय हो चला है, आओ हम सब यज्ञशाला की ओर चलें।
2: जी गुरुजी।

0: तो बच्चों, ये थी महर्षि शुक्राचार्य के गुरुकुल की एक झलक।
1: तो घंटी बज गई, चलो चलो।
2: अरे चलो चलो। और सुन, मोबाइल ज्यादा कान में, वो हेडफोन मत लगाया कर।
3: भी नहीं आऊंगी मैं स्कूल में,
2: नहीं तो तेरे कान बहरे हो जाएंगे। तू ऐ करके सुनना।

0: साथियों, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी किसी और ऋषि वैज्ञानिक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें,
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ऋषि वैज्ञानिक। बने रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद की इस प्रसारण सभा में आज आपकी हम सफर हूँ मैं सुनीता सिंह। हमारे कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, बस एक छोटे से अंतराल के बाद प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी। इंतजार कीजिएगा बस कुछ पलों का।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। कहानियां जो अपने भीतर समेटे होती हैं अथाह भाव सागर, अपने समय को जीती सांस लेती हैं शब्दों में, धड़कती हैं किताबों में। ऐसी कहानियां जो श्रोताओं के मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, वही कहानियां लेकर हम आएंगे इस कार्यक्रम में। शीर्षक है दो बहनें।

0: दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई। बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पैर तक गहनों से लदी हुई है, कुछ उसका रंग भी खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जम्पर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली पतली और फूहड़ उतनी ही और साथ में मंदबुद्धि भी, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो हालत कुछ और ही है, जैसे कली खिल गई हो। और ये रूप इसने कहाँ छिपा रखा था? नहीं नहीं, आंखों को धोखा हो रहा है। ये रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम मखमल और सोने के बल पर वो रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 500 स्त्रियां जमा हैं मगर ये आकर्षण, ये जादू किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती, इस बार तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में ये आकर्षण आखिर आया कहां से, इस रहस्य का पता लगाएगी। उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद्दे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहां इस वक्त कोई नहीं था। देखा, उसकी मुख छवि निष्कलंक है मगर वो ताजगी, वो मादकता, वो माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है, वो अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है और उसे खिले जमाना हो गया। लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वो राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती है। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। अरे, असली रूप तो वो है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए। फिर सोचने लगी, मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे भी बहुत निराशाजनक थे। खुशहाली का कोई दूसरा सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कहां से ये हुन बरस गया? कौन जाने गहने भी कहीं से मांग लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। तो ये स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो भाई, मैं तो जैसी हूं अच्छी हूं। प्रदर्शन का ये रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी वो तो निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हूं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के 2 लड़के हैं उसके, भगवान उन्हें चिरायु करे, वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर उनकी इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, अरे किसी का श्राप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन? या अभी भी वही 75 रुपए पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई, मानो उसका पति तो लाठ ही हो। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई? अब 100 के ग्रेड में है। आजकल तो ये भी गनीमत है, नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पास को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। वैसे तेरा शौहर तो अब बीए में होगा? राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी में एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपए माहवार पाते हैं और कमीशन ऊपर से 5 रुपए रोज सफर खर्च के मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत तो पढ़ ही जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च हो गया। भाई ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए ना। 350 बेदाग घर को दे देते हैं, इसमें से 100 रुपए मुझे मिलते हैं और 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते?
1: रूप कुमारी इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता है कि वो अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। इस कथन की सच्चाई को वो 1/4 तक तो सह सकती है, पर इससे ज्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं ये कथा पूरी सत्य निकली तो वो रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहां 75 और कहां 500? इतनी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है, 500 तो किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये जो सारे कॉलेज हैं ये बंद क्यों नहीं हो जाते? अरे हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: रामदुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली,
0: बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो, एमए तो सभी पास हो जाते हैं मगर एजेंटी बिरले ही कर पाते हैं। ये तो भाई ईश्वर की देन है, कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट भी हो जाएगा। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात।
1: अरे अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, ये दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, कोई आसान काम नहीं है।
0: एक से एक घाघों से इनका सामना पड़ता है, अब तो अगले साल तरक्की भी होने वाली है इनकी।
1: रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे मंद हुई जा रही थी। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदया धरती फट क्यों नहीं जाती? ये कहां का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीजदार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी ये दुर्गति और ये घमंडिन, बदतमीज, विलासिनी, चंचल मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी रानी बन जाए। मगर उसे अब कुछ भी आशा बाकी न दिखी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली,
0: तब तो शायद 1000 रुपए मिलने लगे ना। 1000 तो नहीं पर 600 में संदेह नहीं, कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंसा होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ बनाएगा?
1: परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला,
0: मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। अरे सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, ये तो ठग विद्या हुई।
1: रामदुलारी जोर से हंस पड़ी।
0: इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अरे दीदी आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की ही महिमा रही है। भाई पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता, जो पैसे वाला है बस उसी की पूजा होती है। जो अभागी हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोछते रहते हैं। नहीं आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है?
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे ये सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ा कि राम दुलारी उससे ज्यादा भाग्यवान है। परिहास या अनादर से वो अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या कर पाएगी? उसे किसी बहाने से रामदुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर रामदुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोंक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वो अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपए कमाते हैं, पर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर ले न लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वो अपने पति को दूसरों का माल हजम करने से रोक दे? रोकना तो दूर की बात, शायद वो प्रसन्न होगी और पतिदेव की पीठ भी ठोकेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वो तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, एक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी, चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी से कहला भेजूंगी, तुम्हारा इंतजार न करें। रूप कुमारी का अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सजधज, मुंह में चुरुट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई सिविलियन हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहां ना आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती? गुरुसेवक हंसकर बोला, ये तो उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और न मैं गया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपनों को मेहमान समझते हो, वो भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वो कितनी वाणी मधुर, कितनी स्निग्ध, कितनी अनुग्रह प्रार्थिनी होती जा रही है। गुरुसेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार नहीं किया था, मगर आज तो आप मेरे घर रहिए। नहीं नहीं, आज मुझे बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊंगी ना, लड़के घबरा रहे होंगे। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा ही देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वो न मानी। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और वो ठोस सत्य एक शलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरुसेवक बोला, भाभी मैं तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया, अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा ना तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बताया था, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मजा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या पैसे, मैं ऐसी दौलत को त्याज्य समझता हूँ। और आंख किसकी बचाऊं, सब सियाह सफेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में ही रख छोड़ा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सच कहूं सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपए पर रखा और 1 महीने में 200 रुपए कर दिया। आप लोगों की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम किया। क्या काम करना पड़ता है, रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य के पूछा। वही मशीनों की एजेंटी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना, ठंडा सा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमानाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरुसेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा जरूर, पर जोर नहीं दिया और उमानाथ तो गुरुसेवक से मुखातिब भी न हुए। रूप कुमारी को आज वो घर कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, दो चार टूटी टाटी तिपाहियां, एक लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटें, बस यही उस घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब ये घर उसे कांटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को छिड़क दिया। उसके सिर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, उसे कोई न छेड़े। अभी घर में खाना भी नहीं पका, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, किंतु उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा,
2: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखा ली है, जो रात वहीं रह जाती तो? आखिर तुम कोई महाराजन क्यों नहीं रख लेते हो? क्या जिंदगी भर मुझको ही पीसते रहोगे?
1: उमानाथ ने उसकी तरफ आहत विस्मय की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है, निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे महाराजन रख लेने का प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर घर में बैठे बैठे करूंगी क्या, चार पांच रुपए खर्च बढ़ाने से फायदा ही क्या, ये पैसे तो बच्चों के मक्खन में खर्च होते हैं। और आज वही इतनी निर्ममता से उलाहना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा।
2: तो लाकर रख क्यों न दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते।
1: हाँ, ये गलती तो हुई।
2: तुमने कभी सच्चे दिल से कहा ही नहीं, केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूं कि तुम्हारे मन का रहस्य ना समझूं। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी सेविका मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है किस तरीके से घर चलाती हूं, क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ तो जिंदगी खराब हो गई। अरे संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। दूर क्यों जाते हो, गुरु सेवक को ही देखो। तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कम ही है, मगर 500 रुपए महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए तो बस ये 75 रुपए ही बहुत हैं। जिंदगी नरक हो गई।
1: व्यंग्य बाणों का ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और उमानाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है ये सत्य है, पर ये उनके बस की बात तो नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं। अगर गुरुसेवक वास्तव में 500 रुपए लाता है तो बेशक वो भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता ना। किसी संयोग से उसे ये अवसर मिल गया, मगर हरेक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वो इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 रुपए ही मिलते हैं या ये महज डींग है। और मान लिया कि 500 रुपए मिलते हैं तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वो उनको ताने दे, जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दें तो कैसा हो? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो एक उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ बाट देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक था। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी भी नहीं कि वो हर एक दशा में अविचलित रहे। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही, बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता, बेगार से टालती रहती। बच्चे माँ से बोलते डरते थे, उमानाथ तो उसके साये से भी भागते। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरुसेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि अचानक गुरुसेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल ही दिल में कट कर रह गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। उन्हें लाकर यहां क्यों खड़ा कर दिया, न कहना न सुनना बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरुसेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वो अपना पर्दा ढांपती फिरती है और ये इसे खोलते फिरते हैं। फिर भी आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरुसेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है, मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम्हारी भाभी की जिद है तो भाई मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने भी बात बनाई और घर का कलह छिपा लिया। गुरुसेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को काफी तकलीफ होती होगी। कुछ चिढ़कर वो बोली, पिंजरे में, कटघरे में रहने से अच्छा है, पिंजरे में तो निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरुसेवक शायद ये संकेत न समझ सका, बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा, आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। भाई मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, और सबके सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूं दे दूं, किराया लूं ना लूं, भाई मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा मकान ठीक करा दूंगा। वो क्या है ना कि मैं आपका बहुत अदब करता हूं। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे। उसे इस हालत में देखकर जैसे घृणा सी होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए तो मेरी जान हाजिर है, आपके लिए एक मकान नहीं सौ सौ मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ भाभी, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ, मैं जो कह दूं वो आंख बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, उनकी सारी जायदाद का मालिक मैं ही हूं। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा, 20 रुपए पर, बड़ा मालदार आदमी था, मगर किसी को नहीं मालूम कि उसकी दौलत कहां से आती थी। बस मुझे पता था, पता है वो खुफिया फरोश था, वो नशीली चीजें बेचकर पैसे कमाता था, वही व्यापार मैं करता हूं। मजाल है कोई मुझे गिरफ्तार कर ले, अरे बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है, उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूं, कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूं सब। और हिसाब में लिखता हूं 1000 रिश्वत दी, देता हूं 500, बाकी यारों का मजे हैं। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज को चली है, कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं है भाभी। जेबों से नोटों का बंडल निकालकर वो उसकी चरणों की भेंट करता है और कहता है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं उन्हें कुबेर लातें मारता है, लक्ष्मी तो उनको पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूं, जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं,
2: पक्के लुटेरे, डाकू हैं डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाएं, तो मैं भी एक धर्मशाला बनवा दूं। फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। अरे कौन पूछता है कि मुझे दौलत कहां से मिली? जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने यह किया उस बुढ़े को जिससे बड़ा कुकर्मी इस संसार में कोई नहीं था। तो भाई मैं भी वही करता हूं जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा। और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा भाभी। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरुसेवक क्या कर रहे हो? चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है। गुरुसेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरें खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आजादी की सांस ली। वहीं बैठे बैठे उसे हॉल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थीं, आज उसे उनका असली विभत्स और घिनावना रूप नजर आया। उसने सोचा वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरुसेवक का भी क्या दोष है? जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसकी बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है और समाज में कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या द्वेष अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है, गुरुसेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं है। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, ये गुरुसेवक यहां बैठा बैठा क्या कह रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डिंग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया? जी नहीं, आप अपनी क्लर्की किए जाइए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। जी दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ एक मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, सुनो, मैं आकर तुमसे ये वृत्तांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं, मैं तो कल्पना नहीं कर सकती थी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैं चाहता था वो अपने मुंह से तुमसे कहे, इसलिए नशे की हालत में उसे यहां ले आया। जानता था वो सब कुछ उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा भी जी था। हाँ, ललचाता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहां से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, सुनो, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा रूप कुमारी की छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
1: इस कार्यक्रम के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार। रेडियो आजाद हिंद से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो कहानी। हमारी इस प्रसारण सभा में आगे बहुत कुछ है खास आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, आपके लिए लेकर उपस्थित हूं कार्यक्रम तराने आजादी के। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।